सुप्रभात। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के जून माह की 15 तारीख। सुबह के 5:58 हो रहे हैं। हम उपस्थित हैं अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। इस सभा में आप सभी का बहुत स्वागत है।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुबह के 6 बज रहे हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल

0: में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तीन दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। तीन दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं खेती किसानी कार्यक्रम में कृषि वानिकी से दोहरा लाभ विषय पर अनीता तिर्की से जानकारी।
3: कृषि वानिकी वर्तमान समय के लिए सबसे उपयुक्त कृषि पद्धति है। वैसे कृषि वानिकी बिल्कुल नई पद्धति नहीं है, बल्कि यह कहें कि कृषि का विकास प्रारंभ से वन क्षेत्र में ही हुआ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूर्व में जंगल पहाड़ के इलाकों में बनवासी समाज द्वारा झूम खेती पद्धति और बाद में वन विभाग द्वारा टोंगिया खेती पद्धति में वन क्षेत्रों में क्रमवार से स्थान बदल बदल कर जंगल के ही कुछ भाग में खेती करने की परंपरा बनी। वन विभाग के नए नियम कानून और बदले परिवेश में इसकी पद्धति में सुधार होता गया। अब इसे किसान अपनी खेती की भूमि पर ही अधिक फायदे के लिए करते हैं। कृषि वानिकी भूमि के स्थायी और संपूर्ण उपयोग को दृष्टि में रखते हुए एक ऐसी पद्धति है जिसमें कृषि फसलों

0: के साथ साथ वृक्ष भी उगाए जाते हैं। कभी कभी पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मछली पालन का भी कार्य इसमें जुड़ा होता है। हमेशा उद्देश्य यह रहता है कि उपयोग में लिया जा रहा भूमि और स्थान का अधिकतम उपयोग करके अधिकतम उत्पादन लिया जा सके, परंतु भूमि और जल संरक्षण के साथ साथ स्थानीय कृषि की परंपरा भी बनी रहे। कृषि वानिकी के कई फायदे हैं, जैसे एक ही भूमि से खाने के लिए अनाज, तिलहन दलहन के साथ साथ पशुओं का चारा, जलावन की लकड़ी, घरेलू उपयोग की इमारती लकड़ियां प्राप्त हो जाती हैं। पशुपालन और मछली पालन का कार्य साथ साथ हो जाता है। जमीन के अंदर और ऊपरी स्थान का एक साथ 3 से 4 गुना उपयोग हो जाता है। आकार छोटा होने के कारण कृषि फसल केवल जमीन की ऊपरी भाग का अधिकतम 1 फुट तक ही उर्वरा शक्ति यानी खनिज लवण और जल का इस्तेमाल करते हैं, परंतु पेड़ों की जड़ें ऊंचाई के अनुसार काफ़ी गहरी जाती हैं, अतः मिट्टी के काफ़ी अंदर तक खनिज लवण जल का उपयोग कर लेती हैं। इसी प्रकार जमीन के ऊपर के अतिरिक्त स्थान हवा प्रकाश का उपयोग भी पेड़ कर लेते हैं। पेड़ों के कारण जमीन में नमी और हवा की प्रचुरता बढ़ती है। कुछ पेड़ नाइट्रोजन भी जमीन को देते हैं, जैसे शीशम और लिग्युमिनेसी परिवार के पौधे। पेड़ों के कारण पक्षियां आती है, जिसके कारण फसलों के कीड़े जो मकोड़े हैं वो भी नियंत्रित होते हैं। मिट्टी का कटाव रुकता है। वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में खाली समय का उपयोग किसान वृक्षों की फसल के लिए करता है, जिस पर कई उद्योग आधारित हैं। जैसे तराई इलाकों में पॉपुलर की खेती पर माचिस उद्योग और बांस की खेती पर कागज उद्योग निर्भर है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जलावन और लकड़ी के लिए जंगल पर बढ़ता दबाव कृषि वानिकी से काफी कम हो जाता है, अर्थात वन संरक्षण में कृषि वानिकी की काफी भूमिका है। वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में खाली समय का उपयोग किसान वृक्षों के फसल के लिए करते हैं, जिस पर कई आधारित उद्योग हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण जलावन की लकड़ी के लिए जंगल पर बढ़ता दबाव काफी कम हो जा रहा है और वन संरक्षण में कृषि वानिकी की काफी भूमिका है। वृक्षों से गिरे पत्ते टहनियां आदि के सड़ने से कृषि के लिए प्राकृतिक खाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, जिससे रासायनिक खाद की आवश्यकता कम होने लगती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि वानिकी में कृषि और वानिकी एक दूसरे के पूरक सहयोगी हैं, विरोधी नहीं। यही कारण है कि एकल कृषि पद्धति में कृषि प्रति एकड़ जितना उत्पादन होता है, कृषि वानिकी में उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। स्थानीय आवश्यकता के आधार पर कृषि वानिकी कई प्रकार किए जा सकते हैं, जैसे एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम, जब कृषि फसल और वृक्ष प्रजातियां साथ साथ उगाई जाए परंतु कृषि फसल की प्रधानता हो, तो इस पद्धति को एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम कहते हैं। इसी तरह एग्री हॉर्टिकल्चर सिस्टम, जब कृषि फसल के साथ साथ सब्जी उत्पादन और फलदार पौधों को उगाया जाए और मधुमक्खी पालन का कार्य भी साथ हो। एग्री पास्टोरल सिस्टम, इसमें कृषि और पशुओं के चारा दोनों की खेती साथ साथ करते हैं। इसी तरह मल्टीपर्पस ट्री प्रोडक्शन, इसमें बहुउपयोगी वृक्षों की खेती जैसे लकड़ी, चारा, फल, फूल, गोंद, रेशा इत्यादि की खेती एक साथ की जाती है।
1: खेती किसानी में अभी आप सुन रहे थे कृषि वानिकी से दोहरा लाभ विषय पर जानकारी। जानकारी दे रही थी अनीता तिर्की। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं चिंतन। संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का है।

0: ये स्वर अक्सर सुनने को मिलता है कि आज आदमी आदमी नहीं रहा। दार्शनिकों विचारकों का कथन है कि ईश्वर का पहला चिंतन था फरिश्ता और ईश्वर का ही पहला शब्द था मनुष्य। ईश्वर के प्रारंभिक दोनों ही चिंतन आज लुप्त प्राय हैं। खरबूजे को देखकर जैसे खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही आदमी आदमी को देखकर रंग बदलता है। इन्हीं स्थितियों के बीच दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन की इन पंक्तियों का स्मरण हो आया, हमने पक्षियों की तरह उड़ना और मछलियों की तरह तैरना तो सीख लिया है, किंतु मनुष्य की तरह पृथ्वी पर चलना और जीना नहीं सीखा है। सत्य को जीना हमारे जीने का महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर भ्रम से उपजी गलत फहमियां भी आपसी संबंधों को जख्मी बना देती हैं। कहीं कोई गलत भी हो तो भी, गलत फहमी यदि हो तो फिर मन के फासले पाटने बहुत कठिन होते हैं, तब सत्य की तलाश अधूरी रह जाती है। आदमी आदमी से अलग हो जाता है। उम्र का एक चेहरा माया छल कपट भी है। क्षेत्र चाहे राजनीति का हो या आम जीवन का, सच्चाई है कहाँ? सब जगह दांव पेच की नीति चलती है। कथनी और करनी के बीच की दूरियां धर्म कानून व्यवस्था सुरक्षा संरक्षण और विकास की योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। इन सब के बीच बेचारा भोला भाला साफ सुथरा सीधा आदमी ठगा जाता है। आदमी भ्रम में जीता है। जो सुख शाश्वत नहीं है उसके पीछे मृग मरीचिका की तरह भागता है। धन दौलत जमीन जायदाद कब रहे हैं इस संसार में शाश्वत? फिर भी आदमी मान बैठा कि मौत के बाद भी सब कुछ मेरे साथ जाएगा, इसलिए वो परिग्रह मूर्छा आसक्ति के चक्रव्यूह से निकल नहीं पाता और स्वार्थों के दलदल में फंसकर कई जन्म खो देता है। हर सुख दुख बंद आंखों से देखा गया सपना होता है, इसलिए उसका संवेदन नहीं होता, पर खुली आंखों से देखा गया और जिया गया जीवन भी तो कौन सा शाश्वत है? भ्रमित चेतना उसी सुख दुख की संवेदना पर जीती है जो सच में सिर्फ एक सपना है, इसलिए भ्रम टूटना जरूरी है। जिंदगी के सफर में नैतिक और मानवीय उद्देश्यों के प्रति मन में अटूट विश्वास होना जरूरी है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन एवं वाचन था दिनेश कुमार लाल का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। सबसे पहले आइए सुनते हैं समवेत स्वर में ये देशभक्ति गीत। गीत श्यामलाल प्रसाद का है।

और आइए अब आराधना कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं कुछ भक्ति गीत। कलाकार हैं मौसमी। ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो कि पारंपरिक है। इसे संगीतबद्ध किया है JSR मधुकर ने।

इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आगे बढ़ते हुए मौसमी के ही स्वर में ये अगला भक्ति गीत पारंपरिक है, जिसे धुनों में पिरोया है JSR मधुकर ने।

और अब आराधना कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं मौसमी के ही स्वर में ये पारंपरिक गीत। संगीत रचना है JSR मधुकर की।

और इसी भक्ति गीत के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

अयोध्या में श्री राम के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। संध्या समय हर्षित मन से महाराज दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे, किंतु वहां रानी के कोप भवन में होने का समाचार सुनते ही सहम गए। आशंका ने उनके पांव बांध लिए। जिनकी भुजाओं में इंद्र का बल है, राजा जिनका मुंह जोहते रहते हैं, वही राजा पत्नी के क्रोध की कल्पना करके सूख से गए। आशंकित अवस्था में वो रानी के पास पहुंचे, जो मोटे मलिन वस्त्र धारण कर

भूमि पर लेटी थीं। आभूषण शरीर से उतार फेंके थे। राजा ने रानी से रूठने का कारण पूछा। उसे रुष्ट करने वाले मनुष्य तो क्या देवताओं का भी विनाश कर देने का वचन देते हैं। अपना वचन निभाने के लिए श्री राम की सौगंध उठाते हैं। राजा के वचन तथा राम की सौगंध का विचार कर रानी उठकर गहने पहनने लगी, जैसे कोई वन्य कन्या मृग को देखकर उसके लिए फंदा तैयार करने लगी हो। राजा पुलकित हुए और अगले दिन राम को युवराज पद देने का शुभ समाचार सुनाया। यह सुनकर कैकई के कठोर हृदय में ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू दिया हो।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दिए चलते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में, कार्यक्रम विवरण के माध्यम से।

अब से थोड़ी देर बाद साथ बैठकर 5 मिनट से आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत भेंटवार्ता होगी बच्चों में टीकाकरण। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर भुवन कुमार सिंह, भेंटकर्ता होंगे संजीव कुमार लाल। 7:15 का वक्त होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुबह सुरीली का। 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खुला।

प्रातः 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ साथ चलें। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे विकास की राह पर बढ़ते गांव, आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना और सरकारी योजनाओं का योगदान। जानकारी देंगे सुजीत कुमार नायक, बीपीओ राहे प्रखंड। भेंट करता होंगे सिंधु मिश्रा, प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 10:30 से जानकारी और मनोरंजन का कार्यक्रम आप सुनेंगे जोहार रांची। 11:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्में गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। दिन के 12 बजे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम होगा गृह लक्ष्मी। इसके अंतर्गत चर्चा होगी परिवार की धुरी बुजुर्ग पीढ़ी। भेंटवार्ता भी आप सुनेंगे, अनुभव का करें सम्मान। जानकारी साथ ही आपको मिलेगी नशा मुक्ति भारत अभियान के संदर्भ में, प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 12:30 का वक्त होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। दोपहर 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 1:20 का वक्त होगा उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। इसके अंतर्गत आज कलाकार होंगी अनिता सेन। 1:45 का वक्त होगा सुगम संगीत के कार्यक्रम का। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गजल।

0: दोपहर 2:30 पर फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा जय भारती। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दोपहर 3:00। 3:30 का वक्त होगा रांची मेलोडीज कार्यक्रम का। शाम 4:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 4:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ साथ चलें। 4:35 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5:02 का वक्त होगा युवाणी कार्यक्रम का। 5:30 पर आप सुनेंगे श्रमिक लोक कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम् अद्य आरभ्यमाणस्य 50वें G7 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनाय सज्जः अस्ति। आल्पस पर्वत श्रेण्याः लेमनाख्य सरोवरस्य च मध्ये स्थितं सुरम्यं लेक्सेंड नगरं वैश्विक कूटनीतेः केन्द्ररूपेण परिवर्तितमस्ति, यत्र नेतारः प्रतिनिधयश्च त्रिदिवसीयेऽस्मिन् कार्यक्रमे आगच्छन्ति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों अद्य अपराह्णे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान इत्यादीनां G7 राष्ट्राणां नेतृणां यूरोपीय परिषदः यूरोपीय आयोगस्य च अध्यक्षैः सह औपचारिकरूपेण स्वागतं करिष्यति। अयं शिखर सम्मेलनं तस्मिन् समये भवति यदा विश्वं भूराजनैतिक संकटैः आर्थिक अनिश्चिततया नूतन प्रौद्योगिकीनां द्रुतविकासेन च ग्रसितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः आउटरीच इत्येतेषु सत्रेषु भागं ग्रहीष्यति। शिखर सम्मेलने भारतस्य सहभागित्वेन प्रमुख वैश्विक विषयेषु चर्चासु योगदानं कुर्वन्

0: वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकताः चिन्ताः च प्रकाशयितुम् अवसराः प्राप्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह विस्तृत चर्चां विधाय भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुं चर्चासु भागम् अगृह्णन् फ्रांसदेशस्य नीस नगरस्य स्वयात्रा समापिता। विदेशमन्त्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः फ्रांसदेशस्य यात्रायाः परिणामे विशेषसूचनाः प्रदत्ताः। सूचनायां विदेशसचिवः विक्रममिश्री फ्रांस भारत नवान्वेषणस्य मार्गचित्रं 30-2000 इति अस्याः यात्रायाः प्रमुखं परिणामम् इति वर्णितवान्, यस्योद्देश्यं महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधनेषु शैक्षणिक विनिमयेषु च सहयोगं सुदृढं कर्तुमस्ति। उत्तरप्रदेशस्य गौतमबुद्धनगरस्य जेवरनगरे स्थितात् नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकात् वाणिज्य विमानसेवाः अद्य आरभ्यन्ते। इण्डिगो एयरलाइन्स संस्थया प्रथमं विमानं लखनऊतः प्रातः 5:07 प्रचालयिष्यते। नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके प्रातः 5:08 तद्विमानम् आगमिष्यति। तदनन्तरं नोएडा नगरात् बेंगलुरु नगरं प्रति प्रथमं नियमितं वाणिज्यिक विमानम् अपि प्रचलिष्यति। एकं विमानं लखनऊ नगरं प्रति प्रस्थास्यति। जेवरस्य एमएलए धीरेन्द्र सिंहेन सह प्रथमे विमाने 20 महिलाभिः सह 270 यावत् कृषकाः भविष्यन्ति। एते कृषकाः ते सन्ति येषां भूमिः विमानस्थानकस्य कृते अधिगृहीता आसीत्। लखनऊनगरं प्राप्य एते कृषकाः मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह मिलित्वा कार्तज्ञतां प्रकटयिष्यन्ति। अद्य विश्ववायुदिवसः आचर्यते। पवनशक्तेः जलवायुपरिवर्तनं प्रतिरोधे तस्यां भूमिकां च प्रोत्साहनाय प्रतिवर्षं जूनमासस्य 15 अयं दिवसः आचर्यते। भारतम् अद्य गोवाराज्ये 26,000 वैश्विकवायुदिवस सम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानाम् आईसीसी 20-प्रति-20 विश्वचषक क्रीडायां वर्मिंघम नगरस्य एजवेस्टन नगरे ग्रुपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 64 पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए

0: अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के 1/5 हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत एक भेंटवार्ता। विषय है बच्चों में टीकाकरण। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर भुवन कुमार सिंह और इनसे बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
3: मित्रों जोहार, नमस्कार। मित्रों, छोटे छोटे बच्चे हमारे राष्ट्र की तकदीर हैं। यही छोटे छोटे बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, स्वस्थ रहते हैं तो एक राष्ट्र को नई ऊंचाई तक ले जाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर बड़े होने तक समय समय पर टीकाकरण शुरू किया जाता है, बच्चों में टीका लगाया जाता है। तो सभी बच्चों में टीकाकरण सही समय पर लग जाए ताकि बच्चा रोग मुक्त रहे और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो। बच्चा स्वस्थ रहेगा और वो सही तरीके से पल्लवित और पुष्पित होगा और बड़ा होगा और देश के विकास में अग्रणी योगदान देगा। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि बच्चों में टीकाकरण कब कब लगाया जाता है, कितने दिनों पर लगाया जाता है और कौन कौन से टीका लगाया जाता है। भारत सरकार की ओर से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा देशव्यापी प्रोग्राम है ये। इसके तहत बच्चों को टीकाकरण लगाया जाता है। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भुवन कुमार सिंह। डॉक्टर साहब स्वागत है।
4: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब। बच्चों में टीकाकरण कितना ज़रूरी है?
4: टीकाकरण आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। आज जिन बीमारियों से लाखों बच्चों की जान बच रही है उनमें टीकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक समय था जब पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया और काली खांसी जैसी बीमारियां बच्चों की जान ले लेती थी या उन्हें जीवन भर के लिए विकलांग बना देती थी, लेकिन आज टीकाकरण की वजह से इन बीमारियों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा चुका है।
3: बहुत पहले जब बच्चा जन्म लेता था तो बहुत सारी बीमारियां उसे घेर लेती थी और बच्चे की जान भी चली जाती थी। तो जब जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तब से कौन कौन सा टीका लगाया जाता है?
4: जन्म के समय बच्चों में ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी और बीसीजी का टीका दिया जाता है। 1.5 माह पर बच्चों में ओपीवी, पेंटावैक, रोटा वायरस, न्यूमोकोकल वैक्सीन और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन का टीका दिया जाता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत 2.5 महीने पे ओपीवी का टीका, पेंटावैक और रोटा वायरस का टीका दिया जाता है। 3.5 महीने पे बच्चों में ओरल पोलियो वैक्सीन, पेंटावैलेंट, रोटा वायरस, न्यूमोकोकल वैक्सीन और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन का भी टीका दिया जाता है। 9 महीने पे बच्चों में MR यानी मम्स और रूबेला, जैपनीज एनकेफेलाइटिस, विटामिन ए और PCV बूस्टर का टीका दिया जाता है। 16 से 24 माह यानी कि 1.5 साल से 2 साल के बीच में बच्चों में DPT का टीका, विटामिन ए, MR यानी मीजल्स रूबेला, जैपनीज एनकेफेलाइटिस का टीका जो कि दूसरा उसका डोज होता है और OPV बूस्टर दिया जाता है। इसके बाद 5 से 6 साल के बच्चों में DPT का बूस्टर डोज दिया जाता है। 10 वर्ष पे टेटनस और डिफ्थीरिया और 16 वर्ष पे भी TD यानी टेटनस और डिफ्थीरिया का डोज दिया जाता है।
3: ये सारा जो टीका लगता है बच्चों को, ये निःशुल्क लगाया जाता है सरकार की ओर से?
4: जी हाँ, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम में से एक है। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर बच्चों के आवश्यक टीके निःशुल्क उपलब्ध हैं। भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अलावा एक IAP शेड्यूल जिसको बोलते हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक शेड्यूल का भी टीकाकरण का प्रोग्राम अलग से उपलब्ध है, जिनमें कुछ अलग जो वैक्सीन्स सरकारी संस्थान पर उपलब्ध नहीं है वहाँ पर दी जाती हैं। उनमें से 5 मुख्य वैक्सीन है जो कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उपलब्ध नहीं है और जो कि IAP शेड्यूल में उपलब्ध हैं, जिनके नाम है इन्फ्लुएंजा की का वैक्सीन, टाइफॉइड, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, वेरिसेला यानी कि चिकन पॉक्स का वैक्सीन और हेपेटाइटिस ए। तो ये 5 वैक्सीन जो है ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उपलब्ध नहीं है लेकिन इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक शेड्यूल में उपलब्ध हैं।
3: तो ये सारी टीका निःशुल्क सरकार की ओर से लगाई जाती है और कुछ कुछ टीका ऐसे हैं जो आप बाहर से भी लगा सकते हैं जैसा आप बता रहे हैं। बच्चे में टीका लगाने के उपरांत कुछ कुछ रिएक्शंस भी दिखते हैं, तो ऐसे भी माता पिता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या क्या टीका लगाने के उपरांत रिएक्शन होने की संभावना रहती है और माता पिता किस प्रकार ध्यान दें?
4: टीका लगाने के बाद कभी कभी बच्चों में हल्का बुखार, सूजन या चिड़चिड़ापन हो सकता है। यह सामान्य बात है और इस बात का संकेत है कि शरीर में सुरक्षा विकसित हो रही है। ये लक्षण सामान्यतः 1 से 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ होते हैं जबकि टीकों से मिलने वाला लाभ जीवन भर का सुरक्षा देता है।
3: डॉक्टर साहब, कई बार हमारी माताएं सही समय पर टीका नहीं लगा पाती हैं, दिन भूल जाती हैं कि कब लगाना है, तो जब ध्यान आ जाए तब टीका लगा लिया जाए? भूल जाते हैं किसी कारणवश कि आगामी टीका हमको इस समय पर लगाना था, तो जैसे ही हमें ध्यान आ जाता है कि हमने टीका अपने बच्चों को नहीं लगाया है तो जल्द से जल्द अपने बच्चों को इम्यूनाइज करवा लें, टीका लगवा लें।
4: मैं सभी माता पिता से विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि टीके समय पर ज़रूर लगवाएं। कई बार लोग सोचते हैं कि कुछ दिन की देरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टीके में देरी होने पर बच्चा उस अवधि में असुरक्षित रह सकता है। इसलिए टीकाकरण कार्ड संभाल कर रखें और डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी द्वारा बताए गए समय पर टीका अवश्य लगवाएं।
3: जी, मतलब आपके जो दैनिक कार्य है उसको छोड़कर अपने बच्चों को समय पर टीका जरूर लगवाएं। टीका लगाने में किसी तरह की कोताही ना करें, टाल मटोल ना करें। एक चार्ट आपको स्वास्थ्य केंद्र पर दिया जाता है कि आगामी टीका कब कब लगाना है, उस दिन उसी समय आप बच्चों को टीका लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
4: जी,
3: कई माताएं और पिता भूल जाते हैं, सोचते हैं कि टीका लगाने से क्या होगा, उनको क्या कहेंगे कि टीका लगाना कितना ज़रूरी है?
4: टीकाकरण केवल एक बच्चे की सुरक्षा नहीं करता बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा बनाकर रखता है। जब अधिकतर लोग टीका लगवाते हैं तो बीमारी फैलने की संभावना कम हो जाती है। इसे नवजात शिशु, कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग भी सुरक्षित रहते हैं। इसे सामूहिक प्रतिरक्षा यानी हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। कोविड महामारी में भी हमने यह सीखा कि बीमारी से बचाव इलाज से बेहतर होता है और वैक्सीन ने लाखों लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अच्छे पोषण टीकाकरण का साथ बहुत ज़रूरी है। यदि बच्चे को समय पर टीका मिले, साथ ही सही पोषण, स्तनपान, स्वच्छता और नियमित स्वास्थ्य जाँच हो तो उसका विकास बेहतर होता है।
3: डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे हमारे माताओं और बहनों को कि अपने बच्चों का समुचित इलाज कराएं, सही समय पर टीका उनका लग जाना चाहिए ताकि बच्चा आपका स्वस्थ हो।
4: अंत में मैं सभी माता पिता से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को का कोई भी टीका ना छोड़ें। टीकाकरण आपके बच्चे के स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा है। स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे, इसलिए टीका अवश्य लगवाएं, समय पे लगवाएं और कोई भी टीका ना छोड़ें। बूस्टर डोज हो या उस टीके का सेकेंड या थर्ड डोज हो तो वो भी ज़रूर से लगवाएं। और जो कार्ड आपको दिया जाता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो प्रोग्राम के तहत जो भी कार्ड आपको मिलता है उसको संभाल कर रखें। और स्वास्थ्य कर्मी द्वारा जो दिया गया डेट होता है जिस डेट पर आपको टीका लगवाना चाहिए उस डेट पर आप ज़रूर से अस्पताल चले जाएँ।
3: जी जी, और हर सेंटर पर चाहे वो गांव हो, देहात हो, शहर हो, जो चिकित्सा केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ ये सुविधाएं निशुल्क दी जाती हैं डॉक्टर साहब?
4: जी, हर लेवल पे देखा जाए, आंगनवाड़ी के लेवल पे या सरकारी अस्पताल के लेवल पे टीका का सरकार द्वारा खासकर ध्यान रखा जाता है। टीके को सही टेम्परेचर पे रखने का प्रोटोकॉल्स है उसको सही तरीके से फॉलो किया जाता है। इसको अक्सर हम लोग आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर जिसको ILR कहते हैं उसमें रखते हैं और इसका सही टेम्परेचर मेंटेन हो उसका हम लोग 24 आवर्स जो सरकार द्वारा उसको मॉनिटर किया जाता है। तो टीके की क्षमता कम ना हो इसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो जो व्यवस्था है हर लेवल पे उपलब्ध है और हर लेवल पे आपको प्रॉपर कार्ड, डॉक्यूमेंटेशन या कब आना है ये सब कुछ प्रॉपरली बताया जाता है। तो कहीं पर भी पेशेंट को जो माता पिता हैं उनको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, उनको पता रहेगा, स्वास्थ्य कर्मी द्वारा बताया जाता है कि आपको इस डेट पे आना है तो बस उनको उस डेट पे उपस्थित रहना है। उस दिन का टीका तो वो करेंगे ही और नेक्स्ट डेट भी वो लोग लिख कर देते हैं। तो काफ़ी कुछ देखा जाए तो सरकार की तरफ से क्लियर कट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है।
3: एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सरकार की ओर से चलाया जाता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसके तहत सभी बच्चे जन्म से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क टीका लगाया जाता है ताकि वह बच्चे स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और जब यही बच्चा स्वस्थ रहेगा, आगे बढ़ेगा तो देश के विकास में अपनी महती योगदान देगा, क्योंकि कहते हैं आज के बच्चे कल के देश के भावी कर्णधार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भुवन कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ। बड़ी अच्छी आपने बातचीत की कि बच्चों में टीकाकरण कब कब लगाया जाता है और टीका लगाने के उपरांत थोड़ी बहुत परेशानियाँ बच्चों में दिखलाई भी पड़ जाते हैं, जैसे बच्चों में थोड़ी सी बुखार भी आने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसमें माता पिता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये इंगित करता है, यह संकेत देता है कि टीका सही से कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।
4: नमस्कार।
2: बच्चों में टीकाकरण, इस विषय पर अभी आप एक भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर भुवन कुमार सिंह, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल। और इसी के साथ आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली।

ये है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति, फिल्म हैसियत। शब्द इंदिवर के, संगीत बप्पी लहरी का और आवाज यसुदास की।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: सत्यम शिवम सुंदरम, इस फिल्म में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को। शब्द आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं फिल्म हीरो का ये गीत। आवाज लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनाते हैं फिल्म सरगम का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के शब्दों को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: और इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत वार्ता प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इटखोरी का भद्रकाली मंदिर। वार्ताकार हैं प्रकाश कुमार।
1: झारखंड की रत्न गर्भा धरती न केवल वन संपदा, खनिज संसाधन, नैसर्गिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है, अपितु सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक अस्मिता के अक्षुण्णता के लिए भी प्राचीन काल से चर्चित है। इसके वक्षस्थल पर अनेक सिद्धपीठ एवं तंत्रपीठ विराजमान हैं, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अति दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित होने के बाद भी पर्यटक मंत्रमुग्ध होकर यहाँ पर खींचे चले आते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में चतरा जिले का अतीत बड़ा ही स्वर्णिम है। चतरा जिला के इटखोरी में स्थित माँ भद्रकाली परिसर एवं हंटरगंज प्रखंड में स्थित माँ कौलेश्वरी धार्मिक एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन सैकड़ों और विशेष अवसरों पर लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं, कुछ भक्तिभाव से परिपूर्ण तो कुछ रमणीक दृश्यों के अवलोकन हेतु तथा कुछ विद्वान ज्ञानार्जन के लिए यहाँ आते हैं। इटखोरी के भद्रकाली परिसर एवं कौलेश्वरी पर्वत पर सनातन बौद्ध जैन एवं शैव से संबंधित कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वस्तुएं आज भी उपलब्ध हैं। प्रखंड कार्यालय इटखोरी से 1 किलोमीटर पश्चिम सुरभ्य वन में मोहाने नदी के आंचल पर बसा सिद्धपीठ भदली की अनुपम महात्म्य भूमि है। यहाँ पहुँचने के लिए निकटस्थ नगर गया, कोडरमा, झुमरी तिलैया, हजारीबाग, धनबाद एवं चतरा से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचने की अनुकूल सुविधा प्राप्त है। यहां भगवती भद्रकाली देवी वर मुद्रा धारण करती हुई सौम्य रूपमयी लक्ष्मी स्वरूपिणी विराजमान है। यहां मुंडन एवं विवाह मुहूर्त, पूर्णिमा, संक्रांति, नवरात्र, अष्टमी, मंगलवार एवं गुरुवार में श्रद्धालु उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर पूजन अर्चन कर अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। श्रावण मास में गंगा महाने से कांवर द्वारा जल भरकर सहस्त्र भीम शंकर तथा माँ को अर्पित करते हैं। 23-58 अक्षांश पर स्थित नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में माँ भद्रकाली की आदन कद काले पत्थर की प्रतिमा, दोनों तरफ विष्णु शिव की प्रतिमा एवं अन्य सरस्वती गौरी शंकर देवी देवताओं की लगभग 2 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है। यहाँ वैष्णव पूजा का प्रावधान है। संपूर्ण विश्व में स्वयंभू शिवलिंग की विशेषता यह है कि भूरा लाल पाषाण से निर्मित इस आदमकद शिवलिंग में 1008 छोटे लिंग उत्कीर्ण हैं। ब्रह्मा विष्णु की श्रेष्ठता की परीक्षा के लिए यही शिवलिंग आद्यांत हो गया था। यहीं प्राच्यकलापूर्ण पाषाण सिंह द्वार सदियों से बिना टेक का खड़ा है, जिसके तत्व से युगल नाग दंपति प्रकट होकर कभी कभी दूध का पान करते हैं। यही विशाल नंदी वृक्ष विराजमान है, जो प्राचीन मूर्तिकला की एक धरोहर है। श्रावण एवं प्रदोष एवं शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ उत्तर महाने से जल भरकर भक्त यहाँ अर्पण करते हैं। जहाँ एक जलधारा से सहस्त्र शिव पूजन का अमृत अक्षय फल प्राप्त किया जाता है। भीमशंकर सा समान आकार प्रकार के शिवलिंग रूपी बौद्ध स्तूप में बुद्ध मूर्ति उत्कीर्ण है एवं मस्तक पर जटा सा स्तूपाकार पाषाण एक गड्ढे के ऊपर स्थित है, जिसे उठाया जा सकता है। काले पत्थर से निर्मित इस लिंग स्वरूप चैत्य के जटा पर जल का उद्गम आज भी वैज्ञानिक युग में शोध का विषय है। 2 बुद्ध प्रतिमा तप एवं 2 प्रणाम एवं अन्य 486 तप मुद्रा में है। कहा जाता है शिव जी ने इसी स्थान पर केतकी को श्रापित किया था। इस घटना के बाद शंकर जी पर केवड़ा पुष्प अर्पण नहीं किया जाता है, किंतु विष्णु पर कार्तिक मास में अर्पण पुण्यप्रद है। 6वीं सदी पूर्व विष्णु के नवम अवतार भगवान बुद्ध की तपोभूमि प्रमाणिकता कोटेश्वरनाथ बौद्ध मूर्ति स्तूप एवं धर्म ग्रंथों में इतिसोई से मिलता है। यह स्थान बुद्धिस्ट सर्किट के तहत है। हिंदू इन्हें कोटेश्वरनाथ की संज्ञा से पूजन कर अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। युगलचरण मुख्य मंदिर से 200 फीट पश्चिम पत्थर पर उत्कीर्ण युगलचरण हिंदू विष्णु पद कहकर पूजन करते हैं, किंतु वस्तुतः यह पवित्र चरण 10 BC जैन तीर्थंकर शीतलनाथ इतलखोई एवं 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्पष्ट करता है। यहाँ से मंजूषा भी प्राप्त हुई है। मुख्य मंदिर एवं सहस्त्र भीम शंकर के बीच हनुमत लाल जी की मनमोहक प्रतिमा भक्तों को सदैव आह्लादित करती है। कल्याणेश्वर शिवलिंग मंदिर प्रांगण में विशाल वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग की उपस्थिति शिव भक्ति के प्रगाढ़ संगम को अवलोकित करता है। उत्तर वाहिनी मुहाने कोटेश्वरनाथ से 800 फीट उत्तर दिशा में नदी धारा उत्तर दिशा में बहकर गंगा का निरूपण करती है। श्रावण एवं प्रदोष में यहाँ से कांवर द्वारा जल उठाया जाता है। भीम शंकर से 1000 फीट पूर्व तालाब के छोर एवं इटखोरी रास्ते पर करुणामयी माँ एवं द्वारपाल की उपस्थिति दर्शनीय है। संग्रहालय में यहाँ 419 से अधिक मूर्तियाँ दर्शनीय हैं। उसी तरह कोल्हुआ पहाड़ स्थित कौलेश्वरी मंदिर चतरा डोभी राजमार्ग पर जोरी पक्या मोड़ से 10 किलोमीटर पूर्व या घंघरी से 6 किलोमीटर पर दंतार से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पहाड़ी पथ तय कर सूरत की राजधानी गयासुर की तपोभूमि जैन 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की तपोस्थली

क्षेत्र में सैकड़ों बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। यहाँ महादेव, पाताल गंगा, महानिर्वाण गुफा, पहाड़ी बाबा की गुफा, मितवा पहाड़ गुफा, घोड़दौड़ युगलचरण, वरुण उर्फ राम गुफा, गाय घाट, बाण गंगा, तारा देवी, द्वारपाल, भीमभार, गर्ग मुनि की तपोभूमि एवं नीलाजन नदी तथा राजमार्ग के साथ साथ 10 किलोमीटर चलती लीलाजन तथा 50 से 100 किलोमीटर चारों तरफ वन क्षेत्र से हरित पहाड़ियां, नदियों, इक्के दुक्के हरे भरे गांव और भी प्रसन्नता प्रकृति को देती है। वसंत नवरात्र नवमी में प्रत्येक साल 5 दिन का विशाल मेला एवं विवाह मंडप मुहूर्त में हजारों श्रद्धालु, विदेशी पर्यटक चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका आदि देशों से दिसंबर से जून के बीच आकर आनंद प्राप्त करते हैं। काले पत्थर पर निर्मित 30 इंच की उज्ज्वलायमान प्रतिमा, जिसके दाहिने हाथ में गदा, त्रिशूल एवं बाएं अंग में सुदर्शन चक्र तथा अनामिका से महिषासुर का पूंछ पकड़े हुए तथा दाहिने हाथ से महिषासुर पर त्रिशूल चुभाती माँ मस्तक पर अर्धचंद्र लेकर विराजमान है। यहाँ भद्रकाली देवी की तरह आंख, कंठ एवं बिंदिया वस्त्राभूषण भी चढ़ाया जाता है। यह देवी असुरों की आराध्या तथा गयावाल की कुलदेवी एवं पुत्र प्रदायी देवी के रूप में पूजित है। ज्ञातव्य है कि यहाँ से भी मूर्तियों की तस्करी हुई है। भैरवनाथ उर्फ पार्श्वनाथ, जहाँ बौद्धिक सनातन इन्हें भैरव की मुद्रा में, इन्हें द्वादश भैरव से पूजित हैं, वहीं जैन विद्वान इन्हें पार्श्वनाथ की मुद्रा को स्पष्ट करते हैं। दोनों मतानुरागी भक्ति भाव से पूजन प्रेम पूर्वक करते हैं। यहाँ भीमभार भी स्थित है, एक और देवी की मूर्ति पूजित है। भूतनाथ मुख्य मंदिर से पूरब पहाड़ी पर विशाल काला शिवलिंग विराजमान है। जैन मंदिर विवाह मंडप के नीचे पहाड़ी तट पर पार्श्वनाथ जी के विशाल प्रतिमा जैन मंदिर में प्रतिष्ठित हैं। सरोवर पहाड़ी चोटी पर लगभग 490x210 फीट क्षेत्र में फैली रक्त कमल पुष्प पूर्ण सरोवर भीषण गर्मी में भी शीतल जल पूर्ण रखता है। सतबरवा सरोवर से दक्षिण मितवा पहाड़ के समीप 7 बड़ी गुफा एवं आकाश लोचन के पूर्व 7 गुफा पांडवों के अज्ञातवास में राजा विराट की राजधानी का निरूपण करते हैं। दूसरा सतघरवा आकाश लोचन के नीचे भी गुफा है। यहाँ वानरों एवं हनुमान झुंड को भी देखा जाता है। पांचों पांडव, दसों अवतार आकाश लोचन के नीचे पश्चिम पहाड़ी तल पर विशाल चट्टान पर 5 तपस्वी मुद्रा में उत्कीर्ण बुद्ध मुद्रा एवं 5 वीर मुद्रा में नग्न हैं। अर्जुन ने अज्ञातवास के बाद अपनी वीरता का प्रमाण लौह चट्टान में तीर संधान कर दिखाया था। आज भी चट्टान पर वाण के प्रहार का निशान एवं सूक्ष्म जल स्रोत इसका प्रमाण है। मंदिर के पश्चिम मात्र 2 फीट गहरा जल स्रोत से निरंतर शीतल जल बहता रहता है। जितना अधिक जल निकाला जाए, जल स्तर घटता नहीं है। यहीं नीचे शिवलिंग भी है, जो केदली के रास्ते में है। संपूर्ण पहाड़ी शिखर पर 30x10 फीट चार दीवारी के भग्नावशेष सामरिक नगर को बतलाते हैं। इस तरह इटखोरी का भद्रकाली मंदिर एवं हंटरगंज का कौलेश्वरी मंदिर झारखंड का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ पर समय समय पर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत वार्ता। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इटखोरी का भद्रकाली मंदिर। वार्ताकार थे प्रकाश कुमार। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

0: आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दिए चलते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। 8:45 पर आप सुनेंगे नागपुरी में लोक रंग कार्यक्रम, कलाकार होंगे इग्नेश कुमार। प्रातः 9 बजे का वक्त होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम रस रंजन का। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के आयोजन में आज आप सुनेंगे सविता राय से रागनंद में ख्याल गायन, विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध होगी। तबले पर संगत करेंगे श्यामानंद झा, हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती। दस बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ साथ चले, इसके अंतर्गत विकास की राह पर बढ़ते गांव, आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना और सरकारी योजनाओं का योगदान के संदर्भ में जानकारी मिलेगी आपको। भेंटवार्ताकार होंगे सुजीत कुमार नायक, बीपीओ राहे प्रखंड। भेंटकर्ता होंगे सिंधु मिश्रा, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की होगी। 10:30 पर आप सुनेंगे जानकारियों और मनोरंजन का कार्यक्रम जोहार रांची। 11:30 का वक्त होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। दिन के 12 बजे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम लेकर आएंगे गृह लक्ष्मी, इसके अंतर्गत चर्चा होगी परिवार की धुरी बुजुर्ग पीढ़ी। साथ ही इसके अंतर्गत भेंटवार्ता भी आप सुनेंगे, अनुभव का करें सम्मान। और जानकारी मिलेगी आपको नशा मुक्ति भारत अभियान के संदर्भ में, प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 12:30 का वक्त होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। दिन के 1:20 पर आप सुनेंगे उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी, कलाकार होंगी अनिता सेन। 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, इसके अंतर्गत गजल आप सुनेंगे आशा भोसले के स्वर में। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, सुबह के 8 बजने को हैं। अब हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
6: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमरीका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
5: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
7: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
5: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
9: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
10: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
5: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट

0: एसटीयूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
1: मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रूपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रूपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों

0: का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच। हिन्दुस्तान लिखता है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. US and Iran reach agreement to end military operations, open Strait of Hormuz and lift US naval blockade of Iranian ports. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry 1/5 of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
3: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon, will end permanently starting tonight. Oil prices fell on the news. Brent crude futures fell 4% in early trading today, while US West Texas Intermediate slid more than 4.6%. Stock markets in Asia jumped. Komudi Parekh for Akashvani News, Delhi.
2: Leaders across the world have welcomed the peace deal announced between the United States and Iran, describing it as a

0: In the Vande Bharat train brings immense joy. Ever since the Vande Bharat train services started, we mostly travel by it. It is an absolutely excellent train, and the best part about it is that it saves a lot of time during the journey and the seats are very comfortable.
1: Together, these achievements are creating a faster, more connected and more prosperous India, laying the foundation for a Viksit Bharat by 2047. Saklain Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: The National Testing Agency, NTA, has released the admit cards for the NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education. Candidates can download their admit cards from NTA's official website, neet.nta.nic.in. The re-examination is scheduled to be held on 21st of this month from 2 p.m. to 5:15 p.m. NTA has advised the candidates that they should verify their bank account details for refund before downloading the admit card. The 19th Mumbai International Film Festival will begin today. The formal opening ceremony will be held at Mumbai's Ravindranath Mandir in the evening, whereas the screenings of films will begin from the morning. This year, the competition section comprises 144 films, including 52 international and 92 national entries, representing filmmakers from 13 countries, whereas the non-competition section will feature a total of 202 films, including 106 international titles and 96 national films from 46 participating countries. On to sports. In ICC Women's T20 World Cup opener, India defeated Pakistan by 64 runs in Group A match at Edgbaston in Birmingham last night. India set a target of 171 runs for arch-rivals Pakistan. In reply, Pakistan were all out for 106 runs in 17 overs. Opting to bat, India posted 170 for 6 in their allotted 20 overs. Smriti Mandhana was the highest run scorer with 68 runs in 44 deliveries. Deepti Sharma was adjudged player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
3: Thank you, Shagun. The Pioneer headlines, Modi, Macron advance India-France strategic relations, leaders discuss strengthening people-to-people linkages alongside advancements to science, space, fintech and infrastructure. While the Asian Age headlines, India-France agree to double trade to $32 billion, 13 outcomes. 20 TMC rebels split in Lok Sabha, merge with regional outfit, reports the Tribune. Indian-flagged sailing vessel sinks off Oman, crew rescued, informs the Hindu. The Financial Express, in its editorial piece titled Access Denied, writes that the decision by US authorities to restrict foreign access to Anthropic's latest AI models, Mythos 5 and Fable 5, may appear at first glance to concern a single company and a limited set of users. For India, the episode is a reminder that access to frontier technology cannot be taken for granted. Countries that wish to shape their digital future will increasingly need the capability to build, adapt and sustain critical technologies at home. And finally, cross, control, dribble, goal, fans tweak work schedules, body clock to watch World Cup football magic. In its opening weekend, the FIFA World Cup has begun capturing the imagination of Indian fans and viewers, juggling work, family commitments, obligations for the games, beginning after midnight and ending at dawn, sometimes even well into mornings, prompting Indian fans to step into a portal, choosing to live by another continent's clock, reads a story in the Times of India. And with that, it's back to you, Shagun.
2: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. US and Iran reach agreement to end military operations, open Strait of Hormuz, and lift US naval blockade of Iranian ports. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Avignon in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रोहिताशे रॉय को नया महाधिवक्ता नियुक्त किया। राजीव रंजन के इस्तीफे के बाद भाजपा और झामुमो आमने सामने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से डीवीसी कमांड क्षेत्र के जिलों में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का किया आग्रह। झारखंड के पारंपरिक उत्पाद भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क और डोकरा शिल्प समेत 11 विशिष्ट उत्पादों को मिला जीआई टैग। उत्पादों को मिलेगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार। राज्य भर में आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोर किशोरियों को खिलाई जाएगी कृमि नाशक दवा। और जेएससी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल खेले गए जेपीएल T20 मुकाबले में कोयलांचल सुपर किंग्स और छोटा नागपुर रॉयल्स ने जीत दर्ज की। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रोहिताशे रॉय को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। विधि विभाग की अधिसूचना के अनुसार राजीव रंजन के त्यागपत्र को स्वीकृत करते हुए सरकार ने नए महाधिवक्ता को अगले आदेश तक नियुक्त किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अपर महाधिवक्ता अच्युत केशव के पद को उत्क्रमित करते हुए उन्हें वरीय अपर महाधिवक्ता नियुक्त किया है। गौरतलब है कि राजीव रंजन ने रविवार को ही महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। इधर महाधिवक्ता राजीव रंजन के इस्तीफे को लेकर प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।
5: इस समय अचानक उनका इस्तीफा दे देना राज्य सरकार में कई संशय को जन्म दे रहा है। इस्तीफा दिलवाया गया या उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया, यह बात बहुत संशय में चल रहा है कि क्या ऐसी विकट परिस्थिति आ गई कि महाधिवक्ता जो संवैधानिक पद है उनको इस्तीफा देना पड़ गया। बहुत राजनीतिक पंडित लोग हैं जो इस बारे में अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं।
4: वहीं झामुमो ने कहा कि राजीव रंजन ने इस्तीफा क्यों दिया, यह उनका निजी कारण हो सकता है।
6: सरकार को पता रहे चाहे नहीं रहे, विपक्ष को सब पता है। देखिए, इस्तीफा हुआ, खबरें हम लोगों ने भी पढ़ी। इस्तीफे के क्या कारण है, व्यक्तिगत कारण है, स्वार्थ संबंधी कारण है या कोई अन्य कारण है, ये तो बेहतर बता पाएंगे जो पूर्व में जी रह चुके हैं राजीव रंजन जी। लेकिन मैं इतना बोलूंगा, उनका कार्यकाल बहुत ही संतोषजनक रहा।
4: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से राज्य के डीवीसी कमांड एरिया में बिजली आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि धनबाद, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और रामगढ़ जिले के उपभोक्ताओं को राहत दिलाना जरूरी है। उन्होंने लिखा कि डीवीसी कमांड एरिया में पहले 600 मेगावाट बिजली की खपत थी जो बढ़कर 800 मेगावाट तक पहुंच गई है। राज्य सरकार राजधानी रांची की 86 किलोमीटर लंबी रिंग रोड को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर के रूप में विकसित करेगी। योजना के तहत रिंग रोड के दोनों किनारों पर सर्विस रोड से लगे करीब 40 किलोमीटर क्षेत्र में साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, ग्रीन वर्ज, सोलर रूफ और सोलर लाइटिंग सिस्टम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पथ निर्माण विभाग DPR तैयार कर रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के टाउन हॉल में कल आजसू पार्टी की ओर से कोल्हान प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि आजसू पार्टी झारखंड के भविष्य निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। झारखंड के 11 विशिष्ट उत्पादों को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग पाने वाले उत्पादों में भगैया सिल्क एवं फैब्रिक, कुचाई सिल्क, केसरिया कलाकंद, डोकरा शिल्प, दुमका चंदर, बड़ोनी पपेट्स, मुंडा आभूषण, झारखंड बांस शिल्प, तसर सिल्क और साड़ियां, जादोपटिया चित्रकला और पांची साड़ी तथा फैब्रिक्स शामिल हैं। जीआई टैग से विलुप्त होती लोक कलाओं को नया जीवन मिलेगा और कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर बाजार मिलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यभर में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। राजधानी रांची में 1 से 19 वर्ष तक के 4,84,000 से अधिक बच्चों और किशोर किशोरियों को कृमि नाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 18 जून को छूटे हुए बच्चों के लिए मॉपअप दिवस मनाया जाएगा। सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को अनिवार्य रूप से दवा दिलवाएं। गंभीर रूप से बीमार बच्चों और गर्भवती महिलाओं को यह दवा नहीं दी जाएगी।
7: इस अभियान के तहत जिले के 4,84,435 बच्चों एवं किशोर किशोरियों को कृमि नाशक दवा एल्बेंडाजोल पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के दौरान 1 वर्ष से 19 वर्ष तक आयु वर्ग के सभी बच्चों एवं किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी।
4: झारखंड में मॉनसून शुरू होने के साथ ही कृषि विभाग सक्रिय हो गया है। कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने सभी जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों को किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर बीज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
8: बीज का जो वितरण है वो ब्लॉकचेन के माध्यम से होगा और ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि कोई भी किसान जब बीज का लिफ्टिंग करता है तो ये सुनिश्चित करे कि वो अपने खेतों में बुआई करे, उसको खुले मार्केट में बेच ना दे, जो भी बुआई करे उसका जियो टैगिंग करने का भी डायरेक्शन दिया गया है कि आप जाके देखिए कि किसान ने वास्तव में लगाया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितनी जोत है किसान की उस जोत के अनुरूप ही बीज उसको देना है, जोत से ज्यादा बीज नहीं देना है।
4: मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में 20 जून तक गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने किसानों, खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में झारखंड T20 क्रिकेट लीग का उत्साह चरम पर है। हमारे रांची संवाददाता ने बताया है कि चौथे दिन कल कोयलांचल सुपर किंग्स और छोटा नागपुर रॉयल्स ने अपने अपने मुकाबले जीते।
9: राजधानी रांची का जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट के रोमांच और खेल प्रेमियों के उत्साह से सराबोर है। कल खेले गए मुकाबले में कोयलांचल सुपर किंग्स ने सनराइज रांची टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया। सनराइज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवर में 82 रन बनाए। कोयलांचल सुपर किंग्स ने 11 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं दूसरे मैच में छोटा नागपुर रॉयल्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को 8 विकेट से पराजित कर दिया। संथाल स्ट्राइकर्स की टीम ने 168 रन बनाए जिसके जवाब में छोटा नागपुर ने 169 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार रांची।
4: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राजीव रंजन के महाधिवक्ता पद से इस्तीफा देने और नए महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय की नियुक्ति की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत और फ्रांस बना सकते हैं AI का ओपन सोर्स मॉडल। दैनिक जागरण की सुर्खी है, राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों को एकजुट रखने के लिए डिनर डिप्लोमेसी। प्रभात खबर ने T20 महिला विश्व कप मुकाबले को लेकर लिखा है, दीप्ति पंजे के आगे पाकिस्तान का सरेंडर। हिंदुस्तान ने लिखा, कोविड के बाद 3 साल में 6 करोड़ मधुमेह रोगी बढ़ने की खबर, हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रोहिताश्य रॉय को नया महाधिवक्ता नियुक्त किया। राजीव रंजन के इस्तीफे के बाद भाजपा और झामुमो आमने सामने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से DVC कमांड क्षेत्र के जिलों में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का किया आग्रह। झारखंड के पारंपरिक उत्पाद भगाया सिल्क, कुचाई सिल्क और डोकरा शिल्प समेत 11 विशिष्ट उत्पादों को मिला GI टैग। उत्पादों को मिलेगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार। राज्य भर में आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोर किशोरियों को खिलाई जाएगी कृमि नाशक दवा। और जेएससी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल खेले गए जेपीएल टी20 मुकाबले में कोयलांचल सुपर किंग्स और छोटा नागपुर रॉयल्स ने जीत दर्ज की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी रांची का ये प्रसारण आप सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त हिमांशु शेखर के साथ। आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं नागपुरी लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार हैं इग्नेश कुमार।

लोक रंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नागपुरी लोकगीत कलाकार थे इग्नेश कुमार और साथी हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं और ये वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम रस रंजन का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म कभी खुशी कभी गम के इस बेहतरीन नगमे के साथ।

श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मोहब्बतें का ये गीत। आवाजें हैं उद्भव, मनोहर शेट्टी, ईशान, श्वेता पंडित, सोनाली भटावडेकर और प्रिथा मजुमदार की।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे थे फिल्म मोहब्बतें का गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी और संगीत किया था जतिन ललित ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म कसूर का ये गीत। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। समीर के शब्दों को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: ये फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से रस रंजन कार्यक्रम के अंतर्गत। आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं फिल्म निकाह का ये गीत, आवाज़ सलमा आगा की, शब्दकार हसन कमाल, संगीतकार रवि।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे, सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फिल्म कृष 3 का ये गीत। समीर के शब्दों को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने और आवाजें हैं अलीशा चिनाय और जुबिन गर्ग की।

इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुबह के 9:30 हो चुके हैं और ये वक्त है शास्त्रीय संगीत के आयोजन का। तो आज के इस आयोजन में आपको सुनवा रहे हैं राग नंद में ख्याल गायन। कलाकार हैं सविता राय। तबले पर संगत कर रहे हैं श्यामानंद झा। हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: शास्त्रीय संगीत के आयोजन में अभी आप सुन रहे थे सविता राय से रागनंद में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध थी। तबले पर संगत कर रहे थे श्यामानंद झा और हारमोनियम पर थी गायत्री चक्रवर्ती। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का ये आयोजन यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आओ साथ चलें।

0: प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की।
1: मैं सिंधु मिश्रा आप सबसे मुखातिब हूँ, स्वीकार करें मेरा नमस्कार। आज कार्यक्रम के आरंभ में हम आपसे चर्चा करेंगे विकास की राह पर बढ़ते गांव के विषय में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत को गांव का देश कहा जाता है, आज भी देश की एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। गांव केवल कृषि उत्पादन के केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मूल्यों के संवाहक भी हैं। किसी भी राष्ट्र का वास्तविक विकास तभी संभव है जब उसके गांव विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त हों। श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं, जिनके परिणाम स्वरूप गांवों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, डिजिटल तकनीक और आजीविका के क्षेत्र में हुए सुधारों ने ग्रामीण जीवन को नई दिशा प्रदान की है। श्रोताओं, ग्रामीण विकास का बहुत बड़ा महत्व है। इसका अर्थ केवल भौतिक सुविधाओं का विस्तार नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में और उसके स्तर में समग्र सुधार लाना है। जब गांवों में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तब ग्रामीण समाज आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनता है। इससे शहरों की ओर पलायन कम होता है और साथ ही स्थानीय स्तर पर विकास की नई संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। अब अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें, इसलिए गांवों का विकास देश की आर्थिक प्रगति का आधार माना जाता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी ग्रामीण क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रोताओं, पिछले वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हजारों गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। बेहतर सड़क संपर्क से किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिली है और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति देखी जा सकती है। अधिकांश गांवों में बिजली की उपलब्धता बढ़ी है, जिससे घरेलू जीवन के साथ साथ छोटे उद्योगों और व्यवसायों को भी बढ़ावा मिला है। सौर ऊर्जा जैसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है। श्रोताओं, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से घर घर जल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छ पेयजल से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आई है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और अब कार्यक्रम में हम बातें करेंगे कृषि की। कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों, सिंचाई सुविधाओं और कृषि यंत्रों के उपयोग ने खेती को अधिक उत्पादक बनाया है। किसान अब मौसम संबंधी जानकारी, बाजार भाव और कृषि सलाह डिजिटल माध्यमों से प्राप्त कर रहे हैं। जैविक खेती, बहुफसली खेती, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों की आय के स्रोत भी बढ़ रहे हैं। कृषि उत्पादों में प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। श्रोताओं, किसान उत्पादक संगठन और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किसानों को सामूहिक रूप से कार्य करने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनकी बाजार तक पहुंच और सौदेबाजी की क्षमता मजबूत हुई है। ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। स्वयं सहायता समूहों ने लाखों ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। छोटे छोटे बचत समूहों के माध्यम से महिलाएं आज स्वरोजगार, लघु उद्योग, हस्तशिल्प, पशुपालन और अन्य आय वर्धक गतिविधियों से जुड़ रही हैं। महिला सशक्तिकरण के कारण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। श्रोताओं, आपसे बातें करने के लिए और भी विषय हमारे पास हैं, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम विशेष रूप से आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे और वो है अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर विकास कार्य। गांव की छवि बदलने में प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उन पर आइए आपको महत्वपूर्ण जानकारी करवाते हैं। और आज इसके लिए हमारे कार्यक्रम में हैं श्री सुजीत कुमार नायक जो राहे प्रखंड के ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर हैं। आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं इस प्रखंड के विकास योजनाओं पर। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। नमस्कार
2: जी। नमस्कार मैम।
1: मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी श्रोता अभी आपको सुन रहे हैं आप उनके समक्ष अपना परिचय स्वयं दें।
2: जी जरूर मैडम। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि मैम आपके कारण आज मैं आकाशवाणी के लिए भी अपना एक आवाज दे पा रहा हूँ या इस पटल पे मैं आ पाया हूँ जहाँ पर कुछ श्रोता बाकी लोग भी मुझको आवाज सुनकर जान पाएंगे। मैं आपका आभारी हूँ। और मेरा नाम सुजीत सागर नायक हुआ। मैं वर्तमान में राहे प्रखंड अंतर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और मुझको अतिरिक्त प्रभार में सिल्ली प्रखंड भी आवंटित किया गया है। मैट का एग्जाम लिखा था अपने पिताजी के दबाव से, तो मैट क्वालिफाई करने के बाद मैं बीआईटी मेसरा से मैनेजमेंट का पढ़ाई पूरा किया और उसके बाद हमारी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी पे लगी थी एक्सपोर्टिंग डिवीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिंग हाउस, फिर वहां से फिर रिजाइन करके कुछ पारिवारिक समस्या के कारण आना पड़ा क्योंकि मैं इकलौता हूँ और मेरे बड़े भैया और छोटा भाई एक्सपायर कर चुके थे। मम्मी हार्ट की पेशेंट थी और पापा हाईकोर्ट में जॉब में थे तो बाहर ज्यादा मतलब मेरा रहना इन लोगों को खलता था। तो फिर मैं छोड़कर आया और इस विभाग में फिर मैं 2007 का जो कमिश्नरी से बहाली निकली उसमें अपीयर हुआ तो ऊपर वाले की कृपा से और आप लोगों की दुआ समझिए मैं प्रखंड में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पे बहाल हुआ और उसके बाद से मैं लगातार विभिन्न प्रखंडों में स्थानांतरित भी हुआ और अंततः अभी वर्तमान में यहाँ पर कार्यरत हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। और आपके परिचय को सुन के लग रहा है सुजीत जी कि आप बेहद संघर्षशील रहे और उसके बाद जो आपने इस पद को पाया है, आप इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं?
2: मैडम अभी तो मैं सर्वप्रथम शुक्रिया अदा करूंगा ऊपर वाले का कि मुझको ऐसे जगह पे मतलब सेवा करने का मौका मिला है जहाँ पे ग्राउंड लेवल से लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को समझने का, उनके समस्याओं को समझने का और उनको किस तरह से मैं ऊपर लेवल तक ले जा सकता हूँ, उनकी आर्थिक स्थिति को, उनके सामाजिक स्थिति को समझते हुए, तो वो समझने का मौका मिला। और भरसक मैं प्रयास करता हूँ कि ग्रामीण जनताओं का जो भी समस्या है उनको मैं सुनूं और उनको मैं अवगत कराऊं कि सरकार आपके लिए किस हद तक मतलब आपकी समस्याओं को, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयासरत है और मैं जस्ट एक माध्यम हूं उन ग्रामीण जनता और सरकार के बीच का कि सरकार के द्वारा जो प्रदत्त सेवाएं हैं उनको मैं निशुल्क अपने ग्रामीण जनताओं तक पहुंचा सकूं, उनको लाभ दे सकूं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार सकूं जिससे कि हमारा एक गांव, हमारा एक पंचायत, हमारा प्रखंड से होता हुआ हमारा राज्य और हमारा देश विकासशील से विकसित की ओर पहुंच सके।
1: बहुत बड़ी बात आपने कही। और सुजीत जी जहां तक प्रश्न है एक गांव का, एक प्रखंड का विकसित होने की बात है तो विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं लागू तो जरूर की गई हैं, लेकिन जो धरातल पर उतारने की बात आती है तो उसमें आप जैसे अधिकारियों के सहयोग की जरूरत होती है और साथ ही साथ जो गांव के ग्रामीण भाई बहन हैं और उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं इन लोगों के सहयोग की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो किस तरह का सहयोग आपको ऐसे ग्रामवासियों से मिलता है?
2: जी मैडम, आपका प्रश्न बिल्कुल ही जड़ तक पहुंच गया है कि जो सो जहां से शुरुआत होती है लाभ देने की और लाभ लेने की, तो ये बहुत अच्छी बात आप पूछे हैं। एक्चुअली मैम होता क्या है कि ग्रामीण जनता बहुत जगह जागरूक नहीं थे, और जो जागरूक हैं तो उनकी सामाजिक पारिवारिक आर्थिक स्थिति ऐसी रहती है कि जागरूक होने के बावजूद वो सेवा सरकार की ओर से जो लाभ मिल रही है वो लेने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे समय में हम सभी का प्राथमिक दायित्व रहता है कि हम लोग उन लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, उन लोगों को अपने परिवार के बंधन से, अपने घर के मजबूरियों से उठाकर उस पटल प्रखंड और पंचायत तक लाकर उनको जागरूक करते हुए उनको लाभ दें, ताकि उस लाभ को जानने के बाद स्वतः भी वो जागृत हो जाएंगे और अगल बगल के जो ऐसे वंचित परिवार है वो भी जागृत होंगे और उन तक भी लाभ पहुंचाया जा सकेगा। प्रथम तो होता क्या है कि आप जैसा कि जानते हैं ना, राज्यसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि ग्राम सभा तक प्रत्येक व्यक्ति पहुंचे, क्योंकि कोई भी बात अगर ग्राम सभा से होकर हमारे तक नहीं आती है तो हम लोग उसको मतलब किसी योजना के लाभ में या किसी बात के लिए उस ग्राम सभा के बिना अनुशंसा के कुछ भी करने से हम लोग मतलब अपना एक दायरा सीमित हो जाता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि ग्राम सभा का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो और ग्राम सभा में ग्रामीण जनता, माँ बहन, भाई बहन जो भी हैं वो पहुंचे और पहुंचकर अपनी बातों को रखें, और जो वंचित परिवार हैं वो अगर ऊपर तक नहीं दौड़ पाते हैं, अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, तो अपने गांव में तो बात को रख पाएंगे। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि वो वंचित परिवार किसी भी समय अपना समय निकाल के ग्राम सभा तक पहुंचे, जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो लाभ के लिए अपना नाम को दर्ज कराएं ग्राम सभा की पंजिका में, और ताकि वो ग्राम सभा की पंजिका फिर ग्राम प्रधान मुखिया से होते हुए प्रखंड तक आए और संबंधित विभाग से उस व्यक्ति को लाभ से आच्छादित किया जा सके। तो हम लोगों का बिल्कुल यही प्रयास रहता है कि ग्राम सभा तक सभी लोग पहुंचे।
3: एक बात और देखी जाती है, जहां तक विशेषाधिकार की बात है, यानी जिस पंचायत, जिस प्रखंड की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, उन जगह पर आज की स्थिति में, आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो योजनाएं अभी कार्यान्वित की जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि कहां तक ये सफलतापूर्वक धरातल पर उतर पाया है?
2: जी बिल्कुल मैडम, शुरुआत में तो कहा जाएगा कि जो सो मनरेगा 2005-06 से शुरुआत जो हुई थी, उसके बाद आप देखेंगे कि आज ग्रामीण परिवेश का रीढ़ बनकर रह गया है। जैसे एक एक मैं ज्वलंत उदाहरण दूंगा, 2020-21 में जब कोरोना से पीड़ित थे लोग, बहुतों का प्राइवेट नौकरी छूट गया, बहुत मजदूर और ये नीचे स्तर के जो लोग थे जो किसी

0: ईट भट्टे में या फिर कहीं और जो काम करते थे या फिर प्राइवेट जॉब में जो भी अच्छी कंपनी में थे, उन लोगों को भी जो सो मजबूरीवश या किसी कारणवश जो सो वहाँ सुविधा नहीं प्राप्त होने लगी, तो उस महामारी के समय भी लोग अपने गांव, अपने जिला, अपने घर तक पहुँचे, और जब वहाँ पे पहुँचे तो उनके पास खाने के लिए जब प्रॉब्लम आया तो उस समय भी मनरेगा वैसी स्थिति में भी सरकारी योजनाएं खड़ी रहीं वहां पे,
1: बिल्कुल
0: उन लोगों को मतलब स्वागत के लिए, उन लोगों को लाभ देने के लिए, ताकि वो बेसहारा बेघर ना हो। उस
1: बिल्कुल
0: स्थिति में भी जब हुआ तो समझ सकते हैं कि विकट से विकट परिस्थिति हो या फिर जब सामान्य जनजीवन हो, दोनों स्थिति में सरकार की योजनाएं ग्रामीण जनता को हमेशा सहारा देने की काम कर रही है। वर्तमान में मैं बताना चाहूंगा कि कुछ वर्गीकृत किया गया है योजनाओं को, जैसे नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो हो खेल योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना। इन वर्गीकृत रूप से योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर किया जाता है। जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत आप देख रहे होंगे हर एक क्षेत्र में, गांव में, टोला में बड़ा बड़ा पैच को चुना जा रहा है या फिर ऐसे जगह को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर कि पहले खेती नहीं हुआ करता था, पथरीली जमीन थी, वैसे जगह पे कुछ साइंटिफिक तरीके से आम के पौधा, मिश्रित फलदार पौधा, लीची, पपीता, अमरूद, ऐसे ऐसे फल वगैरह का जो खेती किया जा रहा है वहां पे, तो आज वहां पे स्थिति देखिए जो कभी बंजर भूमि हुआ करती थी, आज वहां पे फल और पौधे वृक्ष लहलहा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो तरफा काम कर रहा है।
1: सही बात
0: पहला
1: है।
0: तो जो व्यक्ति वो वंचित जो था भूमि, वहां पे कुछ फल उग रहे हैं, उस फल से ग्रामीण जनता को लाभ हो रही है, उनका इनकम बढ़ रहा है। दूसरी बात, जमीन का जो कटाव हो रहा था वो कटाव भी रुक रहा है, सॉइल कंजर्वेशन का बहुत बड़ा इसमें लाभ हो रहा है। फिर एक चीज है कि जो मौसम में बहुत सारा बदलाव आप देख रहे होंगे, कुछ कुछ वर्षों तक हम लोग देख रहे थे कि बचपन में देखते थे कि एक ही मौसम में जाड़ा गर्मी बरसात तीनों दिखाई पड़ता था, लेकिन
1: बिल्कुल
0: कई वर्षों तक जो वो दिखने के लिए हम लोग लालायित थे, जो नहीं दिख पा रहा था। अक्सर होता क्या था कि अगर 19 जून से 15 जून से मानसून आ रहा है हमारे यहाँ, हमेशा से जो परंपरा था आने का, तो वो दिखाई पड़ता था कि जुलाई में फिर आती थी मानसून, और उसके बाद जो ये क्या था, ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों था, बस यही वृक्ष का कटाव से, डिफोरेस्टेशन जो बोलते हैं उसके कारण। लेकिन सरकार की एक योजना जो चली, बिरसा हरित ग्राम योजना, इसके इसके आधार पर जो सो बहुत तायत संख्या में पौधा रोपण किया गया, और वो भी फलदार पौधों का रोपण किएगा, जिसको 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, तो कहीं जो सो 5-7 लाभों को मिला के 5-7 एकड़ में एक साथ किया गया। आज देखिए कि बाहर से जो आम का हम लोग इंतजार करते थे, आज आम्रपाली से लेके लंगड़ा आम, दशहरी आम, चौसा आम, ये सब हमारे लोकल एरिया में मिल रहे हैं। आप खूंटी में इसका शुरुआत किया गया था, जाकर देखिएगा अभी तो हमारी दीदी लोग उसमें जुड़ी हुई हैं बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत। उसी तरह रांची के बहुत सारे रूरल एरिया हैं जिसमें भी दीदी और बागवानी मित्र सभी जुड़े हुए हैं, और हम सभी मिलकर जो साथ उनको दे रहे हैं, समय समय पर पौधा देना, उन पे कीटनाशक देना, उर्वरक उर्वरक देना, ये सब जो काम हम लोग कर रहे हैं फ्री ऑफ कोर्स सरकार की तरफ से, तो सबको एक उत्साहित तरीके से लोग काम कर रहे हैं लोग। उसमें क्या है कि अभी कुछ दिन बाद हम लोग एक आम उत्सव करने वाले हैं, जैसे प्रत्येक प्रखंड में, उसमें क्या होगा कि अभी तक जितने फल का उत्पादन हुआ है, मतलब लगे हुए हैं फल वृक्षों में आम के, तो उसके लिए हम लोग एक वेंडर का सिलेक्शन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार करके बुला रहे हैं उनको, और गांव से उस बागान से डायरेक्ट वो उठाव करके अपना जो डीलर को देंगे या फिर रिटेलर को देंगे, वो वहां से करेंगे। तो किसान को इसमें क्या चीज फायदा हो रहा है कि उनको 3 महीने का तो रोजगार मिल ही जा रहा है अपने ही बागवानी में, प्लस उनको जो सो क्या है कि ये जो फल वो खरीद के कभी खाते थे या तो खरीद के खाने के भी जिनके पास पैसा का अभाव हुआ करता था, वो आज बाकी लोगों को भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, है ना, और उसमें उनका इनकम भी हो रहा है। इससे क्या है कि एक पोषक तत्व की भी प्राप्ति हो रही है उनको, विटामिन को भी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जो फल उत्पादन कर रहे हैं वहां पे मिश्रित खेती भी कर रहे हैं लोग। मिश्रित खेती मतलब 15 फीट की दूरी में एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी जो है 15 फीट की दूरी है, वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। तो उसके बीच में जो जगह बच रहा है उसमें करेला कर रहे हैं लोग, भिंडी कर रहे हैं लोग, राहर कर रहे हैं, फिर आपका ये कभी कभी छोटा छोटा शकरकंद वगैरह जब भी कर रहे हैं,
1: हाँ हाँ
0: जिससे कि पेड़ से ऊपर ना जाए और पेड़ में भी लता ना जाए और जमीन के नीचे ही वो सब रहे,
1: हाँ
0: और उससे
1: हाँ
0: इन लोगों को साग सब्जी का भी उत्पादन हो रहा है।
1: यानी सुजीत जी, कुल मिला के अगर कहा जाए
0: जी
1: कि हरित ग्राम योजना
0: जी
1: हमारे ग्रामीण भाई बहनों के लिए बेहद लाभकारी योजना है,
0: बेहद लाभकारी।
1: और देखा जाए तो ये स्वास्थ्य से समृद्धि की ओर ये ले
0: जी,
1: जा रहा है।
0: और वायुमंडल को भी सुधार रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही
0: जी
1: बात है। एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में जब विजिट करने जाते हैं, तो
0: जी
1: वहाँ के युवाओं की क्या स्थिति है? युवा किस प्रकार रोजगार से जुड़े हुए हैं, या फिर
0: जी
1: अगर बेरोजगारी है तो फिर अन्यत्र भटकने के लिए भी युवाओं में देखा जाता है कि शहरी चकाचौंध के कारण वो अन्यत्र भी भटक जाते हैं। तो
0: जी
1: ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे, और अपने पंचायत में युवाओं की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी बताएं।
0: जी मैडम, एक बेहद ही मतलब किसी भी अच्छाई और बुराई के, अगर अच्छाई बोलेंगे तो उसका भी दो पहलू होता है, बुराई कहेंगे उसका भी दो पहलू होता है। लेकिन
1: बिल्कुल
0: अभी अभी जो वर्तमान परिवेश में मैं कहना चाहूंगा कि कुछ युवा ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम मेट्रोज में काम कर रहे हैं,
1: हाँ
0: उनको
1: हाँ
0: लगता है कि मेट्रो में जाएंगे कुछ एक दो के चक्कर में पड़ के बाकी लोगों को भी वो मोटिवेट करके, जैसे खेती बाड़ी से वो निपट गए और कार्य से निपट गए, तो वो क्या करते हैं शौकिया तौर पे भी ईंट भट्टे में या किसी कंपनी में, फैब्रिक कंपनी हुआ या कुछ और भी कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनी हुआ, वो साउथ की ओर जाते हैं पूरा समूह में बना के लड़के लड़कियां,
1: बिल्कुल
0: ठीक है। तो वो लोग एक आउटिंग का मजा लेने के लिए ही जाते हैं, समझिए। अन्यथा आजकल गांव में तो सालों भर के लिए लोगों को काम मिल रहा है, और सबसे बड़ी एक विडंबना बोलिए या क्या बोलिए, अब तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें, कि सरकार हर तबके के लोगों को हर तरह की फैसिलिटी सालों भर दे रही है। जैसे आप देखिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो है, उसमें 5 लाख तक की जो है सो लोगों को ये कोई भी बीमारी होने से सरकार निःशुल्क मुफ्त इलाज हो रहा है सरकार की ओर से। फिर जो है सो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, फिर जो है सो राशन जो सबको मिल रहा है। तो ये और ऊपर से जो है तो कि शिक्षा नीति जो है, जिसमें अगर कोई बच्चा एक ड्रॉप आउट हुआ तो बीडीओ सर से लेके पूरे जिला के महकमे तक हल्ला हो जाता है कि जो तो बच्चा मैट्रिक पास करने के बाद ड्रॉप आउट क्यों किया, क्यों आगे पढ़ाई नहीं कर रहा है,
1: बिल्कुल
0: तो उसके पीछे सभी लोग, पूरी कायनात पड़ जाती है सरकारी तंत्र, कि
1: सही
0: बच्चा
1: कहा।
0: तुम जाके एडमिशन लो, तुमको स्टाइपेंड देंगे, तुमको ये देंगे, तुमको साइकिल देंगे, चलो पढ़ाई करो। तो ऐसा स्थिति में भी अगर युवा या युवती जो तो विमुख होंगे तो ये तो दुर्भाग्य कहा जाएगा, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: सरकार हर तरह की सुविधा दे रही है। बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि सरकार राशन पानी सब चीज घर बैठे मिल रहा है, किसी युवक की माँ को जो है वृद्धा पेंशन मिल रहा है, तो किसी को विधवा पेंशन मिल रहा है, उसको राशन तो हर महीने मिल ही रही है ना। फिर स्वास्थ्य के लिए आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए 5 लाख का बीमा योजना है, सरकार ही दे रही है। तो इन लोगों में कहीं ना कहीं एक विमुखता आ रहा है काम के प्रति। वो लोग क्या करते हैं, ग्रुप में जो सो बैठ जाते हैं कहीं पे और जुआ खेलने लगते हैं। लेकिन गांव की महिला है सो बच्चों के भविष्य के लिए, अपना परिवार के भविष्य के लिए वो सालों भर काम करती है।
1: आप, हम और सभी जानते हैं कि
0: जी
1: हमारा झारखंड राज्य जो है वो एक
0: जी
1: नक्सल प्रभावित राज्य
0: जी
1: भी
0: जी,
1: माना जाता है, और
0: जी.
1: इसमें देखा जाता है कि हमारी युवक और युवतियां या किशोर जो महिला और पुरुष वर्ग हैं, वो या तो कहा जाए कि जागरूकता की कमी होने के कारण, अशिक्षा की वजह से, या फिर गरीबी की वजह से, और युवाओं में रोजगार की कमी होने की वजह से वो इन संगठनों में जाकर शामिल हो जाते हैं और गांव से, परिवार से दूर चले जाते हैं। तो
0: जी
1: ऐसे लोगों को आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो मुख्यधारा से जुड़कर रहें, गांव में रहें और विकास योजनाओं को सफल बनाने में अपना योगदान करें?
0: जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है, और ये प्रश्न का जवाब भी पता नहीं मैं कितना सटीक दे पाऊंगा, वो तो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन फिर भी जो गांव से जुड़े होने के कारण मैं जान रहा हूँ कि बहुत बार पहले पहले जो हुआ करता था नक्सली में जो शामिल होते थे वो एक्चुअली होते थे कि किसी के सताए हुए, किसी के दबाए हुए होते थे, तो वो अपना पनाह ढूंढने के चक्कर में उनसे पहुंच जाते थे।
1: बिल्कुल
0: लेकिन आजकल स्थिति बदल चुकी है, आजकल इसलिए बदल चुकी है कि अगर किसी पीड़ित व्यक्ति को सही समय पे इलाज नहीं मिला तो पूरा जिला के प्रशासनिक तंत्र हिल जाता है कि नहीं उसको जो सो बीमार है और उसको सुविधा क्यों नहीं मिला। तो इसलिए सारे लोग जागरूक कर जानते हैं कि जो तो वो सही जगह पे किसी सरकारी अस्पताल में पहुंचेंगे या फिर डीसी सर के नॉलेज में आ जाएगा कि उनका कोई देखभाल नहीं किया, तो जानते हैं कितने सरकारी लोगों का नौकरी चला जाएगा या सस्पेंड हो जाएंगे। तो सारे लोग जगे हुए हैं, बस जागने की जरूरत है हमारे युवाओं को जो गांव में के परिवेश में है, उनको हर तरह की सुविधा दी जा रही है सरकार की ओर से, पूरे प्रशासन की ओर से। इसीलिए मैं उन लोगों को कहूंगा कि पढ़ाई के लिए भी जब सरकार तत्पर है आपको पढ़ाने के लिए, उन लोगों को सबको पूरी कायनात है उनके साथ, तो उनको हमेशा समाज के मुख्य धारा में रहना चाहिए, हमेशा कानून के साथ रहना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो आजकल इतना सारा तंत्र मतलब जागरूक है कि उसके साथ गलत होने नहीं देना चाहता है। जैसे विधिक सेवा से आपसे झालसा डालसा है, फिर आप देखिए कि जो सो पीएलवी प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक पंचायत में पीएलवी है, पारा लीगल वॉलंटियर्स, मतलब कहाँ पे किसके साथ अन्याय हो रहा है उसको देखने के लिए कानून की भी आंख चारों तरफ है, प्रशासन की आंख है। आप देखिए कहीं पर भी किसी के साथ कुछ दिक्कत हुआ सामाजिक कार्यकर्ता है, फिर जो तो महिला समिति की दीदी लोग जागरूक हैं, फिर आजकल तो एक छोटा सा भी शिकायत प्रखंड से जिला तक ना जाए सोच के वीडियो सीओ से लेके पूरे प्रशासनिक तंत्र हमेशा चौकाना रहते हैं। तो मैं कहीं भी नहीं सोच सकता हूँ कि कहीं से कोई कमी हो रही है, बस युवाओं को खुद को जागने की जरूरत है और कहीं पे कोई दिक्कत है तो किसी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े। हमेशा प्रखंड और पंचायत कार्यालय हमेशा खुला रहता है, अपनी समस्याओं को आकर वहां पे रखें, निश्चित ही उनको सही दिशा दिखाया जाएगा, निश्चित ही उनको लाभ पहुंचाया जाएगा, कोई लाभ से वंचित नहीं रहेंगे। जो लाभ से वंचित रहेंगे तो हम लोगों की नाकामी होगी अगर हम तक पहुंच रहे और नहीं दे पाए तो, और हम लोग कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करते हैं पूरे तंत्र की जो तो किसी को हम लोग किसी तरह से वंचित रख पाए।
1: बिल्कुल सही बात है। और मेरी जहां तक समझ है कि अगर हमारी सरकार आपके द्वार तक अगर पहुंच रही है और आपको विभिन्न योजनाओं के तहत आपको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, तो हमारी जागरूकता भी अपेक्षित है और सरकार ये भी चाहेगी कि हम इसमें उनका पूरा पूरा सहयोग करें।
0: जी बिल्कुल। अभी सरकार सरकार आपके द्वार जो बोले मैडम, उस विषय पर भी मैं कहना चाहूंगा
1: बिल्कुल हाँ।
0: कि अभी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी सरकार चलाई, जिसमें क्या होता था प्रत्येक पंचायत में सरकार की पूरी टीम पूरे अपने मशीनरी के साथ पहुंचती थी और वो तिथि पहले से घोषित हुआ करता था डीसी स्तर से, डीसी सर के स्तर से, और वो फिर प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को प्रखंड से जो सो सूचना दी जाती थी, पत्र दिया जाता था इतने तारीख को आपके पंचायत में जनता दरबार लगेगा। ग्रामीण परिवेश के लोग उसको जनता दरबार कहते हैं, लेकिन उसका नाम था आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। मतलब जो वंचित परिवार हैं किसी भी योजना का लाभ लेने से, तो उनके लिए हम लोग पूरे उनके पंचायत तक पहुंचते थे और वो भी एक महीना पहले से प्रचार प्रसार करने के बाद, ताकि जो वंचित है वो अपने प्रखंड तक नहीं आ पाते हैं तो पंचायत भवन में आएंगे और वहां पे हैंड टू हैंड जो समस्या उसको लिखाएंगे, इनरोल कराएंगे और वहीं पे त्वरित उनका निष्पादन होता है, त्वरित, और उसका ऑनलाइन एंट्री भी होता है। ऑनलाइन एंट्री को हमारे माननीय मुख्यमंत्री राज्य स्तर पे देखते हैं, उनके विभाग के सचिव देखते हैं, फिर जिला स्तर पे हमारे डीसी सर देखते हैं, मतलब हर विभाग का अपना दायित्व बटा हुआ है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार में भी बहुत लोग आके लाभान्वित हुए हैं।
1: बहुत बड़ी बात है। और सुजीत जी, मैं समझती हूँ कि जितने भी श्रोता अभी कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, आपने जितनी भी बातें आज कार्यक्रम में रखी, जितनी भी योजनाओं के बारे में बताया, विशेषकर मैं बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में जो आपने बताया, काफी विस्तार से उसकी जानकारी दी, बेहद लाभकारी योजना है और हर प्रखंड में एक ऐसा कार्यालय बना हुआ है जहाँ लोग इससे संबंधित जानकारी स्वयं जाकर ले सकते हैं। तो
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं को आपकी बातों से लाभ जरूर पहुंचेगा। सुजीत
0: जी,
1: जी, आज
0: बिल्कुल
1: कार्यक्रम में आप शामिल हुए, अपने विचारों से हमें अवगत कराया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी, धन्यवाद। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ मैडम।
2: श्रोताओं, बेहद महत्वपूर्ण बातचीत थी और इस बातचीत के माध्यम से हमने जानकारी हासिल किया कि प्रखंड स्तर पर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ किस तरह ग्रामवासियों तक पहुंच रहा है। श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आओ साथ चलें। इस कार्यक्रम का हमेशा यही उद्देश्य होता है कि महत्वपूर्ण और विभिन्न जानकारियों के साथ हम आपको अवगत कराएं और इन जानकारियों को हासिल कर आप तक लाभ पहुंच सके। श्रोता मित्रों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को आज दें विदा। नमस्कार।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आओ साथ चलें, ये कार्यक्रम अभी हम सुन रहे थे। भेंट करता थे सिंधु मिश्रा। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की, प्रस्तुति स्वर सिंधु मिश्रा का। और अब इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

0: आकाशवाणी रांची से आइए सुने जोहार रांची का एक नया अंक। आज इस नए अंक के साथ मैं ऋतुश्री
1: जोहार
0: साथियों, नमस्कार, मंच आपको भी और जोहार।

0: और हिमांशु, अब आज के कार्यक्रम में हम एक सुविचार बताएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मन हमारा मित्र बन सके इसके लिए जरूरत है इसे समझने की। मन का स्वभाव है बहुत सोचना विचारना। हम पूरे दिन इंद्रियों के माध्यम से जो भी ग्रहण करते हैं वो हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने हिमांशु, मनुष्य का मन शांत करना बहुत ही कठिन है क्योंकि एक के बाद एक मन में विषय का चिंतन चलता ही रहता है और विचारों की बाढ़ सी आती रहती है।
1: बिल्कुल,
0: इन विषय रूपी लहरों के उठते ही मनुष्य क्या करने की सोचता है, उसे लगता है कि शायद थोड़ा घुमाएंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसा सोच वह एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है लेकिन जब लौटता है तब भी मन असंतुष्ट और परेशान ही रहता है। ऐसा क्यों?
1: क्योंकि मन यदि अपने आप में अपने आप से खुश नहीं है तो आप भले ही कहीं भी चले जाओ वह खुश नहीं हो पाएगा। हमें लगता है सुख कहीं बाहर है, हम यह वस्तु प्राप्त कर लेंगे तो बहुत आनंद मिलेगा, हम इस जगह चले जाएंगे तो मन खुश होगा। पर मन दो पल के लिए खुश होता है फिर वापस उन्हीं विचारों में खो जाता है जिनसे दूर भाग रहा था। यदि आपका मन शांत है तो आप जहां हैं वहीं संतुष्टि है।
0: बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही।
1: और इसी बात के साथ एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं राहत वाली खबर की।
2: बिल्कुल, मैं समझ गई आप बातें करेंगे मानसून ने जो रफ्तार पकड़ी है उसके बारे में।
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा है। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में सर्वाधिक बारिश 46.4 मिलीमीटर तिलैया डीवीसी में दर्ज की गई। इसके अलावा चंदवा में 45.2 मिलीमीटर तथा कांकेर रांची में 42.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन में मानसून झारखंड के शेष हिस्सों में भी फैल जाएगा
2: और इससे जो बेतरह गर्मी पड़ रही थी उसे हमें बहुत राहत मिली है। और ये भी बता दें कि अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही बारिश जारी रहेगी। राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार समुद्र तल पर मौसमी टर्फ पश्चिमी राजस्थान से गंगेटिक पश्चिम बंगाल तक झारखंड होते हुए गुजर रही है, जिससे एक सिस्टम सक्रिय बना हुआ है। इसका असर अगले कुछ दिनों तक झारखंड में देख सकता है और कुल मिलाकर मौसम जो है वो सुहावना रहेगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की गर्मी पड़ रही थी इससे सभी ने राहत भरी सांस ली।
2: बिल्कुल।

0: और नेस्टोरी बने सबसे युवा गोल स्कोरर भी। और ये भी बता दें कि ब्राजील ने मोरक्को को ड्रॉ पर रोक कर अपराजय का रिकॉर्ड कायम रखा। साथ ही 36 वर्ष बाद स्कॉटलैंड जीता और मनाया वापसी का जश्न।
1: और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि T20 विश्व कप जो महिला का चल रहा है उसमें भारतीय स्पिनरों का जादू चला। पाकिस्तान टीम की बल्लेबाजी मात्र 106 रन पर सिमट गई। भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत दर्ज हुई। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के अर्धशतक के बाद अनुभवी दीप्ति शर्मा के 5 विकेट से भारत ने ICC T20 महिला विश्व कप के ग्रुप एक मैच में पाकिस्तान को 64 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की।
0: और भारत की T20 विश्व कप में पाकिस्तान पर ये सबसे बड़ी जीत है। भारत के 171 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम ऑफ स्पिनर दीप्ति 10 रन पर 5 विकेट लेकर करियर के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के सामने 17 ओवर में 106 रन पर सिमट गईं।

0: और हिमांशु, हर लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और मंजिलों को पाते रहें।
1: जैसा कि आज हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि हाँ, आज का ये कार्यक्रम मात्र आधे घंटे के लिए ही था हमारे श्रोताओं के लिए।
0: हाँ, तो अब हम अपने श्रोताओं से लेते हैं विदा और कहते हैं
1: जोहार, नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। सरकार के 12 वर्ष बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक से प्रभु शरण की गई बातचीत अब हम सुनेंगे। प्रभु शरण बातचीत कर रहे हैं विनोद कुमार से।
1: श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची के निदेशक श्री विनोद कुमार। एयरपोर्ट प्रबंधन और विमानन क्षेत्र के व्यापक अनुभव के साथ आप हवाई अड्डे के सुरक्षित एवं सुचारू संचालन का नेतृत्व कर रहे हैं। आपका आकाशवाणी रांची में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दें और ये बताएं कि विमानन क्षेत्र से आप कब जुड़े, कैसे जुड़े।
2: जी, मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लगभग 25 से 26 साल पहले मैंने इसको ज्वाइन किया था। और मैं पहली बार जब एयरपोर्ट डायरेक्टर बना, मुझे पहला कार्यभार जो है वो अयोध्या एयरपोर्ट का दिया गया। वो 2025 में लगभग मैंने 9 महीने वहाँ पर अपनी सेवा दी और विमानपत्तन निदेशक के कार्य का एक अनुभव लिया। फिर मेरा एक उच्च श्रेणी में रांची एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हुआ और मैं यहाँ पर अक्टूबर 2025 में मैंने कार्यभार ग्रहण किया। यहाँ पर मैंने देखा कि ये शहर प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है, यहाँ की जलवायु बहुत ही अच्छी है और ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण शहरों की कनेक्टिविटी है और काफ़ी जो है यहाँ की के जनजीवन पे, आपके व्यापार पे और रोजगार पे काफ़ी इसका योगदान है यहाँ।
1: अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें, इसने अपने 12 वर्ष पूरे किए हैं और इन 12 वर्षों में अगर हम बात करें कि नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आया है, तो इस पर आपकी क्या राय है?
2: जी, ये 12 साल जो है एक काफ़ी बड़ा समय है, एक लंबी अवधि है और इस दौरान जो है काफ़ी परिवर्तन, बहुत से परिवर्तन इस रांची एयरपोर्ट ने देखे हैं। यहाँ पर पहले जो है रात्रि में उतरने के लिए सुविधा नहीं थी, तो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जिसको रात्रि में भी यहाँ पर हवाई जहाज उतर सकता है, इसका जो रनवे है वो इसका बढ़ाया गया ताकि यहाँ पर बड़े जहाज उतर सकें। फिर यहाँ टर्मिनल की क्षमता जो है इसको बढ़ाया गया ताकि अधिक यात्री इसमें यात्रा कर सकें। एक साथ कई विमान अगर आ जाते हैं और जाने वाले होते हैं तो यात्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जाने वाले को भी और आने वाले को भी, तो टर्मिनल की जो क्षमता है उसका जो वॉल्यूम है उसको भी बढ़ाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को हम सेवा दे सकें। तो तकनीकी रूप से और यात्रियों की सुविधा के दृष्टि से काफ़ी विस्तार हुआ है एयरपोर्ट पे इन 10 से 12 वर्षों में।
1: जी, इसके बारे में हम और भी बातचीत करेंगे, क्षेत्रवार बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि आप एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं और आकाशवाणी में आप पहली बार आए हैं और कई हमारे ऐसे श्रोता हैं जो अभी तक उन्होंने एरोप्लेन में यात्रा नहीं की, हवाई जहाज की यात्रा नहीं की है, तो अगर कोई पहली बार यात्रा करता है
2: जी,
1: तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन व्यक्तियों को थोड़ा इसके बारे में बताएं।
2: जी, एयरपोर्ट से यात्रा करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और एयरपोर्ट से जो यात्रा होती है वो बहुत ही सिक्योर और सेफ यात्रा, इसको हम इसमें ध्यान में रख करके इसका परिचालन करते हैं। तो यात्री का अपना जो उसका पहचान, उसके सही व्यक्ति यात्रा कर रहा है, उसका जो टिकट है, कोई अन्य व्यक्ति उसकी जगह

0: न चला जाए
1: जी
0: और वो अपने साथ कोई ऐसी वस्तु न ले जाए जो कि किसी के जान माल के लिए खतरा है, तो हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ एक यूनिट एजेंसी है जो कि सुरक्षा के पूरा देखभाल का जिम्मा उसका है।
1: जी
0: तो ऐसी चीज़ें कि उसका एक वैध यात्री ही वहाँ से यात्रा कर रहा है और सही सामान के साथ यात्रा कर रहा है,
1: जी जी
0: इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है उस नियमों के तहत। और इसके अतिरिक्त वो पहली बार यात्रा कर रहा है तो उसे ऐसा अनुभव नहीं लगेगा कि मुझे काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है
1: जी जी
0: वहाँ पे सेवा देने के लिए। और पूछताछ केंद्र काउंटर वगैरह हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसको कोई भी दिशा निर्देश चाहिए या कोई सहायता चाहिए तो उसे वो सहायता देकर उसकी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए सारे रास्तों से उसको परिचित करा करके और उसको बोर्डिंग गेट तक पहुंचाया जाता है।
1: जी एयरपोर्ट का महत्व तो हम लोग सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा है। झारखंड के अगर हम पर्यटन या फिर उसके व्यापार के बारे में बात करें तो उसमें एयरपोर्ट की क्या भूमिका है?
0: सर, झारखंड पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर जो अलग अलग तरीके के वाटरफॉल्स हैं, यहाँ पे आपके प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध जगह है, मंदिर हैं और यहाँ पे व्यापार जगत, यहाँ पे माइंस का काफ़ी खजाना है यहाँ पे। तो इन सब जगहों पे जाने के लिए यात्री को समय चाहिए, सबके पास इस समय आजकल समय की कमी है
1: जी
0: और कम समय में ही उसको सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो एयरपोर्ट और फ्लाइट होने से, कनेक्टिविटी होने से ये बहुत बड़ा फायदा है कि यात्री जो है वो कम समय में इन सब जगहों पे घूम करके, चाहे वो घूमने की दृष्टि से आए, पर्यटन की दृष्टि से आए, या फिर अपने व्यापार की दृष्टि से आए, या फिर ऑफिस के कार्य से आए, तो इन सब के लिए उनको सुविधा देने में इस एयरपोर्ट का और हवाई जहाज का, एरोप्लेन का बहुत बड़ा योगदान है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि उद्योग क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो हम उन बड़े बड़े उद्योग संस्थानों की भी बात करते हैं जो कि अलग अलग राज्यों में जाकर अपने जो उपक्रम है उसे उसकी स्थापना करते हैं और उससे उस राज्य का विकास होता है। तो स्वाभाविक है कि उनके पास समय की कमी होगी और वो अगर जितना उड्डयन क्षेत्र उन्नति करेगा उतना ज़्यादा हम व्यापार को आकर्षित कर सकते हैं अपने राज्य में। अब हम बात करें थोड़ा रोजगार सृजन की। एयरपोर्ट एक बहुत बड़ी संस्था है और बड़ा उपक्रम है जो कि अपने किसी भी राज्य के लिए, तो इसमें रोजगार सृजन की क्या संभावना है इस क्षेत्र के होने से?
0: मैं आपको बताना चाहता हूं कि एयरपोर्ट भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ही संचालित करता है, लेकिन अगर आप देखें तो वहाँ एयरपोर्ट पे बहुत सी एजेंसीज, बहुत सी स्टेक होल्डर्स काम करते हैं। अब जैसे आप देख लीजिए, एयरलाइंस है आपकी, सफाई कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, एयर साइड में आपके ग्राउंड हैंडलर्स हैं और लोडर्स हैं, आपका कस्टम है, इमिग्रेशन है, हमारे जो टर्मिनल के अंदर जो आपके शॉप्स हैं, दुकानें हैं, कंसेशनर्स हैं, ये सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो एक एयरपोर्ट के होने से आप देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न एजेंसियां उससे जुड़ी हुई हैं और उनमें काम करने वाले लोग, उनके लिए तभी अवसर उत्पन्न हुआ है जब वो उस एयरपोर्ट यहाँ से संचालित हो रहा है। तो ये अपने आप में ही एक रोजगार का जनक है किसी भी स्थान पर एयरपोर्ट का होना।
1: अगर हम खास रांची की बात करें, बिरसा
0: जी
1: मुंडा
0: जी
1: एयरपोर्ट की
0: जी हाँ
1: अगर हम बात करें, तो इसकी अगर विकास यात्रा की बात करें, पहले बहुत कम एरोप्लेन्स यहाँ से फ्लाइट मतलब लेते थे, यहाँ पर उतरती थी हवाई जहाज। आज की स्थिति क्या है इसकी, अगर विकास यात्रा को करें बात करें तो आज की स्थिति क्या है?
0: जी हाँ, ये आप बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा क्योंकि यही एक मानक है जानने का कि कितनी वृद्धि हुई, क्या प्रभाव पड़ा इसमें। 10-12 सालों में अगर हम देखें तो उड़ानों की संख्या, फ्लाइट की संख्या लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। 2.5 गुना से ज़्यादा विमान संचालित हो रहे हैं आज की तारीख में और 350% के आसपास यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है और यात्रियों की संख्या में वृद्धि दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और हमारा जो एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है उसकी भी एक क्षमता जो है वो है, तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो अभी हम वर्तमान में जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को देखते हुए उसको और विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं और यदि कुछ और हमें भूमि अगर मिलती है तो फिर हम उसको और विकसित और बेहतर बना सकते हैं, जिसका कि प्रयास चल रहा है।
1: रांची से अगर हम आपसे पूछें कि कनेक्टिविटी है अलग अलग शहरों की, अलग अलग राज्यों की, तो क्या अगर कोई नई सेवा शुरू होती है तो क्या पर्याप्त संख्या में पैसेंजर्स मिल जाते हैं कि उस इकोनॉमिकली वायबल होता है वो?
0: जी हाँ, इसके पीछे एक स्टडी होती है। कोई भी एयरलाइंस शुरू करते हैं तो एक उनका नेटवर्क और मैनेजमेंट प्लानिंग होता है एयरलाइंस का, जो उसको अध्ययन करके कि इस रूट पे, इस सेक्टर में हम अगर एयरलाइन शुरू कर रहे हैं तो वो हमारे लिए वायबल होगा, तो वो एयरलाइन शुरू करते हैं और सामान्यतः वो एयरलाइंस सस्टेन करती है, तो इसका अध्ययन करके वो नई उड़ान, नए सेक्टर को चलाते हैं।
1: अभी अगर हम यात्रियों के सुविधाओं की बात करें तो क्या क्या नई सुविधाएं या जो पहले से भी हैं जो हमारे यात्री हैं उनको जानना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताएं। और इसमें एक और अनुलग्नक प्रश्न मैं कर लूं कि कई बार ये भी लोगों का मानना होता है कि अगर आप विमान से यात्रा कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, तो हर चीज जो भी वहां कुछ मिलती है, खाने पीने की चीजें अगर, तो वो बड़ी महंगी होती है, तो क्या इस दिशा में भी कुछ कार्य किया जा रहा है?
0: जी हाँ, अभी मैं आपको बता दूं कि जो एयरपोर्ट का जो संचालन होता है वो यात्री हमारा केंद्र बिंदु है और यात्री की सुविधा को ध्यान में रख के ही सारा कार्य होता है। तो यात्रियों के लिए वहाँ आप चाहे पीने के पानी आप से लेकर के टॉयलेट की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, जो माताएं हैं, जो उनके छोटे शिशु हैं तो फीडिंग रूम है, और मेडिकल से रिलेटेड कोई अगर ऐसी आवश्यकता है उसके लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था हुआ, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि अगर आप कहीं किसी मॉल में अगर आप घूमने जाते हैं तो आपको हर चीज़ वहाँ पे मिलता है, भिन्न भिन्न तरीके की चीज़ें, इसी तरीके से मूलभूत सुविधाएँ वो एयरपोर्ट पर रहती हैं। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे प्रश्न पे कि क्या उसमें कुछ अलग आपने किया कि जो वस्तुएँ हैं वो महंगी हैं, तो इस दिशा में एक पहल की गई है उड़ान यात्री सेवा। उसमें आप देखेंगे तो उसमें एक बहुत ही अफोर्डेबल और रियायत मूल्य पे जो है वो वस्तुएं, खाने पीने की जो है वो दी जाती हैं। उसमें आपका 10 रुपए की जो है वो चाय है, 15 रुपए का समोसा है, और कुछ जो मिठाइयां हैं जिसका कोई भी मूल्य जो है वो 20 रुपए के ऊपर नहीं है। तो ये एक आम आदमी जो कि अपने एक कम बजट में अगर कुछ खाना पीना चाहता है तो वो उसका लाभ ले सकता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ के जो आपके स्थानीय जो कलाकार और या आप कह सकते हैं कि जो उनके लोकल आर्ट्स, उसके जो लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उस वहाँ पर एक दुकान कह लीजिए, अवसर जिसका नाम है, वहाँ पे वो अपने चीज़ों को बेच सकते हैं और बहुत ही उनको कम दाम पे, उनके किराए पे उनको ये सुविधा हम उपलब्ध कराते हैं उनको।
1: तो ये एक अवसर और उड़ान, दो चीज़ों के बारे में आपने बताया, और मैं समझता हूँ कि जो आम यात्री हैं या जो उस स्टेट के, उस पर्टिकुलर राज्य के जो यात्री हैं, कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा अवसर इस अवसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त होगा, क्योंकि कोई भी बाहर से आता है तो एयरपोर्ट ही वो पहला पॉइंट होता है जहां वो किसी राज्य में एंटर करता है, वहीं पर वो पदार्पण करता है, और वहां पर अगर कुछ खासियतें दिख जाए कि भाई ये इम्पोर्टेंट जगह है, ये रांची की खासियत है या किसी राज्य की खासियत है, तो इससे बड़ा हेल्प होगा। और उड़ान यात्री कैफे के बारे में जो आपने बताया वो तो खैर बहुत ही उपयोगी मुझे लगा, क्योंकि ये एक आम धारणा तो है ही कि एयरपोर्ट पर वही लोग जाते हैं जो थोड़ा एलिट क्लास के होते हैं, लेकिन ये सामान्य लोगों के लिए भी एयरपोर्ट है, ऐसा आपने बताया। अब थोड़ी बात कर ले हम रांची के, मतलब जो बिरसा मुंडा है उसकी विकास योजनाओं की, जैसा कि आपने बताया कि क्षेत्र में मतलब विस्तार हो रहा है, अभी जो उड़ान आपने बताया क्या वो रांची में भी लागू है और क्या देश के सभी एयरपोर्ट्स पर ये सुविधा प्राप्त हो गई है?
0: उड़ान यात्री कैफे बहुत से हवाई अड्डों पे जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है
1: रांची
0: और,
1: में?
0: जी हाँ, रांची में तो अभी जल्दी अभी इसकी हुई है, लेकिन और भी एयरपोर्ट्स को जो है इस योजना को जो है और एयरपोर्ट्स पे भी लागू किया जा रहा है।
1: अंत में एक अंतिम प्रश्न मेरा कि झारखंड के लिए या फिर हमारे देशवासियों के नागरिकों तथा रांची एयरपोर्ट के नागरिकों के लिए या यात्रियों के लिए आपका कोई संदेश है जो आप देना चाहेंगे?
0: जी, बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अपने एयरपोर्ट के माध्यम से रांची की जनता की सेवा में सदैव तत्पर हैं और हम यही चाहते हैं कि यहाँ का जो व्यापार जगत है, यहाँ का जो रोजगार है और यहाँ का जो पर्यटन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हम अपना योगदान इसमें देते रहें और इस एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ के क्षेत्रीय विकास में हम अपना योगदान देते रहें।
1: मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि 15 जून को यात्री सुविधा दिवस मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को जानकारी दे दें।
0: जी, 15 जून

0: को हम सभी एयरपोर्ट पे यात्री सुविधा दिवस मना रहे हैं और इसमें हम भिन्न भिन्न तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं ताकि हम उस दिन को अपने यात्रियों के साथ एक उत्सव के रूप में मना सकें। अब मैं कुछ चीजें आपसे साझा करना चाहता हूं।
1: बिल्कुल।
0: जैसे हम यात्रियों का एक अतिथि के रूप में उनका स्वागत करना, हमारे लोक नृत्य और ये हैं उनके आवभगत के लिए उसका आयोजन करना ताकि उन्हें एक लगे कि यहाँ की संस्कृति क्या है और क्या चीजें यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। आप हमारे एयरपोर्ट पे ही जो है वो एक रांची की या झारखंड की संस्कृति का आप अवलोकन कर सकते हैं। इस तरीके से हमने एयरपोर्ट को उस दिन हम सजाएंगे। इसके अतिरिक्त हम कुछ उनके लिए जैसे आपका ब्लड डोनेशन या फिर उनके लिए हेल्थ चेकअप या फिर आंखों की जांच, इस तरीके की चीजें हमने रखी है ताकि हमारे और भी लोग जो है हमारे स्टेक होल्डर्स वो लोग उसका लाभ ले सकें। कुछ हमने स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखा है, कुछ कल्चरल का प्रोग्राम रखा है, वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा है। तो ये पूरा दिन भर जो है वो हमने अपने कार्यक्रमों से पूरा उसको एक तरीके से समा दिया है कि वो पूरा दिन एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा और उस यात्रियों के लिए, और वो यात्री उस दिन को एक विशेष दिन के रूप में याद करेंगे।
2: बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार से प्रभु शरण की गई बातचीत अभी हम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

और आइए अब सुनते हैं शंकर महादेवन, शान और केके की आवाज में फिल्म दिल चाहता है का ये गाना। जावेद अख्तर के बोल हैं और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत संपन्न हुआ। आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में हम सुनेंगे बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: अरे अरे ए ए ए

फिल्म सीता और गीता का ये गाना अभी हम सुन रहे थे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में आप सबों की फरमाइश पर बाबा वैजनाथ धाम से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, रोशनी केशरी और ललन केशरी, गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, और आप सब हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। और अब हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, ततरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी विपरिया से दुर्गाराम साहू, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर विरक, जातेक विरक और मिका विरक। आप सबों ने सुना चाहा है फिल्म अभिमान का ये गाना लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज़ में।

इंदिरा विहार रायगढ़ से अक्रम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां, वलीउल्ला नूरजहां, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी। आप सबों ने सुना चाहा है फिल्म चिपके चिपके का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में।

आपकी पसंद फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनिए आप सबों की फरमाइश। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्दीम और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी। नया बाजार बक्सर से राजेश केशरी, गौरी शंकर केशरी, शंभू केशरी। गोलाघाट बक्सर से विजय केशरी, पंकज केशरी और रोहन केशरी। आप सबों ने सुना चाहा है फिल्म परिचय का ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में।

आइए सुने फिल्म गाइड का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। आप सबों की फरमाइश पर गोंदा टाउन कांके रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, मनदीप, मंटू, मोनू, सोनू और आराध्या, नूरमहल महसौल सीतामढ़ी से नुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फराज जहानाज, रिफत जहानाज, नुजा जहानाज, साजिया शाहीनाज, नाजिया नूरीनाज, क्वाथ बिहार से नरगिस जफर।

ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रमाणिका और उत्कर्ष नेताम, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा। आप सबों ने सुनना चाहा है फिल्म आपकी कसम का ये गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में।

और इस गीत के साथ ही अब आज का हमारा आपकी पसंद फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: कार्यक्रम सुनोइय सब श्रोता बहिन मन के सुमन बहिन बटले जोहार संगे वंदा बहिन राव को हो जोहार
1: जोहार सुमन दी और कार्यक्रम सुनवैया सब बहिन मन के वन्ना राय बटले जोहार और असरा करीला कि हमरे कर सब सुनवैया बहिन मन कुशल मंगल से होबे
0: सही कहती और सब नगदे नगद रहले हैं सब बेस बुझायल है नी वन्ना बहिन और देखो कि जे सब सुनवैया बहिन मन है उमन तो हमरे कर कार्यक्रम के हर दिन सुनते ही रहे ना और आज हमरे जे खास बात करे वाला ही एगो बात पर कि हमरे परिवार में जे बेरा एक संगे मिलजुल के रही ला जेकर में कि हमरे जैसे कि दादा दादी भेली नाना नानी होलै छुआ पुता मन चाहे माए बाबा सब एक संगे रही ला तो रह कर जे आनंद है वो कुछ और रहेला है नी वंदा बहिन और लेकिन आजकल तो हमरे देखा थी कि हमरे का जो परिवार है और बुजुर्ग पीढ़ी मनक कर जे बीच कर दूरी जो है से बढ़ते हैं जाते और आज कर जो आधुनिक जीवन शैली है इकर संघे भी एकल परिवार में रहक चाहे ना ये भी बढ़त जाते और आगे हमरे जो संयुक्त परिवार में रहत रही जहाँ सब गोटा परिवार मिलजुल के रहत रही हुआ इ तरीकर समस्या नहीं भेटात रहे और घर कर जो बड़ बुजुर्ग कर देख रेख और सबकर से मिलकर बातचीत करे गोठियाए एकदम बेस बेकार बात जे भी होते रहे सब हमरे आपस में एक दूसरे से साझा करत रही और मिलजुल के रहत रही इकर में हमरे का दिन काल के बीत जात रहे एहो पता नहीं चलत रहे
1: है नहीं सही कहली कि आजकल कर जे भागम भाग जिंदगी हो जा है उकर में बुजुर्ग मन जो है सबसे एकला फील करे ना उमन के एकलापन लागे ला के उमन से बात नहीं करे ना
0: हाँ हाँ।
1: तो बुजुर्ग और युवा पीढ़ी कर बीच में जो दूरी बढ़ते जाते उकर कै गो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण है
0: सही
1: कर और देखो नहीं हमरे मन के प्रयास करे के चाहिए के कम करे कर और बुजुर्ग मन कर जो अकेलापन है उके उमन के दूर होवे कर जरूर कै गो उपाय हमरे मन के करे के चाहिए देखो नहीं जैसे कि हमरे मन बहुत व्यस्त रही आजकल का सब महिला मन भी काम करे ना छोवा मन अपन स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या नौकरी करते हैं तो मन जब भी समय नहीं होवेला तो हमरे मन के प्रयास करे के चाहिए कि दिन भर में एगो समय हमरे मन के बुजुर्ग से उमन से बात करे कर उमन कर अनुभव लेवे कर उमन से कहानी सुने कर उमन कर छोट छोट जे बात उमन में हमरे मन के ध्यान देवे के चाहिए जेकर से कि उमन अपने के परिवार से जुड़ल महसूस करे
0: सही कहली
1: और देखो नहीं उमन कर जे शारीरिक और मानसिक जे स्थिति हो जाए से कि हमरे मन के स्वीकार करे के चाहिए हमरे मन चिड़चिड़ाइला हाँ कि ईसन बोलत है भूल जाते तो ई तो ऊसन नहीं करे के चाहिए देखो बुढ़ापा सबकर आवेला सबकर एह स्थिति होवी तो बुढ़ापा में कंधा कर झुके कि स्वभाव में चिड़चिड़ापन होवे कि सामान्य होवेला से ले सबके धैर्य बनाए के एक संगे इकर ऊपरे काम करे के चाहिए
0: सही कहली एकदम अपनवत देखा के चाहिए जब हमरे अपन बनाए के उमन के अपनवत देवब और तो सब कुछ एक सही तरीके से समाज से हुई और सही तरीके से समाज से बैठाए के हमरे एक दूसर संगे चल सकीला है नी और देखो कि आधुनिक जीवन शैली में एखन जे एकल परिवार का जे चलन होते जाते इकर में बुजुर्ग और युवा पीढ़ी जो है इवन एक दूसर से जो दूर और अलग भागत है इकर सबसे बड़ व्यस्त जीवन में तकनीक कर जे लत और विचार कर अंतर से बुजुर्ग मन उपेक्षित महसूस करे ना ईसन में परिवार के जोड़ के रखे के लिए युवा मन के बड़ मन संगे समय बिताए और उमन का जे राय है उमन का जे मशवरा है जे उमन मार्गदर्शन देवे ना सीखे महत्व देवे चाहिए और भावनात्मक रूप से सबलता देवे चाहिए
1: एकदम
0: और एक दूसरे से जुड़ल रहे चाहिए एकर प्रयास हमरे के जरूर करे के चाहिए है निबंध
1: हाँ हाँ और देखो नी वो कहे ना कि जैसन छोट छुआ मन होवेला उसने है बुजुर्ग मन हो जाए ना
0: हाँ।
1: से उमन के छोट छुआ कर नियर हमरे मन के तनिकुन केयर करे के चाहिए घर में होवे वाला जो छोट छोट आयोजन मन है पूजा है या त्योहार है तो सब में बुजुर्ग कर अगर राय ले ला तो पूजा त्योहार आयोजन बहुत बढ़िया से होवेला का लेकिन देखो उमन के जीवन कर बहुत बड़ अनुभव होवेला उमने दुनिया के हमरे से बगरा देखे ना तो उमने हमरे मन के सही सलाह देवे कोई भी काम में हमरे मन उकर से मदद लेब तो हमरे कर काम भी आसान होवी
0: सही
1: और अगर यदि परिवार कर युवा सदस्य से दूर रहना तो उमने वीडियो कॉल या मैसेजिंग कर माध्यम से उमन से नियमित रूप से जुड़ सके ना संपर्क कर सके ना बातचीत कर सके ना
0: बढ़िया माध्यम मिल गया है कहो कि वीडियो कॉलिंग जेकर में कि हमरे एकदम बुझाएल कि जैसे आमने सामने बैठ के बात करे थी और एकदम अपनापन कर एहसास देवेला और बस माए बाबा जो है ना चाहे जे भी बुजुर्ग मन है उमन इतने कन खातिर मिल गए बात दुगो गोठिया
1: खुश
0: तो उकरे से उमन कर आत्मा एकदम तृप्त हो जाए ना खुश हो जाए ना
1: और देखो नहीं, सबसे बड़ चीज है मन कर स्वास्थ्य कर देखभाल। तो बुजुर्ग कर जे स्वास्थ्य उक बटे हमरे मन के तनी ध्यान देवे के चाहिए, बगरा बल्कि देवे के चाहिए। उमन कर नियमित चेकअप भी करवाए के चाहिए और उमन के कखनो ही महसूस नहीं होवे देवे के चाहिए कि उमन हमरे ले बोझ है।
0: सही कहली, और एकला है उमन कर जीवन के आगे देखे ले, बुझे ले, समझे ले, हर घड़ी हमरे तत्पर ही और तैयार ही, इकर एहसास जरूर करवाए के चाहिए। और जितना ज्यादा हमरे बुजुर्ग मन के परिवार में महत्व देवब उतने बढ़िया रही। और जे छुआ पुता मन भी हैं ओहो मन संस्कार भेटाए ना, और छुआ मन अपन माय बाबा के अपन घर में दादा दादी संगे बुजुर्ग मन संगे सही बर्ताव करते देखबे तो आवे वाला दिन में वो मन सीखबे कि परिवार में सब एकदम से कम दिन भर में एक बार बैठ के जरूर
1: के बात
0: अपन परिवार से
1: देखो ये जिम्मेवारी तो कहब कि माय बाबा कर बगरा है कि अगर छुआ मन देखबे कि हमर माय बाबा बड़ बुजुर्ग की इज्जत देवत है, सम्मान देवत है, उमन से बातचीत करत है, उमन कर देखभाल करत है, तो छुआ मन भी ओहे के सीख बा।
0: हाँ, वही संस्कार आवी और हमरे कर आगे आवे वाला जे भावी रथी रही पीढ़ी रह में उमन हमरे ले बहुत बढ़िया हो,
1: बढ़िया है नहीं?
0: तो चलो गोठियाले तो गोठियाते
1: हैं परिवार के बुजुर्ग से दूरी बनाए के नखे, उमन के अपन से जोड़े के
0: अपना वत रखे, उमन पर ची एकदम भावनात्मक लगाव रख के उमन के संगे रहे के सबलता देवे के।
1: तो चलो बहन एखन आप तो गीत सुने कर बेरा होते, तो चलो सुनीला नागपुरी लोकगीत कालिंदी कुमारी और संगी मनकर गावल।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछें। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: ई रहे विज्ञापन संदेश, इकर पहले हमरे सुन ली कालिंदी कुमारी और संगी मनकर गावल नागपुरी लोकगीत। और चलो अब जानकारी कर लेला। अनुभव जो है हमरे कर जीवन में जे भी अनुभवी हैं उनकर सम्मान करे के चाहिए। इकरे बारे हमरे के बताते हैं आज प्रमोद दा, प्रमोद कुमार राय, और इनकर से बातचीत कर रहे हैं वंदना बहिन।
3: कहते हैं मनुष्य जीवन भर सीखता ही रहता है, कभी देखकर, कभी सुनकर और कभी पढ़कर। ऐसा नहीं है कि जीवन में आदमी सब कुछ जानता ही हो, जीवन पर्यंत वह सीखता रहता है। जो चीज स्कूलों में देखने में या सुनने में छूट जाता है, उसे अनुभव से भी आदमी, दूसरों के अनुभव से भी आदमी सीख सकता है। दूसरों का अनुभव को सम्मान करना बहुत ही जरूरी है और यह मनुष्य के जीवन में नया परिवर्तन लाता है। दूसरों का अनुभव हमें जीवन में गलतियों से बचाता है, व्यावहारिक ज्ञान देता है और पीढ़ियों के बीच तालमेल बिठाता है। अनुभवी लोग जीवन के उतार चढ़ाव देखकर सही फैसले लेने की कला सीख जाते हैं। अनुभव के सम्मान से मिलने वाले मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। पहला तो गलतियों से बचाव होता है। अनुभवी लोगों की सलाह हमें वो गलतियां दोहराने में रोकती हैं

0: जो उन्होंने अपने जीवन काल में की हैं। दूसरा है व्यावहारिक ज्ञान। यह ज्ञान किताबों में नहीं मिलता, यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने से उत्पन्न होता है। और उसके बाद बेहतर मार्गदर्शन। किसी भी क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञ कठिन परिस्थितियों में सबसे सटीक समाधान प्रदान कर सकते हैं और उसका लाभ हमें मिल सकता है। सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य। बुजुर्गों या वरिष्ठों का सम्मान हमारी संस्कृति का मुख्य आधार है, जो सभी में आपसी विश्वास को मजबूत करता है।
1: अनुभवी लोगों से हमें जीवन में क्या सीखने को मिलता है?
0: अनुभवी लोगों से हमें जीवन की अनमोल सीख, व्यावहारिक ज्ञान और गलतियों से बचने के तरीके मिलते हैं। उनकी सलाह हमें कम समय में सही निर्णय लेने और चुनौतियों का डटकर सामना करने का हौसला देती है। अनुभवी लोगों के सानिध्य और जीवन से हमें मुख्य रूप से ये बातें सीखने को मिलती हैं। सही और गलत की पहचान। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे होते हैं, इसलिए वे हमें परिस्थितियों का सही आकलन करना और सही गलत में भेद करना सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य का भी काम आता है। जीवन में आने वाली मुश्किलों और असफलताओं का सामना कैसे करना है, यह हमें उनके अनुभवों से पता चलता है और वे हमें हार न मानने की सीख देते हैं। समझदार और अनुभवी लोग अपनी गलतियों से सबक लेते हैं। उनके अनुभवों को जानकर हम उन सामान्य गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। किताबों या शिक्षा से जो सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है, अनुभवी लोग उसे असल जिंदगी में लागू करने का व्यावहारिक तरीका सिखाते हैं। जो काम हम खुद ठोकर खाकर सालों में सीखते हैं, वह ज्ञान हमें अनुभवी लोगों से बातचीत और मार्गदर्शन से तुरंत मिल जाता है। जीवन के लंबे सफर में जिन्होंने लोगों के साथ जीना सीखा होता है, वे हमें बताते हैं कि सफलता के साथ साथ रिश्तों, धैर्य और विनम्रता का क्या महत्व है।
1: हमारे परिवार में बुजुर्गों का अनुभव किस प्रकार उपयोगी होता है?
0: जी, परिवार में बुजुर्गों का अनुभव एक अमूल्य धरोहर है। उनका लंबा जीवन अनुभव युवा पीढ़ी को सही दिशा निर्देश, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और अटूट भावनात्मक संबल प्रदान करता है। वे परिवार के नींव होते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को जीवन के व्यावहारिक पाठ सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार में बुजुर्गों के अनुभव और उपस्थिति इन तरीकों से उपयोग में आती है। बुजुर्गों ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे होते हैं। उनके इसी अनुभव से युवाओं को कैरियर, रिश्तों या आर्थिक चुनौतियों का समझदारी से सामना करने की सीख मिलती है। किताबों में जो ज्ञान मिलता है वह सैद्धांतिक होता है, वहीं अनुभवी लोगों के पास वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों, समस्याओं और उनके समाधान का व्यावहारिक ज्ञान होता है। अनुभवी लोगों से जुड़ने पर युवाओं को उनके विस्तृत नेटवर्क का लाभ मिलता है। यह पेशेवर नेटवर्किंग नौकरी पाने या व्यवसाय शुरू करने में मददगार साबित होती है। अनुभवी लोगों से बात करके युवा उन गलतियों से बच सकते हैं जो उनके मार्गदर्शक अपने शुरुआती समय में कर चुके होते हैं। जब किसी अनुभवी व्यक्ति से युवा बात करते हैं तो उन्हें अपने विचारों के लिए प्रोत्साहन मिलता है, तो उनका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ता है। कार्यस्थल पर अनुशासन, टीम में काम करना और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना जैसे गुण अनुभवी लोगों के सानिध्य में ही सीखे जाते हैं।
1: अनुभव और ज्ञान के बीच में क्या आपसी संबंध है?
0: वास्तव में ज्ञान और अनुभव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ज्ञान हमें सिद्धांत, नियम और क्या सिखाता है, जबकि अनुभव हमें वास्तविक दुनिया में उसका सही उपयोग

0: और कैसे करना है यह सिखाता है। इनके बीच के गहरे पूरक संबंधों को इन बिंदुओं से समझा जा सकता है। ज्ञान पुस्तकों, शिक्षा और दूसरों की सीख से प्राप्त होता है, जबकि अनुभव वास्तविक जीवन में परिस्थितियों का सामना करके और कार्यों में सीधे भागीदारी करके आता है। ज्ञान हमें किसी काम को करने का तरीका बताता है, लेकिन जब हम उसे असल जिंदगी में लागू करते हैं तो अनुभव हमें उस तरीके को और बेहतर और सटीक बनाना सिखाता है। बिना अनुभव के ज्ञान अधूरा और केवल सैद्धांतिक रह जाता है। उदाहरण के लिए, तैरने की कला किताबों से पढ़ी जा सकती है, लेकिन पानी में उतरने का साहस और असली महारत केवल अभ्यास से ही आती है। ज्ञान आपको विकल्प देता है, लेकिन कौन सा विकल्प सही होगा यह आपका पिछला अनुभव ही तय करता है।
1: युवाओं को अनुभवी लोगों से जोड़ना क्यों जरूरी है?
0: युवाओं को अनुभवी लोगों से जोड़ना उनके भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह जुड़ाव युवाओं को सही मार्गदर्शन और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। अनुभवी लोग केवल अपनी सफलताओं से प्रेरित करते हैं, जबकि अपनी गलतियों से सीखे गए सबक साझा करके युवाओं को करियर और जीवन की चुनौतियों से पार पाने में सहायता करते हैं। युवाओं को अनुभवी लोगों से जुड़ना चाहिए। इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं। अनुभवी पेशेवर या बुजुर्ग सही और गलत का सटीक आकलन कर सकते हैं और उनका मार्गदर्शन युवाओं को करियर के शुरुआती दौर में भटके बिना सही राह चुनने में मदद करता है। किताबी ज्ञान केवल सिद्धांत सिखाता है, लेकिन अनुभव हमें यह सिखाता है कि असल दुनिया में समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। हमारे अच्छे और बुरे अनुभव ही हमारे दृष्टिकोण को आकार देते हैं और हमें भविष्य के लिए अधिक समझदार और सतर्क बनाते हैं।
1: अनुभव का सम्मान न करने पर हमें क्या नुकसान हो सकता है?
0: अनुभव का सम्मान न करने से अमूल्य ज्ञान का नुकसान होता है। बार बार वही गलतियां दोहराने का जोखिम बढ़ता है और मार्गदर्शन के अभाव में प्रगति रुक जाती है। इससे रिश्तों में विश्वास टूटता है और कार्यस्थल पर टीम का मनोबल गिरता है। अनुभव हमें सिखाता है कि आप किन रास्तों पर चलकर सफल हो सकते हैं या किन रास्तों पर चलकर आपको असफलता मिलती है। यदि आप अनुभवी लोगों की सलाह नहीं मानते तो आप भी वही पुरानी गलतियां करके समय और संसाधनों का नुकसान कर सकते हैं। बार बार अनदेखा किए जाने पर अनुभवी लोग खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। इससे रिश्तों में दरार आ जाती है और वे भविष्य में सही सलाह या मदद देने से पीछे हट जाते हैं। मार्गदर्शन का अभाव एक अनुभवी व्यक्ति संकट के समय सही दिशा दिखा सकता है। उनके सम्मान के अभाव में व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भटक सकता है और सही निर्णय नहीं ले पाता।
1: अनुभव का सम्मान करने से हमारे समाज को क्या लाभ हो सकता है?
0: अनुभव का सम्मान करने से हमारा समाज अधिक सुदृढ़, ज्ञानी और समरस बनता है। इससे पीढ़ियों के बीच की खाई कम होती है। युवाओं को सही मार्गदर्शन और गलतियों से सीखने की सीख मिलती है तथा वरिष्ठ नागरिकों को समाज में गरिमा और उद्देश्य की भावना प्राप्त होती है। अनुभवी लोगों के पास व्यावहारिक ज्ञान का खजाना होता है। उनका सम्मान करने से यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, जिससे युवा कम गलतियों के साथ तेजी से सीखते हैं।
1: आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि अनुभव का हमारे जीवन में क्या महत्व है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रहे प्रमोद कुमार राय जी, हमरे के जानकारी करवाते रहे कि अनुभव से ही हमरे का जीवन बढ़िया बन सकेला और अनुभव कर सम्मान हमरे के अवश्य करे के चाहिए। इनकर से बातचीत करते रहे वंदना बहिन। चलो अब हमरे एगो नागपुरी लोकगीत के सुन लेला। यह है यशोदा देवी और संगीमन कर गावल।

0: ई रहे यशोदा देवी और संगी मन कर गावल नागपुरी लोकगीत।
1: तो सुमंदी आप तो हमरे कर जाय कर बेरा होते, तो अगला सोमवार के हमरे अपन बहिन मन कर संगे फिर से गोठियाब। तब तक खातिर देव विदा, जोहार
0: जोहार।

दाने सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। आज की गृहलक्ष्मी संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनिए फिल्म संगीत।

एन इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म का गीत अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। आइए सुनिए गोपाल दास नीरज के बोलों को शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम कन्यादान।

आइए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म स्वीकार किया मैंने का ये गाना। बोलो को लिखा है निधा वाजलिनी और धुन तैयार की है उषा खन्ना ने।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म द ट्रेन का ये गाना। आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन का संगीत।

आइए सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म बेटी बेटे का ये गाना। हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सौदागर का ये गाना। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी हम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात

0: ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा, खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
0: अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official.

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र किया जारी। 21 जून को होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज निषिद्ध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। रांची माहुलिया टाटा खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 33 की 126 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्विकास के लिए 214 करोड़ रुपए की ओवरले परियोजना स्वीकृत। रांची रेल मंडल ट्रेनों को आधुनिक निगरानी प्रणाली से जोड़ने, चोरी छेड़छाड़ और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सैकड़ों कोचों में लगाएगा सीसीटीवी। और केरल में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 10 के सीनियर वर्ग ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में रांची के विशाल बहादुर ने हासिल किया दूसरा स्थान। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। यह परीक्षा 21 जून को होगी। एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से डीवीसी कमांड एरिया में बिजली आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि बढ़ती मांग के अनुरूप इन जिलों को 800 मेगावाट बिजली की जरूरत है। इधर पतरातू थर्मल पावर स्टेशन की दूसरी यूनिट से 800 मेगावाट बिजली उत्पादन जल्द शुरू होने की संभावना है। इसके शुरू होने के बाद डीवीसी कमांड एरिया के जिलों में बिजली आपूर्ति में राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर प्रोजेक्ट भवन से निषिद्ध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य पूरे राज्य में मादक पदार्थों के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना और नशे की रोकथाम के लिए लोगों को प्रेरित करना है। गुमला जिले के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने आज समाहरणालय परिसर से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान को लेकर नशा मुक्ति प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि जिले में नशा के खिलाफ आगामी 26 जून तक नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा।
2: नशा को कैसे हम लोग नियंत्रित करेंगे, इसको लेकर जागरूकता फैलाने का काम जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए हमारे सभी स्कूल्स के स्टूडेंट्स को भी जागरूक करके और वो जाकर अपने परिवार के लोगों को कैसे समझाएं, इसके दुष्प्रभाव और वास्तव पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ नशापन के कारण अपराध देखने को मिलता है।
1: जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलामती, देश के सुख समृद्धि और समाज के सर्वांगीण विकास की कामना को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने चूना शाह बाबा की मजार पर चादर पोशी कर विशेष दुआ की। लोगों ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास में सहभागी हैं।
3: समाज के आखिरी व्यक्तियों तक पहुंच करके उसे पहली पंक्ति में ला के खड़ा करना, चाहे वो जिस समुदाय से आता हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का विकास हो। वो तो अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी समाज का कोई भी वर्ग अगर छूट जाएगा तो ये देश उन्नति नहीं करेगा।
1: धनबाद जिले के बलियापुर क्षेत्र में बिना लाइसेंस के उर्वरक, बीज और कीटनाशी बेचने के मामले में कृषि विभाग ने दुकान को सील कर दिया है। जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने कहा कि किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
4: गुरु दीपक बीज भंडार है, इनके प्रतिष्ठान में अवैध रूप से जो कीटनाशी है वो बड़ी मात्रा में पाया गया है, जबकि इनके पास अनुज्ञप्ति नहीं था। इनके बार बार कहा गया कि आप अपना अनुज्ञप्ति प्रेषित करें, परंतु किसी भी प्रकार से अपनी अनुज्ञप्ति प्रेषित नहीं कर पाए। साथ ही साथ बीज और खाद में कुछ कुछ अनियमितताएं भी पाई गई है, तो इसलिए उसको जब्ती करते हुए दुकान को सील किया जा रहा है।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के प्रयास से रांची माहुलिया टाटा खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 33 की 126 किलोमीटर लंबी सड़क के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए 214 करोड़ 79 लाख की ओवरले परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इसका निर्माण 18 जून को भूमि पूजन के बाद शुरू होगा। इससे रांची जमशेदपुर के बीच आवागमन आसान होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज पूरी तरह खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। रांची रेल मंडल ने ट्रेन की बोगियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की दिशा में तेजी से पहल की है। पहले चरण में 150 बोगी में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जबकि 730 अतिरिक्त कोचों में कैमरे लगाने के लिए निविदा निकाली गई है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य ट्रेनों को आधुनिक निगरानी प्रणाली से जोड़ने, चोरी, छेड़छाड़ और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लाना है। जमशेदपुर प्रधान डाकघर परिसर में कल रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। शिविर में डाक कर्मियों और स्थानीय लोगों ने रक्तदान किया। डाक सहायक चंडीचरण साधु ने 60वीं बार, श्यामल महतो ने 36वीं बार, जबकि चूना राम हांसदा ने 33वीं बार रक्तदान किया। मौके पर वरिष्ठ डाक अधीक्षक उदय भान सिंह ने कहा कि डाक विभाग आगे भी सामाजिक अभियान जारी रखेगा।
5: थीम है इस वर्ष का, मानवता की एक बूंद जिंदगियां बचाए। हमारे डाक परिवार के स्टाफ से, ग्रामीण डाक सेवकों जो रक्तदान करेंगे, उनसे अगर किसी की जिंदगी बचती है तो इससे बड़ा दिन मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता है। इसी थीम को दिमाग में रखते हुए मैंने ये आयोजन आज जमशेदपुर प्रधान डाकघर में करवाया है।
1: धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में असम की एक युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस उपाधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि युवती के आरोपों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।
6: एक लड़की के साथ एक लड़का जिसका नाम राजू कुमार साव के द्वारा जोर जबरदस्ती की घटना कारित की गई है। पेट्रोलिंग टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को और इस लड़के को वहां से थाना परिसर लाया और अभी लड़की से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि वो असम की है और वहां से वो यहां घूमने आई थी अपनी सहेलियों के साथ और इसी बीच उसके साथ ऐसी घटना कारित हुई।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स लगभग 1200 अंक की बढ़त के साथ 76725 पर शुरू हुआ, जबकि निफ्टी लगभग 360 अंकों की बढ़त के साथ 23985 पर खुला। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,52,000 रुपए प्रति किलो है। केरल के त्रिवेंद्रम में आयोजित इंडियन एथलेटिक सीरीज 10 के सीनियर वर्ग ट्रिपल जंप में रांची के विशाल बहादुर ने 16.10 मीटर की छलांग के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि पर खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, खेल सचिव मुकेश कुमार, खेल निदेशक छवि रंजन ने बधाई दी। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र किया जारी। 21 जून को होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज निषिद्ध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। रांची महुलिया टाटाखंड राष्ट्रीय राजमार्ग 33 की 126 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्विकास के लिए 214 करोड़ रुपए की ओवरले परियोजना स्वीकृत। रांची रेल मंडल ट्रेनों को आधुनिक निगरानी प्रणाली से जोड़ने, चोरी, छेड़छाड़ और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सैकड़ों कोच में लगाएगा सीसीटीवी। और केरल में इंडियन एथलेटिक सीरीज 10 के सीनियर वर्ग ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में रांची के विशाल बहादुर ने हासिल किया दूसरा स्थान। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दी बधाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आयु सिने उपशास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की अनुरंजनी में हम सुनेंगे अनीता सेन को। सबसे पहले इनसे सुनते हैं ये बंदिश। इसे लिखा है अमीर खुसरो ने और आवाज़ है अनीता सेन की। बोल है मोरा बाला चोवनवा।

आज की अनुरंजनी में हम सुन रहे थे अनीता सेन को। अब इसी के साथ आज की अनुरंजनी संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, कुछ ही पलों में हम सुनेंगे सुगम संगीत।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आज के सुगम संगीत में हम सुनेंगे चंद गजलें। ये पहली गजल आशा भोसले की आवाज में।

और आइए सुगम संगीत में आप सुनते हैं मेहंदी हसन की गाई कुछ गजलें। सुनते हैं ये पहली गजल सोहेल राणा की लिखी हुई।

0: In the FIFA World Cup 2026, Sweden thrashed Tunisia 5-1 in their Group F match at Monterrey Stadium in Mexico today. Sweden produced a dominant second-half performance to seal a convincing victory. The win gives Sweden a strong start to their World Cup campaign, while Tunisia suffered a heavy defeat despite reducing the deficit before halftime. In the other event for today, Spain will play against Cabo Verde in their Group H match at the Atlanta Stadium in the United States. The game will start at 9:30 p.m. IST. The 19th Mumbai International Film Festival will begin today. The formal opening ceremony will be held at Mumbai's Ravindranath Mandir in the evening. This year, the competition section comprises 144 films, including 52 international and 92 national entries, representing filmmakers from 13 countries. More from our correspondent.
1: MIFF, the much-awaited biennial film festival for non-feature films, will open with the animated work Good Luck to You All, directed Cordell Barker, the short fiction Agapito, directed by Arvind Belarmino and Kayla Daniel Romero, and the documentary Time and Water, directed by Sara Dosa. Master filmmaker David Attenborough will be honored with the screening of his two films under Centenary Tribute. The 19th MIFF will also feature 10 masterclasses and 5 open forum discussions. The festival will confer 18 awards across international and national competition categories. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai.
0: The Indo Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal till tomorrow. The weather agency has issued an orange colour warning for thunder squall conditions over Rajasthan, East Uttar Pradesh, Odisha and West Madhya Pradesh today. IMD said conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into more parts of Maharashtra, some parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Bihar and South Chhattisgarh during the next 4 to 5 days. India's wholesale price index, WPI-based inflation, accelerated to 9.68% year-on-year in May under the newly released WPI series, compared with 8.26% in April under the old series. The release marks the first major revision of India's wholesale inflation series in over a decade, with the base year updated from 2012 to 2023. Data released by the Ministry of Commerce and Industry showed that the rise in inflation last month was primarily driven by higher prices of mineral oils. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 begin participate in outreach sessions tomorrow. India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1,100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। समाचार। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्रिग्नैनी पांडे।
2: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
2: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
3: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमरीका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
2: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
5: अमरीका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

0: आपकी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
2: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंडरापू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
3: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
4: ओडिशा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। रजक का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक रजापान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है, जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोमा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमरीका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमरीका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती बस थोड़ी ही देर में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सेना।
1: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
2: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा हित में जारी।
3: फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत के हमारे कार्यक्रम जय भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं मुकेश का गाया ये गाना। इसे हमने लिया है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, उस फिल्म से। बोलो को लिखा है शैलेंद्र ने, धुन तैयार की है शंकर जय किशन ने।

आइए सुनते हैं फिल्म शिकारी का ये गाना, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज में, फारूक कैसर के बोल हैं और जीएस कोहली का संगीत।

आइए सुनते हैं फिल्म सूरज का ये गाना, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी हम सुन रहे थे जय भारती, और अब आज की जय भारती संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्र ने झारखंड के 126 किलोमीटर से अधिक लंबे रांची महोलिया खंड पर सड़क निर्माण कार्य के लिए 214 करोड़ 79 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। रांची से सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस परियोजना को रांची और जमशेदपुर के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी राहत बताया। उन्होंने कहा कि इससे यात्रा अधिक सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक होगी। उन्होंने कहा कि यह सड़क झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच व्यापार, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसके सुदृढ़ीकरण से क्षेत्रीय विकास में तेजी आएगी। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश पदाधिकारी बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार

0: एजेंसियां आरोपितों को लाभ पहुंचाएंगी। अदालत ने कहा कि फिलहाल जांच की न्यायिक निगरानी की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने एजेंसियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून सम्मत तरीके से झारखंड के नए एडवोकेट जनरल रोहिताशिया रॉय ने आज हाईकोर्ट परिसर स्थित महाधिवक्ता कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद वरीय अधिवक्ताओं और अधिवक्ता लिपिकों ने उन्हें बधाई दी। इससे पहले पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की तैयारी की गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश अनुसार 5 जून से 30 सितंबर 2026 तक जिले के सरकारी और गैर सरकारी तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों में 1,57,625 पौधे लगाए जाएंगे। जिले के 2,558 विद्यालयों को पौधरोपण का लक्ष्य दिया गया है। विद्यालय परिसरों के साथ साथ घरों और सार्वजनिक स्थलों पर भी पौधे लगाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर आज नशा विरोधी जागरूकता अभियान के तहत साहिबगंज में उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने जागरूकता रथ को रवाना किया। यह अभियान 26 जून तक लोगों को जागरूक करेगा। अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर गुमला सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. शंभुनाथ चौधरी ने लोगों से डेंगू से बचाव के लिए सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि डेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर साफ और ठहरे हुए पानी में पनपता है, दिन के समय अधिक सक्रिय रहता है।
1: डेंगू है या चिकनगुनिया है, ये एक वायरल डिजॉर्डर है और ये जो साफ पानी होता है उसी में इसका ब्रीडिंग होता है। तो इसीलिए हमारी तरफ से आपको ये संदेश है कि कोई भी अपने इर्द गिर्द जितना भी जगह है वहाँ पर पानी जमाव न होने दें। एटलीस्ट संडे के दिन जब आमतौर पर आप खाली होते हैं तो अपने शहर के इर्द गिर्द कोई पानी नहीं जमने दें।
0: थ्रोबॉल रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 17 और 18 जून को द्वितीय साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 आयोजित होगी। इसे लेकर भारतीय थ्रोबॉल संघ और झारखंड राज्य थ्रोबॉल संघ आज प्रतियोगिता की तैयारियों, भाग लेने वाले देशों और आयोजन की रूपरेखा समेत अन्य जानकारी देगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 110.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आयुष ने एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
1: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है 36

0: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोहली जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा आ गया है, बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
1: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह, सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
1: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
0: आदरणीय अजीत जी व बिमलेश जी को सादर नमस्कार, उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
1: जी,
0: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे, लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
1: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
0: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
1: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
1: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
1: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है, तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
0: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
0: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
0: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
1: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर,
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
3: लड़के तू जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
3: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
3: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
3: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।

0: कितने सुंदर कंचे। ओह,
1: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो।
0: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
1: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
2: सात का पहला सुन।
3: सात एकम सात,
4: सात एकम सात,
3: सात दूनी चौदह।
1: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
5: आ गया,
0: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
1: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
0: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
1: उसे रामन ने ये सूचना दी थी, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
6: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
0: मास्टर जी,
1: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
0: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
1: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
6: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
0: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
1: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
6: अप्पू,
1: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
6: अरे, तू उधर क्या कर रहा है?
1: उसका दम घुट रहा था।
6: बोल।
1: वो खामोश खड़ा रहा।
6: क्या नहीं बोलेगा?
1: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
0: मास्टर जी,
6: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
0: वो
1: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
6: हाँ हाँ,

0: बता, डरना मत।
1: वो
2: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
0: हाँ हाँ,
2: वो कांपते हुए बोला,
1: वो कंचा।
0: कंचा?
2: फिर सक पका गए, कक्षा में भूचाल आ गया।
0: स्टैंड अप।
2: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका, सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
1: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
2: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है,
1: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: तब शक हुआ,
1: कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा, जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो।
0: किसी को शक हो तो पूछ लो।
2: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
0: क्या किसी को कोई शक नहीं?
1: नहीं मास्टर जी।
2: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे।
0: अप्पू क्या सोच रहे हो?
1: वो मैं
0: पूछ लो ना, शंका क्या है?
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे। क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में?
0: क्या सोच रहे हो?
1: वो पैसे।
0: क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए, क्या रेलगाड़ी के लिए?
1: हाँ।
0: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
2: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
1: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
2: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
0: लो।
2: मास्टर जी ने कहा,
0: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
2: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
1: 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
2: वो बेंच से उतरा।
0: किधर?
2: मास्टर जी ने पूछा।

0: था, उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
1: फीस देनी है।
2: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिझकता रहा।
2: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
2: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
3: बच्चों एक एक करके आओ,
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
1: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
1: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
2: क्या सब फीस जमा कर चुके?
1: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा, वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे।

0: यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
1: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
2: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
2: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
1: दे दो।
2: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़ कर माँ के गले लग गया।
1: माँ,
3: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
1: यह देखो माँ।
3: अरे ये क्या है?
1: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
1: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
3: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
1: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
1: दोपहर को दिए थे ना।
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे।
4: अभी हम सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह आकाशवाणी रांची है। आइए सुनते हैं केंद्र की NDA सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय है आर्थिक विकास। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं श्री नवजोत अलंग, संयुक्त सचिव झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और श्रीमती संहिता सुचारिता, सहायक प्राध्यापक इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं पूनम किरकेट्टा।
5: नमस्कार। आकाशवाणी रांची के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित आज के परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम किरकेट्टा आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस विशेष परिचर्चा में। आज का विषय है केंद्र की NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आर्थिक विकास पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं श्री नवजोत अलंग, संयुक्त सचिव झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और डॉक्टर संहिता सुचारिता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची। नवजोत जी और संहिता जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
6: नमस्कार।
7: नमस्कार, थैंक यू।
5: जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारी GDP है 4.1

0: $5 trillion और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में जानी जा रही है। नवजोत जी, इस आर्थिक रफ्तार का श्रेय आप किस मुद्दे को देना चाहेंगे, किस बात को देना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं इसमें सबसे ज्यादा श्रेय तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देना चाहूंगा और मेरे को लगता है कुछ स्टेप्स उनके रहे हैं पिछले 12 वर्षों में जिनसे हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में पहुंचे हैं और जिसमें जीएसटी एक बहुत मील का पत्थर साबित हुआ है। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से और जो उसके बाद चेंजेस हुए तो उससे जो टैक्स कलेक्शंस हुआ है ये अपने आप में बहुत हर साल हम देखते हैं बढ़ता जाता है। तो ये मेरे को लगता है ये सिंगल में अगर कुछ बोलेंगे तो सिंगल एजेंडा में जीएसटी मेरे हिसाब से रहेगा।
0: जी जी, इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे आप, जीएसटी में जो सुधार हुआ है और कर संग्रह में जो सुधार हुआ है इसके बारे में?
1: देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे चेंजेस के बाद जीएसटी में जैसे 5 अलग अलग स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। तो पहले जैसे हम देखते थे कि ये एनुअली होता था तो फिर अब जीएसटी में मंथली होता है, मंथली आपको भरना पड़ता है। तो उससे जो भारत में जो टैक्स कलेक्शन है, आज जो इतना टैक्स कलेक्शन हो रहा है तो उसका ये काफ़ी बड़ा हेल्प है जीएसटी में। उसके बाद जैसे मैं आपको बताऊंगा ईवे बिल, तो ईवे बिल आने से जो बिजनेसमैन को बहुत सारी दिक्कतें होती थी वहाँ जाके प्रैक्टिकल रूप में करने के लिए, वहाँ मैनुअली जाना पड़ता था, ईवे बिल से वो सब में बहुत फ़ायदा हुआ है। जिम पोर्टल, पहले हम देखेंगे कि जेम पोर्टल नहीं था तो टेंडर्स में बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी, बहुत सारे प्रो एंड रूल्स होते थे जिसको आप समझ सकती हैं। तो अब वो है क्या कि जेम में आप ऑनलाइन टेंडर्स भरें और उससे काफ़ी एक तो रेट किफायत भी मिलता है, L1 भी होता है और गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट में भी जो भी चीज़ गवर्नमेंट खरीदना चाहती है तो उनको फ़ायदा होता है क्योंकि आप वो पैन इंडिया देख सकते हैं कि L1 ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। L1 क्या है, पहले इसमें होता था कि कोई लिमिटेड 3 टेंडर्स डले, उसमें रेट किसी का एक मतलब तीनों में एक को कम कर दिया और उसको L1 वो घोषित हो गया। अब वो है जेम पोर्टल के थ्रू है कि वो पूरे इंडिया में जहां सबसे कम है वो उस रेट पे होगा। तो ये मेरे को लगता है ये भी एक काफी बड़ा स्टेप है जिससे गवर्नमेंट की करोड़ों की सही सामान मिल पा रहा है और उचित दाम में मिल पा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है।
0: अगर आज यहाँ से कोई जेम से ऑर्डर करता है और वो सामान आ रहा है पौंडीचेरी से
1: जी,
0: तो फिर उसकी वैबिलिटी कैसी रहेगी?
1: मैम, इसमें ऐसा होता है ना, जैसे वो पर्टिकुलर सामान उसको देना है
0: जी,
1: तो वो सामान वो मैन्युफैक्चरिंग से वो उसके पूरे पेपर्स वहाँ पे अपलोड रहते हैं तभी वो बिड कर पाएगा और बिड पे जिसका बेस्ट रेट होगा वो उस हिसाब से होता है। हाँ, इसमें मैं एक बात ज़रूर रखना चाहूँगा कि जैसे लोकल स्तर पे भी, सपोज हम झारखंड से बात करें तो झारखंड या हर स्टेट को एक जैसे MSME में एक मिनिमम है कि इतने परसेंट स्टेट का भी कुछ प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, तो उस तरह से छोटे स्टेट्स को भी कुछ, वहाँ के डीलर्स को भी कुछ प्रायोरिटी होनी चाहिए ताकि वो कम्पीट कर सके
0: जी, जिससे कि इन योजनाओं का विकेंद्रीकरण हो
1: जी,
0: छोटी जगहों पर भी
1: जी,
0: इनका लाभ मिले।
1: हाँ, हाँ,
0: और जैसे कि हम बात कर रहे थे कर संग्रह की, जीएसटी की, तो मैं आपसे इस पर जानना चाहूंगी संहिता जी कि किसी देश के विकास के लिए कर संग्रह सही तरीके से होना और ट्रांसपेरेंट तरीके से होना कितना मायने रखता है?
2: सबसे ज्यादा कोई भी इकोनॉमी ग्रो कर पाएगा अगर उसके पास रेवेन्यू रहेगा, मतलब अगर कैपिटल ही नहीं है तो हम ग्रोथ के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। तो कैपिटल मतलब दो तरीके से हो सकता है, या तो लोन ले या तो रेवेन्यू कलेक्शन करे, तो लोन कभी भी सही तरीका नहीं होता है, इसलिए कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो सर ने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है कि जो GST रिफॉर्म है, इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, तो उसके वजह से 17 टाइप्स ऑफ जो टैक्स थे वो एक ही टैक्स में हो गए, वन नेशन वन टैक्स। तो उसके वजह से बहुत सारा कैस्केडिंग और डबल टैक्सेशन, ये सब प्रॉब्लम जो है वो इरेडिकेट हो गया और सारे स्टेट को एक ही टैक्स पॉलिसी फॉलो करना है और वो बहुत ट्रांसपेरेंट भी हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म तो एक सिग्निफिकेंट रिफॉर्म है जो 2017 में आया था, फिर अगेन 2025 में उसका रेट जो है वो रेशनलाइज हुआ, टू स्लैब में हुआ और जो लग्जरियस कमोडिटी थे उसका रेट बढ़ा, तो उस सबसे मतलब टैक्स कलेक्शन अचानक से तो नहीं बढ़ेगा लेकिन ग्रेजुअली वो बढ़ता ही रहेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो टैक्स विभाजन हो रहा था उसकी मात्रा घट जाएगी, क्योंकि सबको जीएसटी करना पड़ेगा और 3 नंबर ऑफ कंपल्सरी है। उसको छोड़ के इनकम टैक्स में भी बहुत रेशनलाइजेशन आया है, कॉर्पोरेट टैक्स में भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है और डिजिटलाइज हो गया है। जैसे पहले टैक्स का अलग अलग कैनन रहते हैं, जो कैनन ऑफ कन्वीनियंस जो है वो बहुत बड़ा होता है और कैनन ऑफ इकोनॉमी ये सब रहता है, जिसके अंतर्गत टैक्स रेट कम होना चाहिए। जीएसटी में टैक्स रेट कम हो गया है और अभी हम अगर देखें तो इनकम टैक्स में भी मिला है कि जो लो इनकम है उनको टैक्स फ्री है, टैक्स रेट तो कम है और एज वेल एज उनको पता है कि कब टैक्स देना है। जैसे इनकम टैक्स आज भी तो वेरी कन्वीनियंट कि हमें पता है कि 1 जुलाई तक उसको रजिस्ट्रेशन करके टैक्स रेट देना है, कब देना है, तो उस हिसाब से इंसान प्लान कर पाएगा। तो डिजिटलाइज और जो ट्रांसपेरेंट हुआ है वो बहुत एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, जिसके वजह से अगर हम इंडिया का अभी इकोनॉमी को देखें तो इसका जो डेफिसिट है वो बहुत कंट्रोल में है। जैसे अभी फिस्कल डेफिसिट 4.4% है और हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है ये हाफ हो गया है। जैसे 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट का इनिशिएशन हुआ था तब वो 3.5 था, अभी 1.5 है। और जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है वो बेसिकली शो करता है कि कितना अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, तो क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट घटा है ऑब्वियसली शो कर रहा है कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा है, एज वेल एज अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो है हमारे कंट्रोल में है। तो इसके वजह से मैं बोल पाऊंगी कि जो कैपिटल है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और उसका मेजर सोर्सेस जो होता है वो टैक्सेशन होता है, नॉन टैक्स में अलग अलग रहता है फाइन फीस ये सब, लेकिन उनका उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है जितना टैक्स का रहता है। जो टैक्स के मेजर रिफॉर्म के वजह से अभी एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम हो गया है।
0: जी नवजोत जी, आप संयुक्त सचिव हैं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, और सरकार ने छोटे छोटे उद्योगों को जो प्रोत्साहन के लिए योजनाएं लाई हैं जैसे स्टार्टअप इंडिया, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी इस पर।
1: ये तो अपने आप में बहुत बढ़िया योजना है। स्टार्टअप में जिस हिसाब से पहले इतना फोकस नहीं था तो हमारे पीएम सर ने उसको फोकस किया और हर जगह जो स्टार्टअप पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इवन जो पीएमएमवाई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
0: जी,
1: तो उसमें जो 10 लाख तक का, मैं दोनों को रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें 10 लाख तक का लोन कोलेटरल फ्री मिलता है,
0: कोलेटरल फ्री गारंटर
1: जी, बिना गारंटी के आप लोन ले सकते हैं। तो उससे देखिए छोटे जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन को, बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन मैम मिल जाता है, दिक्कत छोटे बिजनेसमैन को आती है, छोटे व्यापारियों को आती है। तो उनमें क्या है कि इस तरह का जब कोलेटरल फ्री लोन मिला तो उन्होंने बहुत, उनका भी काम बढ़ा, रोजगार बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, तो उससे बहुत फायदा हुआ। और ये आप एक दिन में तो नहीं देखेंगे, मगर धीरे धीरे हम देख रहे हैं, जैसे आने वाले पिछले 10 वर्षों में, तो ये धीरे धीरे धीरे बूस्ट होता जा रहा है बिजनेस। अब स्टार्टअप में बहुत चीज़ें आज के डेट में हम देखते हैं कि इंडिया में भी चल रही हैं स्टार्टअप के थ्रू। इनके साथ ही आप स्टार्टअप के साथ देखेंगे मेक इन इंडिया, तो प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया पे भी जोर दिया। तो मेक इन इंडिया से क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो अब इंडिया में बन रही हैं, जो पहले इंडिया में नहीं बनती थी, हम वो भी इंडिया में बना रहे, तो जिससे रोजगार भी पैदा हो रहा है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे लोगों को रोजगार चाहिए ही चाहिए, तो इस तरह की योजनाओं से जब बिजनेस बढ़ेगा, सपोज किसी की दुकान है, किसी का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और अगर उसको काम ज़्यादा मिल रहा है और उसने नया स्टार्टअप के लिए उसको लोन मिल रहा है, तो वो नई नई चीज़ें लगाएगा, नए उपकरण लगाएगा, नए, तो उससे रोजगार भी हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ वो दे रहा है लोगों को और बिजनेस भी ग्रोथ हो रहा है, तो वो दोनों एंड में फायदा है मैम।
0: जी जी, कई लोगों को ये चिंता होती है क्योंकि ये गारंटर मुक्त ऋण योजना है, तो वापस बैंकों को ये ऋण कैसे सुनिश्चित होगा कि
1: बैंक तो एट द एंड ऑफ द डे साइन कराते ही है, ठीक है, लोन में उसमें कोलेटरल फ्री है, मगर वो जो बैंक का पूरा जो डॉक्यूमेंट साइन हो वो होता है, ऐसा थोड़ी है कि बैंक पूरा छोड़ ही देता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कुछ एड रहता है वो है। और एक चीज है मैम कि कोई भी लोन अगर आप दे रहे हैं तो वो उसको वापस तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आज बैंक का वो सिस्टम है कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में डिफॉल्ट होते हैं तो वो आपके सिस्टम में दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले वाला सिस्टम है आज से 50 साल पहले वाला कि आप पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया, फिर आपने कैनरा बैंक से ले लिया,

0: फिर आप इन इन बैंक ऑफ इंडिया चले गए। आप एक बार अगर आप उसमें पोर्टल में आप सपोज डिफॉल्टर होते हैं तो वो आपके सिस्टम में पूरा, आप जैसे ही आपका नाम खुलेगा ना, वो उस पर डिफॉल्ट लिस्ट दिखाने लग जाएगा। तो आपका वो, अगर आप वन टाइम फ्रॉड कर रहे हैं वो तो अलग चीज़ है, नहीं तो आपको वो रिपे करना ही पड़ेगा मैम, और वो आपका डिफॉल्ट जो है वो दिखता रहेगा
1: जी,
0: जब तक आप उसको क्लियर नहीं करते हैं। तो मेरे को लगता है देखिए, और दूसरे एंड में मैम, कभी भी आप लोन दे रहे हैं और लोन से अगर जिसकी सही वो नियत है तो आप उसमें 2-4-10% केस अलग हो सकते हैं
1: जी।
0: मगर 90% लोग जब लोन लेते हैं और उनका वो बिजनेस में लगा रहे हैं अब और उससे जो तरक्की कर रहे हैं तो वो लोन चुकाते हैं मैम। ऐसा नहीं है कि वो लोन लेके और किसी तरह के वो डायरेक्ट आप किसी को फंड देते हैं, उससे तो बेटर ही है कि वो लोन ले रहा है और लोन लेके कमा रहा है और कमाने के बाद वो धीरे धीरे बैंक को भी देता जा रहा है
1: जी। और ये रोजगार, जैसे पहले लोग नौकरी के लिए लालायित रहते थे, लेकिन अब जब ये योजना आई है, बहुत सारे युवा हैं जो अपना रोजगार स्टार्टअप कर रहे हैं। बहुत से हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि आईआईटी से युवाओं ने अपनी शिक्षा ली लेकिन बाद में वो अपना कोई स्टार्टअप लेकर उद्योग को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, और सिर्फ खुद के लिए रोजगार नहीं बल्कि और 100 और लोगों
0: पैदा
1: के लिए
0: भी
1: रोजगार पैदा कर रहे हैं। तो
0: जी,
1: ये बड़ी अच्छी बात है। सहिता जी, आप कैसे देखती हैं इस मुद्रा योजना को?
2: मुद्रा योजना गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए बेसिकली ये प्रोग्राम है और 3 लाख तक लोन उनको सैंक्शन होता है। और इससे जैसे अभी इंडिया का मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है, जैसे 68% ऑफ द पॉपुलेशन आर यूथ इंडिया में, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बिगेस्ट चैलेंज है। तो उसी हिसाब से जैसे मुद्रा योजना जो राइट टाइम में हुआ है, सबको गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है आज के समय में, क्योंकि हमारा 147 करोड़ आबादी है और उसमें यूथ इतने ज़्यादा हैं, तो इसीलिए। और गवर्नमेंट अभी अगर हमने देखा जाए तो जो जियो पोलिटिकल कंडीशन है, जो मतलब वार चल रहा है, क्राइसिस है इकोनॉमी में, लाइक क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जॉब एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारा इनिशिएटिव के बावजूद, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, बहुत सारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव टाइम टू टाइम लिया है, जिसके बावजूद इन्वेस्टमेंट एक बिगेस्ट चैलेंज है। उसको प्रमोट करने के लिए राइट टाइम पे ये गवर्नमेंट ने मुद्रा योजना इम्प्लीमेंटेशन किया है, ताकि इन्वेस्टमेंट भी बढ़े इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही रहा है, नॉट ओनली द जॉब सीकर, दे आर द जॉब क्रिएटर एज वेल, एंड उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहा है गवर्नमेंट, जो इन्वेस्टमेंट बहुत एसेंशियल हो गया है इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। इंडिया अभी मतलब 6th largest इकोनॉमी है, 4.15 trillion इकोनॉमी मतलब है, और उसका इकोनॉमिक ग्रोथ IMF के हिसाब से 6.5% है इकोनॉमिक ग्रोथ, और अभी जो NSSO का नया रिसेंट आंकड़ा आया है उसमें 7.8% है। लेकिन इस इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए और जो हमारा 2047 का विकसित भारत का विजन है, तो उसके हमें अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत प्रायोरिटी है
0: जी। मैं तो इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैम,
1: बिल्कुल,
0: जो 6th largest इकोनॉमी अवार्ड से पहले तो हम लोगों ने देखा था कि इंडिया 4th largest इकोनॉमी पहुंच गया था
1: जी। और हम इसमें और प्रगति की आशा करते हैं
0: जी।
1: अगर हम प्रधानमंत्री जनधन योजना की चर्चा न करें तो ये चर्चा बेमानी हो जाएगी। नवजोत जी, इस पर
0: देखिए, जनधन योजना तो पीएम सर की, मेरे को लगता है, वन ऑफ द मेन योजना है, जिसमें उन्होंने एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया पहले
1: जी।
0: तो ये अपने आप में इसमें बहुत वो थे, लोगों को ये था कि खुलेंगे, आम लोग खुलेंगे, कॉमन लेमैन खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, मगर उन्होंने खोल के दिखाया। और सबसे बड़ा फायदा मेरे को लगता है खुलने के बाद ये है ना, कि जो मिडिलमैन थे, मिडिलमैन इन एवरी रिस्पेक्ट, जो गवर्नमेंट के जो किसी भी लेवल पे जो फंड ट्रांसफर होते थे किसानों को या बाकी सबको, तो वो उसमें वो मिडिलमैन का वो हमेशा रहता था, एक्टिव रहता था, क्योंकि वो सरकारी ऑफिस जाते थे तो वो सरकारी बाबुओं का चक्कर रहता था और बहुत कुछ था। तो अब इससे क्या है कि वो डायरेक्ट फंड उनके खाते में चला जाता है
1: जी।
0: तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि अब किसी भी योजना में वो गवर्नमेंट को किसी मिडलमैन की, किसी बिचौलिए की कहीं ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को भी, वो कॉमन लेमैन जो इंडिया के हैं, उनको भी कहीं किसी की ज़रूरत नहीं है। उनके खाते में पैसे अपने आप किसी

0: भी गवर्नमेंट फंड के अपने आप आ जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है। और एक चीज़ इससे हम एक दूसरे एस्पेक्ट में देखेंगे तो एक बहुत जिनके खाते नहीं थे मैम
1: जी जी
0: तो
1: वो खाते उसी वक्त खुले।
0: हाँ उसी वक्त खुले और उसमें हाँ उसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो जो खाते जब खुले मैम तो खुलने का एक फ़ायदा क्या हुआ ना, पहले एक कॉमन जो हाउसवाइफ है या गांव घर के जो लोग हैं वो पैसे को अपने पास रखते थे ठीक है। आज जो हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में पहुंचे अभी ठीक है सिक्स्थ में, तो वो पैसा कहीं ना कहीं उनके घरों से पांच साल पहले लोगों ने वो बैंक में डिपॉजिट किया
1: जी।
0: तो ये अपने आप में बहुत बड़ी रकम हुई। जो लोगों का पैसा घर में था तो प्रधानमंत्री जी ने वो पैसे को घर से बैंक में स्विच कराया, ये अपने आप में आज वो पैसा बैंकों के थ्रू इकोनॉमिक जो घर में पड़ा रहता था तो इट्स वेस्ट, एक तरह से वो वेस्ट था।
2: हो गया सेविंग, एक सेविंग एक एक्टिविटी अमंग वुमेन भी जनरेट हुआ जो लैकिंग था। वो अपने घर में सेविंग तो करते थे लेकिन घर में रखते थे, अभी वो फॉर्मलाइज हो गया इन द सेंस वी कैन से। और सर ने पूरा राइट पॉइंट बोला, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो पा रहा है जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी हो रहा है। और जो ये था कि ट्रांसपेरेंसी हो रहा है एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी भी मतलब बढ़ गया है, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है उसके अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी हो गया है उसमें। और जैसे बहुत सारा प्रोग्राम्स डायरेक्टली बेनिफिशियरी को ना जाके किसी और को मिल जाता था, वो अकाउंट रहता था
1: पहले,
2: हाँ वो बेनिफिशियरी रहता था। ये सब मतलब इराडिकेट हो गया है। बहुत सोशल सिक्योरिटी स्कीम बहुत स्मूथली काम कर पा रहा है ड्यू टू जनधन प्रधानमंत्री का जो अकाउंट खुला है।
1: जी जी। और जनधन से अगर सपोज कि मेरे पास कोई खाता नहीं है तो मुझे किसी योजना का लाभ लेने में भी हिचक होगी, जाने में भी हिचक होगी कि मैं उस योजना का लाभ कैसे लूं। लेकिन अगर आज मेरे पास खाता है और मुझे किसी योजना का लाभ चाहिए तो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस होगा जाने के लिए और
0: जी, जी, जी।
1: उसके लिए अप्लाई करने के लिए वो योजना
2: मतलब
1: लेने के लिए।
2: जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता था उसको बेनिफिट मिलता था
1: जी।
2: तो इस तरह से बहुत ज्यादा करप्शन के जो है वो
0: चांसेस घटे
2: जी। वो जनधन योजना एक्चुअली दैट इज जाम, मतलब आधार भी है उसमें और जनधन भी है और मोबाइल बैंकिंग भी है
1: जी।
2: तो आधार जो है ये कि नेशनल आइडेंटिटी हो गया है अभी
1: जी।
2: 144 करोड़ लोगों का अभी आइडेंटिटी है वो आधार के थ्रू। और मोबाइल बैंकिंग भी बहुत ज़्यादा हो गया है तो उससे लोगों को UPI पेमेंट ये सब बहुत डिजिटलाइज हो गया है, जिससे अभी वर्ल्ड में एक रिकॉग्निशन इंडिया को मिला है। एवरी मंथ 18 बिलियन UPI के थ्रू पेमेंट होता है इंडिया में
1: जी।
2: तो फास्टेस्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन।
0: इसमें तो ऐड करना चाहूँगा कोविड एरा में जब करेंसी में भी लोग डील करने में डरते थे तो उस समय इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि UPI से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। जब कैश लोग एक दूसरे को देने में डरते थे, कोविड एरा के बाद ऐसा UPI ने तहलका मचाया है कि आप चाहे वो एक नॉर्मल सब्जी वेंडर हो चाहे एक फ्रूट वेंडर हो, उनके यहाँ भी वो पूरा लगा रहता है। और आप और कहीं भी आज देखिए बहुत मतलब कहीं चेंज की प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, लोग डायरेक्ट UPI कर देते हैं और डायरेक्ट उनके खाते में वो। तो ये इट्स अ बिग बूम और इससे हर एंड में फायदा हुआ है, एक बिजनेस से लेके गवर्नमेंट हर जगह लोगों को फायदा हुआ है, हर जगह से आसानी हुई है और आपका सिक्योर है, आप जिसको पैसा भेज रहे इन द फ्लैश ऑफ द मिनट्स उसको पहुंच जा रहा है। तो इट्स रियली
1: और मैंने देखा है कि ये जो लूटपाट की घटनाएं होती थी खासकर पेट्रोल पंपों में
0: जी जी,
1: उन घटनाओं में कमी आई है,
0: उन घटनाओं में। बाकी घटनाओं में सपोज हम ये कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम एक बहुत कैश कैरी करते थे या आप ATM देखिए मैं बैंक के ATMs में लाइन कहीं नहीं रहती है तो वो है।
1: और इसका एक और फायदा है UPI से जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो खाते में जा रहे हैं और ये सरकार के पास हिसाब रहेगा कि किसने कितना कमाया और किसने कितना टैक्स दिया नहीं दिया
0: जी।
1: तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी को जो मॉनिटरी
2: इकोनॉमी बहुत ज्यादा फॉर्मलाइज्ड ट्रांसपेरेंट
1: जी जी। इसके अलावा सरकार ने किसानों के लिए भी कुछ कुछ योजनाएं लाई हैं जो उनके स्तर पर कारगर सिद्ध हो रही हैं, जैसे किसान सम्मान निधि योजना
0: जी। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि 6,000 रुपए एनुअली फार्मर्स को दिया जाता है तो ये अच्छी योजना है।

0: ताकि इस पे एक ये भी है कि कुछ अमाउंट अगर बढ़ा दिया जाए
1: जी
0: तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके साथ किसान मानधन योजना है, ये भी, ये मेरे को लगता है ये उससे थोड़ी बेटर है। 3,000 रुपये जो 60 ईयर्स से अबव है उनको,
1: जो प्रॉपर किसान है
0: उनको मिलता है,
1: तो पेंशन की राशि,
0: जी पेंशन की राशि टाइप से। तो इसको हम लोगों को थोड़ा सा और प्रमोट भी करना होगा, मेरे को लगता है इसका थोड़ा सा ऐड हो तो बहुत सारे किसान जो इसमें नहीं अवेल कर पा रहे वो भी करेंगे।
1: जी जी, क्योंकि किसान इन सुरक्षा बीमा योजनाओं से किसानों को जो एक कवर मिलता है उनके क्रॉप के अगेंस्ट में अगर डैमेज होते हैं किसी भी कारण से, और इस कवर के कारण किसान हिम्मत दिखा रहे हैं खेती करने की, तो उसका लाभ तो मिलेगा,
0: एकदम मिलेगा।
2: इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो और नेचुरल कैलामिटीज मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है मतलब फार्मर के लिए, तो फसल बीमा योजना भी एक सिग्निफिकेंट मतलब प्रोग्राम है जो फार्मर्स को हेल्प कर रहा है। ऑल दो सर ने ऑलरेडी बोला कि 6,000 अमाउंट थोड़ा कम है, लेकिन जहाँ पे इंडिया में इतना ज़्यादा आबादी है और बहुत लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करते हैं, कोई भी प्रोग्राम जो थोड़ा भी उनको अमाउंट दे रहा है उनके लिए बहुत यूजफुल।
1: जी जी जी, इसके अलावा एक और योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो 4% पर उनको
2: इंटरेस्ट मिलता
1: है, तो इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी संहिता जी।
2: उसमें जैसे फार्मर हैं जो जिनको अभी इनपुट कॉस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा हो गया है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, तो उनको एक समय पे लोन लेना पड़ता है, फिर उसके प्रोडक्शन के बाद वो लोग उसको सेल करके ये करते हैं, तो ये जो है इसमें उनको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलता है, जैसे कि 4%। बाकी अगर आप देखेंगे कोई भी बैंक में तो वो पर्सनल लोन तो बहुत हाई रहता है, बाकी लोन्स कोई भी लोन 7% से कम नहीं है, इस हिसाब से उनको ये बहुत यूजफुल रहता है ताकि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टाइमली कर पाए, इनपुट खरीद पाए।
1: और जैसे मैंने देखा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है, इस योजना से किसानों को ये लाभ हुआ है कि वो जो पहले के जो महाजन होते थे,
0: हाँ, जो पर्सनल लोन लेते थे,
1: हाँ, तो महाजनी सिस्टम से
0: छुटकारा मिला। इसमें एक और चीज बोलूंगा, पहले किसानों को लोन लेने में भी दिक्कत थी मैम, बैंक इतनी आसानी से लोन भी नहीं देते थे। अब ये है कि चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, पीएम किसान जनधन योजना हो, चाहे ये क्रेडिट कार्ड योजना, इससे अब एक क्या है ना कि किसान भी जाता है तो उसको बैंक को पता है कि अब देना पड़ेगा, वो इजी है सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं, अब किसान के लिए भी लोन लेना आसान हो गया है, सिंपल भाषा में हम ये बोलेंगे
1: जी।
0: और इसके अलावा मैम एक पॉइंट, क्योंकि मैं बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है पीएम सर की योजना में, फेसलेस टैक्स असेसमेंट। इस पे बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता है, मगर पहले गवर्नमेंट को था कि वो कौन सा बंदा आपका ऑडिट करेगा, कौन सा बंदा टैक्स, तो ये जो योजना है ना कि आपका ऑडिट कौन करेगा, आपका असेसमेंट कौन करेगा, ये थ्रू कंप्यूटराइज उनके पास जाता है, हो सकता है रांची का अफसर रांची में नहीं, वो कहीं दूसरे जगह से हो, तो इससे जो वो एक हैरेसमेंट था ना, मतलब ये छोटा स्टेप नहीं है, ये बहुत बड़ा है, वो एकदम हैरेसमेंट फ्री हो गया
1: जी।
0: आज कोई चाह के भी आपको तंग नहीं कर सकता,
1: बस आप क्योंकि अपने पेपर्स ठीक रखें।
0: हाँ, पेपर्स ठीक रखें, पेपर्स तो ठीक रखते ही होगा मैं।
1: जी। और ये सारी जो योजनाएं जिन पर अभी हमने बात की, वो सारी योजनाएं डिपेंड करती हैं डिजिटल साक्षरता पर। पहले हम कहते थे कि साक्षर हैं, वो राज्य साक्षर है, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि वो राज्य कितना डिजिटल साक्षर है डिजिटली, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी नवजोत जी।
0: देखिए, डिजिटल साक्षर से फायदा तो हमेशा ही पहुंचेगा ही, हर कि आदमी कैसे उसमें ये है, डिजिटल आज के डेट में मैम सभी है। अगर हम एक एक हम रोड क्रॉस करते हैं और हम एक देख रहे हैं कि वो डिजिटल साक्षरता और डिजिटल पेमेंट्स एक वेजिटेबल वेंडर्स भी रिसीव कर रहा है, उसको कुछ एक क्यूआर कोड चाहिए और क्यूआर कोड के थ्रू लोग पेमेंट करते हैं, उसमें एक अमाउंट रिसीव होता है तो मैसेज आता है और उसके थ्रू वो बैंक में उनके पेमेंट जमा हो रहा है। पहले कैश का उनको एक हेडेक था कि कैश अपने पास रखना है, कैश को कलेक्ट करना है, फिर उनके पास ये एक दिक्कत होती थी कि कैश को कैसे

0: आर्थिक रूप से लोगों को सशक्त कर रही है।
1: इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने कुछ और चीजें इम्प्लीमेंट की हैं, जैसे बहुत तरह के लाइसेंस थे मैम, लेबर लाइसेंस, फूड लाइसेंस, इसमें टाइम फ्रेम रहता था, तो गवर्नमेंट ने उसको क्या किया है, बहुत ईज कर दिया है। ईज इन द सेंस कि अब पहले वो हर साल होते थे, बहुत सारे लाइसेंस थे, तो इससे आज जो हम देख रहे हैं, हमारी ग्रोथ, हम लोग 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी क्यों है, तो बिजनेस में हमें करने में बहुत सारी दिक्कतें होती थी, इतने तरह के लाइसेंस थे, वो जैसे टैक्स के बहुत चीज़ें जीएसटी में इंक्लूड हो गई 18 तरह के, वैसे ही आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने और अलग अलग ये करके बहुत सारे जो लाइसेंस थे अलग अलग उसको उसका टाइम फ्रेम बढ़ाया है, तो इससे इससे मतलब बहुत हेल्प हुई। सपोज फूड लाइसेंस है, पहले उसमें क्या था कि ईयरली आपको हर साल उसमें वो लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, देखिए कोई भी लाइसेंस लेने की जटिलता तो है मैम, तो अब जब उसका टाइम फ्रेम बढ़ गया तो वो अपने आप ऑटोमेटिक घट गया। ऐसी लेबर लाइसेंस था, ऐसी कई प्रकार के लाइसेंस हैं जिनका टाइम फ्रेम गवर्नमेंट ने 1 साल से 5 साल कर दिया।
0: जी जी,
1: जैसे नाप तोल में वेट वाला है, तो उसमें भी बहुत चीजें सिंप्लीफाई की गई हैं, तो ये सब करने से बहुत चीजें में फायदा हुआ।
0: कई जगह सिंगल विंडो सिस्टम भी लागू हुए हैं।
1: हाँ, सिंगल विंडो सिस्टम में लागू हुआ है, उससे अपने आप में मतलब बहुत फायदा हुआ कि जो इरेस्पेक्टिव आपको अलग अलग हर जगह जाना पड़ता था, वो गवर्नमेंट की कोई भी योजना शुरू करना है कोई भी चीज, वो उसको एक ही जगह से कर सकते हैं। और मैं एक चीज, एक पॉइंट आकर्षित आपका करना चाहूंगा कि जो पिछले 12 वर्ष में जिस स्पीड से नेशनल हाईवेज बने हैं मैम, जिस स्पीड से रेलवे का अपग्रेडेशन हुआ है, जिस स्पीड से एयरपोर्ट्स बढ़े हैं, पोर्ट्स बढ़े हैं, मेट्रो हुआ है, तो बहुत सारे काम हो रहे हैं।
0: तो हमारे अपने श्रोताओं से यही आग्रह रहेगा कि वो अपने क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक योजनाओं के लिए सचेत रहें, सजग रहें और इन सारी योजनाओं का लाभ उठाएं और साथ मिलकर हम सब आगे बढ़ें। तो आज की परिचर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में आए श्री नवजोत अलंग, संयुक्त सचिव झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और डॉक्टर संहिता सुचारिता, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची। नवजोत जी, संहिता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद और आकाशवाणी का धन्यवाद हमें बुलाने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय था आर्थिक विकास। परिचर्चा में भाग ले रहे थे श्री नवजोत अलंग, संयुक्त सचिव झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और श्रीमती संहिता सुचारिता, सहायक प्राध्यापक इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही थी पूनम करकेट्टा। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे।
3: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्र ने झारखंड के 126 किलोमीटर से अधिक लंबे रांची महुलिया खंड पर सड़क निर्माण कार्य के लिए 214 करोड़ 79 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। रांची से सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस परियोजना को रांची और जमशेदपुर के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी राहत बताया। झारखंड हाईकोर्ट ने चर्चित तेतुलिया जमीन विवाद मामले की न्यायिक जांच की निगरानी से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि केवल आशंकाओं के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि एजेंसियों आरोपितों को लाभ पहुंचाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय के प्रोजेक्ट भवन से निषिद्ध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के लिए प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान का उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण को बढ़ावा देना है। मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत सरायकेला खरसावां समाहरणालय से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि नशा युवा पीढ़ी के लिए गंभीर चुनौती है और इसके खिलाफ सामूहिक प्रयास जरूरी है। खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र के तांबा जंगल से पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। मृतक मूल रूप से तपकरा के दिगरी गांव का निवासी था और वर्तमान में रनिया में किराए के मकान में रहकर वाहन मैकेनिक का काम करता था।

था। प्रारंभिक जांच में तोरपा कॉलेज के समीप स्थित जमीन को लेकर विवाद की बात सामने आई है। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम सुहाना हो गया है। पिछले 24 घंटों में रांची के कांके क्षेत्र में सर्वाधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 19 जून तक राज्य के कई जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज गर्जन की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनिए कार्यक्रम आओ साथ चलें। आज इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे एक चर्चा, विकास की राह पर बढ़ते गांव, एक भेंट वार्ता होगी, आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना और सरकारी योजनाओं का योगदान। भेंट वार्ताकार हैं सुजीत कुमार नायक, भेंट करता है सिंधु मिश्रा, कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की और प्रस्तुति स्वर सिंधु मिश्रा का।

श्रोताओं, आज कार्यक्रम आओ साथ चलें की एक और कड़ी के साथ मैं सिंधु मिश्रा आप सबसे मुखातिब हूँ। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। आज कार्यक्रम के आरंभ में हम आपसे चर्चा करेंगे विकास की राह पर बढ़ते गांव के विषय में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत को गांव का देश कहा जाता है, आज भी देश की एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। गांव केवल कृषि उत्पादन के केंद्र नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मूल्यों के संवाहक भी हैं। किसी भी राष्ट्र का वास्तविक विकास तभी संभव है जब उसके गांव विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त हों। श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं, जिनके परिणाम स्वरूप गांवों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, डिजिटल तकनीक और आजीविका के क्षेत्र में हुए सुधारों ने ग्रामीण जीवन को नई दिशा प्रदान की है। श्रोताओं, ग्रामीण विकास का बहुत बड़ा महत्व है। इसका अर्थ केवल भौतिक सुविधाओं का विस्तार नहीं है बल्कि लोगों के जीवन में और उसके स्तर में समग्र सुधार लाना है। जब गांवों में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तब ग्रामीण समाज आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनता है। इससे शहरों की ओर पलायन कम होता है और साथ ही स्थानीय स्तर पर विकास की नई संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। अब अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें। इसलिए गांवों का विकास देश की आर्थिक प्रगति का आधार माना जाता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी ग्रामीण क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रोताओं, पिछले वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हजारों गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। बेहतर सड़क संपर्क से किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिली है और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति देखी जा सकती है। अधिकांश गांवों में बिजली की उपलब्धता बढ़ी है जिससे घरेलू जीवन के साथ साथ छोटे उद्योगों और व्यवसायों को भी बढ़ावा मिला है। सौर ऊर्जा जैसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है। श्रोताओं, पेयजल की उपलब्धता

0: सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से घर घर जल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छ पेयजल से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आई है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और अब कार्यक्रम में हम बातें करेंगे कृषि की। कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों, सिंचाई सुविधाओं और कृषि यंत्रों के उपयोग ने खेती को अधिक उत्पादक बनाया है। किसान अब मौसम संबंधी जानकारी, बाजार भाव और कृषि सलाह डिजिटल माध्यमों से प्राप्त कर रहे हैं। जैविक खेती, बहुफसली खेती, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों की आय के स्रोत भी बढ़ रहे हैं। कृषि उत्पादों में प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। श्रोताओं, किसान उत्पादक संगठन और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किसानों को सामूहिक रूप से कार्य करने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनकी बाजार तक पहुंच और सौदेबाजी की क्षमता मजबूत हुई है। ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। स्वयं सहायता समूहों ने लाखों ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। छोटे छोटे बचत समूहों के माध्यम से महिलाएं आज स्वरोजगार, लघु उद्योग, हस्तशिल्प, पशुपालन और अन्य आय वर्धक गतिविधियों से जुड़ रही हैं। महिला सशक्तिकरण के कारण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। श्रोताओं, आपसे बातें करने के लिए और भी विषय हमारे पास हैं, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम विशेष रूप से आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे और वो है अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर विकास कार्य। गांव की छवि बदलने में प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, उन पर आइए आपको महत्वपूर्ण जानकारी करवाते हैं। और आज इसके लिए हमारे कार्यक्रम में हैं श्री सुजीत कुमार नायक, जो राहे प्रखंड के ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर हैं। आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं इस प्रखंड के विकास योजनाओं पर।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। नमस्कार
2: जी। नमस्कार मैम।
1: मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी श्रोता अभी आपको सुन रहे हैं, आप उनके समक्ष अपना परिचय स्वयं दें।
2: जी जरूर मैडम। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि मैम आपके कारण आज मैं आकाशवाणी के लिए भी अपना एक आवाज दे पा रहा हूँ या इस पटल पे मैं आ पाया हूँ, जहाँ पर कुछ श्रोता बाकी लोग भी मुझको आवाज सुनकर जान पाएंगे। मैं आपका आभारी हूँ। और मेरा नाम सुजीत सागर नायक हुआ। मैं वर्तमान में राहे प्रखंड अंतर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और मुझको अतिरिक्त प्रभार में सिल्ली प्रखंड भी आवंटित किया गया है। मैट का एग्जाम लिखा था अपने पिताजी के दबाव से, तो मैट क्वालिफाई करने के बाद मैं बीआईटी मेसरा से मैनेजमेंट का पढ़ाई पूरा किया और उसके बाद हमारी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी पे लगी थी, एक्सपोर्टिंग डिवीजन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिंग हाउस, फिर वहां से फिर रिजाइन करके कुछ पारिवारिक समस्या के कारण आना पड़ा, क्योंकि मैं इकलौता हूँ और मेरे बड़े भैया और छोटा भाई एक्सपायर कर चुके थे, मम्मी हार्ट की पेशेंट थी और पापा हाईकोर्ट में जॉब में थे, तो बाहर ज्यादा मतलब मेरा रहना इन लोगों को खलता था, तो फिर मैं छोड़कर आया और इस विभाग में फिर मैं 2007 का जो कमिश्नरी से बहाली निकली उसमें अपीयर हुआ, तो ऊपर वाले की कृपा से और आप लोगों की दुआ समझिए मैं प्रखंड में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पे बहाल हुआ और उसके बाद से मैं लगातार विभिन्न प्रखंडों में स्थानांतरित भी हुआ और अंततः अभी वर्तमान में यहाँ पर कार्यरत हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। और आपके परिचय को सुन के लग रहा है सुजीत जी कि आप बेहद संघर्षशील रहे और उसके बाद जो आपने इस पद को पाया है, आप इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं?
2: मैडम अभी तो मैं सर्वप्रथम शुक्रिया अदा करूंगा ऊपर वाले का कि मुझको ऐसे जगह पे मतलब सेवा करने का मौका मिला है जहाँ पे ग्राउंड लेवल से लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को समझने का, उनके समस्याओं को समझने का और उनको किस तरह से मैं ऊपर लेवल तक ले जा सकता हूँ, उनकी आर्थिक स्थिति को, उनके सामाजिक स्थिति को समझते हुए, तो वो समझने का मौका मिला। और भरसक मैं प्रयास करता हूँ कि ग्रामीण जनताओं का जो भी समस्या है उनको मैं सुनूं और उनको मैं अवगत कराऊं कि सरकार आपके लिए किस हद तक, मतलब आपकी समस्याओं को, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयासरत है। और मैं जस्ट एक माध्यम हूँ उन ग्रामीण जनता और सरकार के बीच का, कि सरकार के द्वारा जो प्रदत्त सेवाएं हैं उनको मैं निशुल्क अपने ग्रामीण जनताओं तक पहुंचा सकूं, उनको लाभ दे सकूं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार सकूं, जिससे कि हमारा एक गांव, हमारा एक पंचायत, हमारा प्रखंड से होता हुआ हमारा राज्य और हमारा देश विकासशील से विकसित की ओर पहुंच सके। जी
1: बहुत बड़ी बात आपने कही। और
2: मैम,
1: सुजीत जी, जहाँ तक प्रश्न है एक गांव का, एक प्रखंड का विकसित होने की बात है,
2: जी
1: तो
2: मैडम,
1: विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं लागू तो जरूर की गई हैं, लेकिन जो धरातल पर उतारने की बात आती है तो उसमें आप जैसे अधिकारियों के सहयोग की जरूरत होती है, और साथ ही साथ जो गांव के ग्रामीण भाई बहन हैं और उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं, इन लोगों के सहयोग की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो किस तरह का सहयोग आपको ऐसे ग्राम वासियों से मिलता है?
2: जी मैडम, आपका प्रश्न बिल्कुल ही जड़ तक पहुंच गया है कि जो सो जहाँ से शुरुआत होती है लाभ देने की और लाभ लेने की, तो
1: हाँ बिल्कुल।
2: ये बहुत अच्छी बात आप पूछे हैं। एक्चुअली मैम, होता क्या है कि ग्रामीण जनता बहुत जगह जागरूक नहीं थे, और जो जागरूक हैं तो उनकी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक स्थिति ऐसी रहती है कि जागरूक होने के बावजूद वो सेवा सरकार की ओर से जो लाभ मिल रही है वो लेने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे समय में हम सभी का प्राथमिक दायित्व रहता है कि हम लोग उन लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, उन लोगों को अपने परिवार के बंधन से, अपने घर के मजबूरियों से उठाकर उस पटल, प्रखंड और पंचायत तक लाकर उनको जागरूक करते हुए उनको लाभ दें, ताकि उस लाभ को जानने के बाद स्वतः भी वो जागृत हो जाएंगे और अगल बगल के जो ऐसे वंचित परिवार है वो भी जागृत होंगे और उन तक भी लाभ पहुंचाया जा सकेगा। प्रथम तो होता क्या है कि आप जैसा कि जानते हैं, ना राज्यसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा।
1: बिल्कुल।
2: तो हम लोग प्रयास करते हैं कि ग्राम सभा तक प्रत्येक व्यक्ति पहुंचे, क्योंकि कोई भी बात अगर ग्राम सभा से होकर हमारे तक नहीं आती है तो हम लोग उसको, मतलब किसी योजना के लाभ में या किसी बात के लिए, उस ग्राम सभा के बिना अनुशंसा के कुछ भी करने से हम लोग, मतलब अपना एक दायरा सीमित हो जाता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि ग्राम सभा का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो और ग्राम सभा में ग्रामीण जनता, माँ बहन, भाई बहन जो भी हैं वो पहुंचे और पहुंचकर अपनी बातों को रखें, और जो वंचित परिवार हैं वो अगर ऊपर तक नहीं दौड़ पाते हैं, अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, तो अपने गांव में तो बात को रख पाएंगे। तो हम लोग ये
1: बिल्कुल।
2: प्रयास करते हैं कि वो वंचित परिवार किसी भी समय अपना समय निकाल के ग्राम सभा तक पहुंचे, जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो लाभ के लिए अपना नाम को दर्ज कराएं ग्राम सभा की पंजिका में, और ताकि वो ग्राम सभा की पंजिका फिर ग्राम प्रधान, मुखिया से होते हुए प्रखंड तक आए और संबंधित विभाग से उस व्यक्ति को लाभ से आच्छादित किया जा सके। तो
1: बिल्कुल
2: हम
1: सही
2: लोगों
1: बात
2: का
1: है।
2: बिल्कुल यही प्रयास रहता है कि ग्राम सभा तक सभी लोग पहुंचे।
1: एक बात और देखी जाती है, जहाँ तक विशेषाधिकार की बात है,
2: जी
1: यानी जिस पंचायत, जिस प्रखंड की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, उन जगह पर आज की स्थिति में, आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो योजनाएं अभी कार्यान्वित की जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ तक ये सफलतापूर्वक धरातल पर उतर पाया है?
2: जी बिल्कुल मैडम, शुरुआत में तो कहा जाएगा कि जो सो मनरेगा 2005-06 से शुरुआत जो हुई थी, उसके बाद आप देखेंगे कि आज ग्रामीण परिवेश का रीढ़ बनकर रह गया है। जैसे एक एक मैं ज्वलंत उदाहरण दूंगा, 2020-21 में जब कोरोना से पीड़ित थे लोग, बहुतों का प्राइवेट नौकरी छूट गया, बहुत
1: बिल्कुल
2: मजदूर और ये नीचे स्तर के जो लोग थे, जो किसी ईंट भट्टे में या फिर कहीं और जो काम करते थे या फिर प्राइवेट जॉब में जो भी अच्छी कंपनी में थे, उन लोगों को भी जो सो मजबूरी वश या किसी कारणवश जो सो वहाँ सुविधा नहीं प्राप्त होने लगी, तो उस

0: महामारी के समय भी लोग अपने गांव, अपने जिला, अपने घर तक पहुंचे, और जब वहां पे पहुंचे तो उनके पास खाने के लिए जब प्रॉब्लम आया तो उस समय भी मनरेगा, वैसी स्थिति में भी सरकारी योजनाएं खड़ी रही वहां पे,
1: बिल्कुल
0: उन लोगों को मतलब स्वागत के लिए, उन लोगों को लाभ देने के लिए, ताकि वो बेसहारा बेघर ना हो। उस
1: बिल्कुल
0: स्थिति में भी जब हुआ तो समझ सकते हैं कि विकट से विकट परिस्थिति हो या फिर जब सामान्य जनजीवन हो, दोनों स्थिति में सरकार की योजनाएं ग्रामीण जनता को हमेशा सहारा देने की काम कर रही है। वर्तमान में मैं बताना चाहूंगा कि कुछ वर्गीकृत किया गया है योजनाओं को, जैसे नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो हो खेल योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना। इन वर्गीकृत रूप से योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर किया जाता है। जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत आप देख रहे होंगे हर एक क्षेत्र में, गांव में, टोला में बड़ा बड़ा पैच को चुना जा रहा है, या फिर ऐसे जगह को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर कि पहले खेती नहीं हुआ करता था, पथरीली जमीन थी, वैसे जगह पे कुछ साइंटिफिक तरीके से आम के पौधा, मिश्रित फलदार पौधा, लीची, पपीता, अमरूद, ऐसे ऐसे फल वगैरह का जो खेती किया जा रहा है वहां पे। तो आज वहां पे स्थिति देखिए, जो कभी बंजर भूमि हुआ करती थी, आज वहां पे फल और पौधे वृक्ष लहलहा रहे हैं। तो
1: हाँ,
0: कहीं ना कहीं ये दो तरफा काम कर रहा है।
1: सही बात
0: पहला,
1: है।
0: तो जो व्यक्ति वो वंचित जो था भूमि, वहां पे कुछ फल उग रहे हैं, उस फल से ग्रामीण जनता को लाभ हो रही है, उनका इनकम बढ़ रहा है। दूसरी बात, जमीन का जो कटाव हो रहा था वो कटाव भी रुक रहा है, सॉइल कंजर्वेशन का बहुत बड़ा इसमें लाभ हो रहा है। फिर एक चीज है कि जो मौसम में बहुत सारा बदलाव आप देख रहे होंगे, कुछ कुछ वर्षों तक हम लोग देख रहे थे कि बचपन में देखते थे कि एक ही मौसम में जाड़ा गर्मी बरसात तीनों दिखाई पड़ता था, लेकिन
1: बिल्कुल
0: कई वर्षों तक जो वो दिखने के लिए हम लोग लालायित थे, जो नहीं दिख पा रहा था। अक्सर होता क्या था कि अगर 19 जून से 15 जून से मानसून आ रहा है हमारे यहाँ, हमेशा से जो परंपरा था आने का, तो वो दिखाई पड़ता था कि जुलाई में फिर आती थी मानसून, और उसके बाद जो ये क्या था, ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों था, बस यही वृक्ष का कटाव से, डिफोरेस्टेशन जो बोलते हैं उसके कारण। लेकिन सरकार की एक योजना जो चली, बिरसा हरित ग्राम योजना, इसके इसके आधार पर जो सो बहुत तायत संख्या में पौधा रोपण किया गया, और वो भी
1: हाँ
0: फलदार पौधों का रोपण किएगा, जिसको 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, तो कहीं जो सो 5-7 लाभों को मिला के 5-7 एकड़ में एक साथ किया गया। आज देखिए कि बाहर से जो आम का हम लोग इंतजार करते थे, आज आम्रपाली से लेके लंगड़ा आम, दशहरी आम, चौसा आम, ये सब हमारे लोकल एरिया में मिल रहे हैं। आप खूंटी में इसका शुरुआत किया गया था, जाकर देखिएगा अभी, तो हमारी दीदी लोग उसमें जुड़ी हुई हैं बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत। उसी तरह रांची के बहुत सारे रूरल एरिया हैं जिसमें भी दीदी और बागवानी मित्र सभी जुड़े हुए हैं, और हम सभी मिलकर जो साथ उनको दे रहे हैं, समय समय पर पौधा देना, उन पे कीटनाशक देना, उर्वरक उर्वरक देना, ये सब जो काम हम लोग कर रहे हैं, फिर ऑफ कोर्स सरकार की तरफ से, तो सबको एक उत्साहित तरीके से लोग काम कर रहे हैं लोग। उसमें क्या है कि अभी कुछ दिन बाद हम लोग एक आम उत्सव करने वाले हैं, जैसे प्रत्येक प्रखंड में। उसमें क्या होगा कि अभी तक जितने फल का उत्पादन हुआ है, मतलब लगे हुए हैं फल वृक्षों में आम के, तो उसके लिए हम लोग एक वेंडर का सिलेक्शन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार करके बुला रहे हैं उनको, और गांव से उस बागान से डायरेक्ट वो उठाव करके अपना जो डीलर को देंगे या फिर रिटेलर को देंगे, वो वहां से करेंगे। तो किसान को इसमें क्या चीज फायदा हो रहा है कि उनको 3 महीने का तो रोजगार मिल ही जा रहा है अपने ही बागवानी में, प्लस उनको जो सो क्या है कि ये जो फल वो खरीद के कभी खाते थे, या तो खरीद के खाने के भी जिनके पास पैसा का अभाव हुआ करता था, वो आज बाकी लोगों को भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, है ना, और उसमें उनका इनकम भी हो रहा है। इससे क्या है कि एक पोषक तत्व की भी प्राप्ति हो रही है उनको, विटामिन को भी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जो फल उत्पादन कर रहे हैं वहां पे मिश्रित खेती भी कर रहे हैं लोग। मिश्रित खेती मतलब 15 फीट की दूरी में एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी जो है 15 फीट की दूरी है, वैज्ञानिक तरीके से किया गया है, तो उसके बीच में जो जगह बच रहा है उसमें करेला कर रहे हैं लोग, भिंडी कर रहे हैं लोग, राहर कर रहे हैं, फिर आपका ये कभी कभी छोटा छोटा शकरकंद वगैरह जब भी कर रहे हैं,
1: हाँ
0: जिससे कि पेड़ से ऊपर ना जाए, पेड़ में भी लता ना जाए, जमीन के नीचे ही वो सब रहे,
1: हाँ
0: और उससे
1: हाँ
0: इन लोगों को साग सब्जी का भी उत्पादन हो रहा है।
1: यानी सुजीत जी, कुल मिला के अगर कहा जाए
0: जी
1: कि हरित ग्राम योजना
0: जी
1: हमारे ग्रामीण भाई बहनों के लिए बेहद लाभकारी योजना है,
0: बेहद
1: और
0: लाभकारी
1: देखा जाए तो ये स्वास्थ्य से समृद्धि की ओर ये ले जा
0: जी,
1: रहा है।
0: और वायुमंडल को भी सुधार रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही
0: जी
1: बात है। एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में जब विजिट करने जाते हैं, तो
0: जी
1: वहाँ के युवाओं की क्या स्थिति है? युवा किस प्रकार रोजगार से जुड़े हुए हैं, या फिर
0: जी
1: अगर
0: हाँ
1: बेरोजगारी है तो फिर अन्यत्र भटकने के लिए भी युवाओं में देखा जाता है कि शहरी चकाचौंध के कारण वो अन्यत्र भी भटक जाते हैं। तो
0: जी
1: ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे, और अपने पंचायत में युवाओं की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी बताएं।
0: जी मैडम, एक बेहद ही मतलब किसी भी अच्छाई और बुराई के, अगर अच्छाई बोलेंगे तो उसका भी दो पहलू होता है, बुराई कहेंगे उसका भी दो पहलू होता है, लेकिन
1: बिल्कुल
0: अभी अभी जो वर्तमान परिवेश में मैं कहना चाहूंगा कि कुछ युवा ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम मेट्रोज में काम कर रहे हैं, उनको
1: हाँ
0: लगता है कि मेट्रो में जाएंगे कुछ एक दो के चक्कर में पड़ के बाकी लोगों को भी वो मोटिवेट करके, जैसे खेती बाड़ी से वो निपट गए या और कार्य से निपट गए, तो वो क्या करते हैं, शौकिया तौर पे भी ईंट भट्टे में या किसी कंपनी में, फैब्रिक कंपनी हुआ या कुछ और भी कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनी हुआ, वो साउथ की ओर जाते हैं पूरा समूह में बना के, लड़के लड़कियां,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, तो वो लोग एक आउटिंग का मजा लेने के लिए ही जाते हैं, समझिए, अन्यथा आजकल गांव में तो सालों भर के लिए लोगों को काम मिल रहा है। और सबसे बड़ी एक विडंबना बोलिए या क्या बोलिए, अब तो मैं भी कुछ नहीं कह पाऊंगा इसमें, कि सरकार हर तबके के लोगों को हर तरह की फैसिलिटी सालों भर दे रही है। जैसे आप
1: बिल्कुल
0: देखिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो है, उसमें 5 लाख तक की जो है सो लोगों को ये कोई भी बीमारी होने से सरकार निःशुल्क मुफ्त इलाज हो रहा है सरकार की ओर से, फिर जो है सो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, फिर जो है सो राशन जो सबको मिल रहा है, तो ये, और ऊपर से जो है सो कि शिक्षा नीति जो है, जिसमें अगर कोई बच्चा एक ड्रॉप आउट हुआ तो BDO सर से लेके पूरे जिला के महकमे तक हल्ला हो जाता है कि जो सो बच्चा मैट्रिक पास करने के बाद ड्रॉप आउट क्यों किया, क्यों आगे
1: हाँ
0: पढ़ाई नहीं कर
1: हाँ
0: रहा है, तो
1: बिल्कुल
0: उसके
1: हाँ सही
0: पीछे सभी लोग, पूरी कायनात पड़ जाती है, सरकारी तंत्र, कि बच्चा
1: बात
0: तुम जाके एडमिशन लो, तुमको स्टाइपेंड देंगे, तुमको ये देंगे, तुमको साइकिल देंगे, चलो पढ़ाई करो। तो ऐसा स्थिति में भी अगर युवा या युवती जो सो विमुख होंगे तो ये तो दुर्भाग्य कहा जाएगा, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: सरकार हर तरह की सुविधा दे रही है, बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि सरकार राशन पानी सब चीज घर बैठे मिल रहा है, किसी युवक की माँ को जो सो वृद्धा पेंशन मिल रहा है, तो किसी को विधवा पेंशन मिल रहा है, उसको राशन तो हर महीने मिल ही रही है ना। फिर स्वास्थ्य के लिए आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए 5 लाख का बीमा योजना है, सरकार ही दे रही है, तो इन लोगों में कहीं ना कहीं एक विमुखता आ रहा है काम के प्रति। वो लोग
1: हाँ
0: क्या
1: बिल्कुल
0: करते हैं, ग्रुप में जो सो बैठ जाते हैं कहीं पे और जुआ खेलने लगते हैं, लेकिन गांव की महिला है सो बच्चों के भविष्य के लिए, अपना परिवार के भविष्य के लिए वो सालों भर काम करती है।
1: आप, हम और सभी जानते हैं कि
0: जी
1: हमारा झारखंड राज्य जो है वो एक
0: जी
1: नक्सल प्रभावित राज्य भी
0: जी
1: माना जाता है,
0: जी
1: और इसमें देखा जाता है कि हमारी युवक और युवतियां या किशोर, जो महिला और पुरुष वर्ग हैं, वो या तो कहा जाए कि जागरूकता की कमी होने के कारण, अशिक्षा की वजह से, या फिर गरीबी की वजह से, और युवाओं में रोजगार की कमी होने की वजह से वो इन संगठनों में जाकर शामिल हो जाते हैं और गांव से, परिवार से दूर चले जाते हैं। तो
0: जी
1: ऐसे लोगों को आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो मुख्य धारा से जुड़कर रहें, गांव में रहें और विकास योजनाओं को सफल बनाने में अपना योगदान करें?
0: जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है, और ये प्रश्न का जवाब भी पता नहीं मैं कितना सटीक दे पाऊंगा, वो तो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन फिर भी जो गांव से जुड़े होने के कारण मैं जान रहा हूं कि बहुत बार पहले पहले जो हुआ करता था, नक्सली में जो शामिल होते थे वो एक्चुअली होते थे कि किसी के सताए हुए, किसी के दबाए हुए होते थे, तो
1: हाँ
0: वो
1: बिल्कुल
0: अपना पनाह ढूंढने के चक्कर में उनसे पहुंच जाते थे, लेकिन आजकल स्थिति बदल चुकी है। आजकल इसलिए बदल चुकी है कि अगर किसी पीड़ित पीड़ित व्यक्ति को सही समय पे इलाज नहीं मिला तो पूरा जिला के प्रशासनिक तंत्र हिल जाता है कि नहीं उसको जो सो बीमार है और उसको सुविधा क्यों नहीं मिला। तो इसलिए सारे लोग जागरूक कर जानते हैं कि जो सो वो सही जगह पे किसी सरकारी अस्पताल में पहुंचेंगे या फिर डीसी सर के नॉलेज में आ जाएगा कि उनका कोई देखभाल नहीं किया। तो जानते
1: बिल्कुल
0: हैं कितने सरकारी लोगों का नौकरी चला जाएगा या सस्पेंड हो जाएंगे। तो
1: बिल्कुल
0: सारे लोग जगे हुए हैं, बस जागने की जरूरत है हमारे युवाओं को जो गांव में के परिवेश में है। उनको हर तरह की सुविधा दी जा रही है सरकार की ओर से, पूरे प्रशासन की ओर से। इसीलिए मैं उन लोगों को कहूंगा कि पढ़ाई के लिए भी जब सरकार तत्पर है आपको पढ़ाने के लिए, उन लोगों को
1: बिल्कुल
0: सबको पूरी कायनात है उनके साथ, तो उनको हमेशा समाज के मुख्य धारा में रहना चाहिए, हमेशा कानून के साथ रहना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो आजकल इतना सारा तंत्र मतलब जागरूक है कि उसके साथ गलत होने नहीं देना चाहता है। जैसे विधिक सेवा से आप झालसा डालसा है, फिर आप देखिए कि जो सो पीएलबी प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक पंचायत में पीएलबी है, पारा लीगल वॉलंटियर्स, मतलब कहाँ पे किसके साथ अन्याय हो रहा है उसको देखने के लिए कानून की भी आंख चारों तरफ है, प्रशासन की आंख है। आप देखिए कहीं पर भी किसी के साथ कुछ दिक्कत हुआ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फिर जो तो महिला समिति की दीदी लोग जागरूक हैं, फिर आजकल तो एक छोटा सा भी शिकायत प्रखंड से जिला तक ना जाए सोच के वीडियो सीओ से लेके पूरे प्रशासनिक तंत्र हमेशा चौकन्ना रहते हैं। तो मैं कहीं भी नहीं सोच सकता हूँ कि कहीं से कोई कमी हो रही है, बस युवाओं को खुद को जागने की जरूरत है और कहीं पे कोई दिक्कत है तो किसी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े। हमेशा
1: बिल्कुल
0: प्रखंड और पंचायत कार्यालय हमेशा खुला रहता है, अपनी समस्याओं को आकर वहां पे रखें, निश्चित ही उनको सही दिशा दिखाया जाएगा, निश्चित ही उनको लाभ पहुंचाया जाएगा। कोई लाभ से
1: बिल्कुल
0: वंचित नहीं रहेंगे, जो लाभ से वंचित रहेंगे तो हम लोगों की नाकामी होगी अगर हम तक पहुंच रहे और नहीं दे पाए तो। और हम लोग कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करते हैं पूरे तंत्र की जो तो किसी को हम लोग किसी तरह से वंचित रख पाए।
1: बिल्कुल सही बात है। और मेरी जहाँ तक समझ है कि अगर हमारी सरकार आपके द्वार तक अगर पहुंच रही है और आपको विभिन्न योजनाओं के तहत आपको लाभ पहुंचाने का काम कर
0: जी
1: रही है,
0: बिल्कुल
1: तो हमारी जागरूकता भी अपेक्षित है और सरकार ये
0: जी
1: भी चाहेगी कि हम इसमें उनका पूरा पूरा सहयोग करें। सुजीत
0: जी बिल्कुल। अभी
1: जी
0: सरकार सरकार आपके द्वार जो बोले मैडम, उस विषय पर भी मैं कहना चाहूंगा कि
1: बिल्कुल हाँ
0: अभी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी सरकार चलाई,
1: हाँ
0: जिसमें
1: हाँ
0: क्या होता था प्रत्येक पंचायत में सरकार की पूरी टीम पूरे अपने मशीनरी के साथ पहुंचती थी और वो तिथि पहले से घोषित हुआ करता था डीसी स्तर से, डीसी सर के स्तर से, और वो फिर प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को प्रखंड से जो सो सूचना दी जाती थी, पत्र दिया जाता था इतने तारीख को आपके पंचायत में जनता दरबार लगेगा। ग्रामीण परिवेश के लोग उसको जनता दरबार कहते हैं, लेकिन उसका नाम था आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। मतलब
1: बिल्कुल
0: जो वंचित परिवार हैं किसी भी योजना का लाभ लेने से तो उनके लिए हम लोग पूरे उनके पंचायत तक पहुंचते थे, और वो भी 1 महीना पहले से प्रचार प्रसार करने के बाद, ताकि जो वंचित है वो अपने प्रखंड तक नहीं आ पाते हैं तो पंचायत भवन में आएंगे और वहां पे हैंड टू हैंड जो समस्या है उसको लिखाएंगे, इनरोल कराएंगे और वहीं पे त्वरित उनका निष्पादन होता है त्वरित, और उसका ऑनलाइन एंट्री भी होता है। ऑनलाइन एंट्री को हमारे माननीय मुख्यमंत्री राज्य स्तर पे देखते हैं, उनके विभाग के सचिव देखते हैं, फिर जिला स्तर पे हमारे डीसी सर देखते हैं। मतलब हर विभाग का अपना दायित्व तो बटा हुआ है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार में भी बहुत लोग आके लाभान्वित हुए हैं।
1: बहुत बड़ी बात है। और सुजीत जी, मैं समझती हूँ कि जितने भी श्रोता अभी कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुन रहे हैं,
0: जी मैडम
1: आपने जितनी भी बातें आज कार्यक्रम में रखी, जितनी भी योजनाओं के बारे में बताया, विशेषकर मैं बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में जो आपने बताया, काफी विस्तार से उसकी जानकारी दी, बेहद लाभकारी योजना है। और
0: जी मैडम
1: हर प्रखंड में एक ऐसा कार्यालय बना हुआ है जहां लोग इससे संबंधित जानकारी स्वयं जाकर ले सकते हैं, तो
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं को आपकी बातों से लाभ जरूर पहुंचेगा। सुजीत
0: जी
1: जी, आज
0: बिल्कुल
1: कार्यक्रम में आप शामिल हुए, अपने विचारों से हमें अवगत कराया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी धन्यवाद, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ मैडम।
2: बेहद महत्वपूर्ण बातचीत थी और इस बातचीत के माध्यम से हमने जानकारी हासिल किया कि प्रखंड स्तर पर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ किस तरह ग्रामवासियों तक पहुंच रहा है। श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आओ साथ चलें। इस कार्यक्रम का हमेशा यही उद्देश्य होता है कि महत्वपूर्ण और विभिन्न जानकारियों के साथ हम आपको अवगत कराएं और इन जानकारियों को हासिल कर आप तक लाभ पहुंच सके। श्रोता मित्रों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को आज दें विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चलें। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण कुछ इस प्रकार है। आपसे थोड़ी ही देर में यानी 4:35 से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सांस सरगम। शाम 5 बजे होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 5:02 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर होगा कार्यक्रम श्रमिक लोक। शाम 6 बजे आप फिर सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। छः 6:30 पर होगा कार्यक्रम हमारी दुनिया। शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर होगा कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा आज उराव भाषा में। चर्चा का विषय होगा परिश्रम से ही सफलता संभव एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 7:45 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कुछ फिल्म संगीत एवं 8:10 पर होगा एक विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से।

रात्रि 10 बजे हम फिर लौटेंगे कार्यक्रम सुनहरी यादें के साथ। 10:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत, कलाकार होंगे पंडित विश्वमोहन भट्ट। 11 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से एवं 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 11:10 पर हमारी मीडियम वेव की ये सभा समाप्त हो जाएगी। ये था आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। अगला कार्यक्रम सांस सरगम बस थोड़ी ही देर में।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ सरगम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म आशिकी 2 से।

आशिकी टू से आप सुन रहे थे ये प्यारा संगीत तुलसी कुमार एवं अरिजीत सिंह के स्वरों में, शब्द रचना इरशाद कामिल की एवं संगीत जीत गांगुली का। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म एजेंट विनोद से।

अरिजीत सिंह एवं जॉय के सुर में आप सुन रहे थे ये प्यारा संगीत फिल्म एजेंट विनोद से, शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य की एवं संगीत प्रीतम चक्रवर्ती का। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से।

आतिफ असलम के स्वर में आप सुन रहे थे ये गीत अजब प्रेम की एक अजब कहानी से, संगीत प्रीतम का, शब्द रचना इरशाद कामिल की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म बंटी और बबली से।

0: बंटी और बबली फिल्म से आप सुन रहे थे ये प्यारा संगीत सोनू निगम एवं महालक्ष्मी अय्यर की स्वर में, शब्द रचना गुलजार की एवं संगीत शंकर एहसान लॉय का। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सांस सरगम अब यहीं संपन्न होता है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक प्रदीप यादव और अजय शर्मा ने शिष्टाचार मुलाकात की। रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य में कथित त्रुटियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता मैपिंग का स्तर कम है। जामताड़ा के उदलबनी स्थित वृद्धाश्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकृष्ण ने बुजुर्गों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का आश्वासन दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने बताया कि शिविर में स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच, आधार कार्ड निर्माण किया गया। लोहरदगा समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने 25 जून तक अनुदानित बीजों का 100% वितरण सुनिश्चित करने, लंबित आवेदनों के शीघ्र सत्यापन और केसीसी लक्ष्य प्राप्ति में तेजी लाने के निर्देश दिए। पलामू जिले के पांडू थाना क्षेत्र में पूर्व माओवादी जगनारायण यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी उमेश सिंह को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य आरोपी फरार हैं। जांच में सामने आया है कि शराब पीने के दौरान हुए विवाद और पुरानी रंजिश के कारण आरोपियों ने मारपीट के बाद पत्थर से कूच कर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पांच और उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारे कार्यक्रम युववाणी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे।
1: तो दोस्तों, बता दें आपको कि आपके इंतजार की घड़ी अब हो चुकी है खत्म, तो आ जाइए रेडियो के करीब, क्योंकि आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी लेकर हाजिर हैं। आप सबके अपनी दोस्त मैं खुशी
0: और मैं अस्मित,
1: और आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं खूब सारी जानकारियाँ और साथ ही साथ प्यारे प्यारे गाने भी। तो चलिए दोस्तों, अब आप सभी को और इंतजार न करवाते हुए बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर और साझा करते हैं ढेर सारी जानकारियाँ।
1: दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों ने हमें चलना सिखाया, जीवन के अनुभव दिए और हर मुश्किल में हमारा साथ दिया, उन्हें अपने जीवन के इस पड़ाव में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती होगी? शायद सम्मान, अपनापन और ये एहसास कि वे आज भी हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट हैं।
0: इसी सोच के साथ हर साल 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बुजुर्गों के साथ होने वाली अपेक्षा, उपेक्षा, दुर्व्यवहार और शोषण जैसी समस्याओं को समझना और उनके प्रति जागरूक होना कितना जरूरी है।
1: कई बार दोस्तों, व्यस्त जीवन के बीच हम अनजाने में ही उनके साथ समय बिताना ही भूल जाते हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं या उनकी भावनाओं को समझ ही नहीं पाते। लेकिन एक छोटी सी बातचीत, कुछ पल साथ बिताना और उनकी बातों को ध्यान से सुनना भी उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है।
0: आखिरकार बुजुर्ग केवल हमारे परिवार का सदस्य नहीं, बल्कि अनुभव की वह किताब है जिनसे हम हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि अपने आसपास के बुजुर्गों को सम्मान दें, उनकी बातों को महत्व दें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है।
1: बिल्कुल सही कहा अस्मित। दोस्तों, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें यह सोचने का अवसर भी देता है कि आखिर हम अपने बुजुर्गों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। जिन लोगों ने हमें जीवन के मूल्य सिखाए, हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ दिया, क्या हम उन्हें वह सम्मान और अपनापन दे पा रहे हैं जिनके वे हकदार हैं?
0: बिल्कुल खुशी, यही बात आज के अगले विषय बुजुर्गों का करे सम्मान की ओर ले जाती है। सम्मान केवल बड़े अवसरों पर व्यक्त की जाने वाली भावना नहीं है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी झलकता है।
1: दोस्तों, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में बुजुर्ग कई बार खुद को अकेला महसूस करते हैं। ऐसे में हमारा थोड़ा सा समय, एक अपनापन भरी बातचीत और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना उनके जीवन में बड़ी खुशी ला सकता है।
0: तो आइए, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के इस अवसर पर हम सिर्फ जागरूकता की बात ना करें, बल्कि अपने व्यवहार में भी बदलाव लाएं। क्योंकि जब हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तब हम उनके अनुभवों, संघर्षों और जीवन भर दिए गए योगदान का सम्मान करते हैं, और यही किसी भी समय और संवेदनशील समाज की पहचान है।
1: तो दोस्तों, बातें तो हम और भी करेंगे, पर आइए फिलहाल लेते एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आइए दोस्तों जानते हैं आज के दिन यानी 15 जून को इतिहास में हुए कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों आज ही के दिन 1667 में मानव इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति को सफलतापूर्वक रक्त चढ़ाने यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रयोग किया गया था।
5: पर दोस्तों आज ही के दिन 1752 को वैज्ञानिक एवं राजनेता बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रसिद्ध पतंग प्रयोग के माध्यम से यह सिद्ध किया कि बिजली और आकाशीय बिजली यानी कि लाइटनिंग एक ही प्रकृति की है।
4: 1775 में दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जॉर्ज वॉशिंगटन को कॉन्टिनेंटल आर्मी का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था।
5: और 1844 को चार्ल्स गुडियर ने वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया को पेटेंट मिला था।
4: 1947 को आज ही के दिन भारत के विभाजन संबंधी ब्रिटिश योजना को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने नई दिल्ली में स्वीकार किया।
5: और दोस्तों आज ही के दिन 1991 में भारत में 10वीं लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई थी।
4: दोस्तों आज ही के दिन 15 जून 1937 को प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे का भी जन्म हुआ था। आइए अब हम जानते हैं कुछ करंट अफेयर्स। दोस्तों 15 से 21 जून तक प्रयागराज सहित कई शहरों में योग सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है।
5: और दोस्तों गुजरात सरकार 15 जून को कई औद्योगिक नीति नई औद्योगिक नीति 2026 लॉन्च कर रही है, जिसका लक्ष्य निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।
4: इसके बाद है पुडुचेरी विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 15 जून 2026 को समाप्त हो रहा है, जो राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।
5: और दोस्तों आज विश्व पवन दिवस है यानी कि वर्ल्ड विंड डे है। यह दिन नवीनकार्य ऊर्जा और पवन ऊर्जा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
4: इसके बाद है दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत G7 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता से उठाएगा। सम्मेलन में व्यापार, ऊर्जा और वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना भी है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। स्विट्जरलैंड की ग्लेशियर एक्सप्रेस को दुनिया की सबसे धीमी एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में जाना जाता है। इसकी एवरेज स्पीड है 37 किलोमीटर पर आवर।
5: दोस्तों वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रेन 2001 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक मालगाड़ी BHP आयरन ओर चलाई गई थी, जिसकी लंबाई 7.3 किलोमीटर थी।
4: दोस्तों सबसे लंबा सिंगल ट्रेन रूट रशिया की ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक लगभग 9289 किलोमीटर लंबा है।
5: और दोस्तों जून 2026 में भारत दुनिया का पहला और एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसने ओवरहेड बिजली लाइनों के नीचे इलेक्ट्रिक इंजनों के द्वारा संचालित डबल स्टैक फ्रेट ट्रेन्स को बड़े पैमाने पर सक्सेसफुली संचालित किया है।
4: इसके बाद है दोस्तों द हिल परसेप्शन स्टडी कहती है, लोग जब अपने किसी दोस्त के साथ खड़े होकर किसी पहाड़ को देखते हैं तो उन्हें वो पहाड़ कम ढलान वाली लगती है। अपने साथ बस एक दोस्त का होना जीवन की चुनौतियों को वास्तव में पहले से कहीं अधिक आसान बना देता है।
5: और दोस्तों क्या आपको पता है पावर ऑफ शेयर्ड एडवर्सिटी के बारे में? तो हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि सेम हॉबीज होने के कारण हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन वास्तव में साझा चुनौतियां और संघर्ष कई अधिक मजबूत साइकोलॉजिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, क्योंकि संघर्ष के दौरान वीकनेस और स्ट्रेस साझा किए जाते हैं जो लोगों को और भी करीब लाता है।
4: दोस्तों बातें तो हम आगे और भी करेंगे, पर आइए लेते एक बार फिर से छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: तो अस्मित, बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज की वो मजबूत जड़ हैं जिनके अनुभव की छाँव में पूरी नई पीढ़ी फलती फूलती है ना?
1: बिल्कुल खुशी, एक बुजुर्ग ने न केवल समय को बदलते देखा है बल्कि कई उतार चढ़ाव, आर्थिक तंगियां और सामाजिक बदलाव भी देखे हैं।
0: और तो और, आज की युवा पीढ़ी जिस स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी से गुजरती है, बुजुर्गों के पास उसका हल होता है क्योंकि वे उस दौर से खुद गुजर चुके होते हैं।
1: आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां लोगों में पेशेंस की कमी दिखती है, वहीं बुजुर्ग हमें ठहराव सिखाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, धैर्य और संयम से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।
1: हमारी परंपराएं, लोक कथाएं, संस्कार और मॉरल्स किसी मॉरल साइंस की किताब से ज्यादा बुजुर्गों की कहानियों में होती है।
0: हाँ स्मित, वे सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनाते बल्कि उन कहानियों के जरिए बच्चों को सही और गलत का फर्क भी समझा देते हैं जो उन्हें अपनी रूट से जोड़ कर रखता है।
1: और पता है खुशी, घर के बुजुर्गों और बच्चों के बीच का रिश्ता तो सबसे खूबसूरत होता है। माता पिता अक्सर बच्चों की पढ़ाई को लेकर सख्त होते हैं, लेकिन दादा दादी या नाना नानी बच्चों को इमोशनल सेफ स्पेस देते हैं।

0: बच्चों को कुछ भी चाहिए होता है तो वो माँ बाप से नहीं बल्कि दादा दादी या नाना नानी से कहते हैं और वे उनकी बातों को टालना नहीं जानते।
1: इसके अलावा बुजुर्गों के पास अपनी जवानी के किस्से, अपने संघर्ष और पुराने दोस्तों की यादों का एक ऐसा पिटारा होता है जिसे वे अक्सर खोलना चाहते हैं।
0: बिल्कुल, आज के आधुनिक समाज में बुजुर्ग अक्सर अकेलापन का शिकार हो जाते हैं।
1: अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि बुजुर्ग अकेले घर में रहते हैं और उनकी देखभाल के लिए हाउस हेल्प का अरेंजमेंट कर दिया जाता है और घर वाले विदेश में जाकर बस जाते हैं,
0: मगर उन्हें ये सारी सुविधाओं की भूख नहीं होती जितनी हमारे वक्त, ध्यान और आदर की होती है। उनके पास बैठकर बस कुछ देर उनकी बातें सुन लेना ही उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है।
1: जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो बुजुर्गों को धीरे धीरे लगने लगता है कि अब किसी को उनकी जरूरत ही नहीं। जब घर के महत्वपूर्ण फैसलों में उनसे राय लेना बंद कर दिया जाता है तो उन्हें महसूस होता है कि वे अब सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह चुके हैं।
0: बुजुर्गों के चेहरे की झुर्रियां दरअसल उनके उम्र की नहीं बल्कि उनके द्वारा किए गए अनुभव की लकीरें हैं। उनके पास बैठना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जैसा है जहां बिना किसी फीस के जिंदगी के अनमोल ज्ञान मिल जाता है।
1: तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले कार्यक्रम में इसी एनर्जी के साथ। इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त खुशी
0: और अपने दोस्त अस्मित
1: को इजाजत।
0: नमस्कार।

0: श्रमिक साथियों नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका कार्यक्रम श्रमिक लोक में, जिसे लेकर हाजिर है हम, मैं आरती और मेरे साथ है योगेश्वर। योगेश्वर जी आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार आरती, और साथ ही सभी श्रमिक साथियों को प्यार भरा नमस्कार जोहार। आरती, आज का दिन जो है विशेष है। हर वर्ष हम आज के दिन यानी 15 जून को राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाते हैं, जिसका उद्देश्य है कृमि के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता को बढ़ाना।
0: बिल्कुल साथियों, आपको बता दें कि कृमि संक्रमण से बच्चों और किशोर किशोरियों में खून की कमी और कुपोषण होता है, जिसके कारण हमेशा थकावट रहती है, संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आ सकती है, तो इसलिए आपको पहले ही सतर्क हो जाना है।
1: बिल्कुल साथियों, 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों और किशोर किशोरियों को कृमि नियंत्रण की दवाई उनके स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क खिलाई जा रही है। जो बच्चे छूट जाए उन्हें 18 जून 2026 को मॉपअप दिवस के दिन कृमि की दवाई खिला सकते हैं।
0: तो बिल्कुल साथियों, याद रखिए 18 जून जो भूल गए हैं वो 18 जून को जाना ना भूलें और कृमि की दवाई जरूर खाएं। विशेषकर हम बात करें तो 119 वर्ष के बच्चों को ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है योगेश्वर जी, क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो उन्हें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है, मालूम नहीं होता, उनके चेहरे पर सफेद दाग होने लगते हैं, भूख कम लगने लगती है, तो उनका ग्रोथ रुक जाता अगर तरीके से वो खाना नहीं खाते हैं, तो इसलिए कृमि की दवाई समय समय पर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल आरती, कृमि की दवाई जो कि एक अभियान के तहत दी जा रही है बच्चों को, इसे लेना तो अनिवार्य है ही। साथ ही जो अभिभावक है उन्हें भी इन बातों पर ध्यान देने की
0: उन्हें भी लेना चाहिए
1: कि जिन कारणों से कृमि की समस्याएं बच्चों को होती है उन कारणों पर हम ध्यान दें, खासकर बाहरी खान पान या अशुद्धियां खान पान में जो कृमि को बढ़ाने में सहायक होता है,
0: साफ सफाई।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि नेल कटे होने चाहिए, आपके पैर खाली पैर आपको नहीं जाना चाहिए कहीं भी गंदी जगह पे, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
1: इसके लिए तो स्कूल में जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों के हाथ को जरूर देखते हैं कि नख कहीं बढ़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि नख जब बढ़ा रहेगा तो ये गंदगियां खाते समय जो है बच्चों के पेट में जाएगा और कृमि की समस्याएं होगी।
0: बिल्कुल,
1: तो कृमि की जो समस्याएं होती है उसके प्रति जो शिक्षक तो जागरूक होते हैं और बच्चों को सिखाते ही हैं, लेकिन अभिभावक को भी सीखने की जरूरत है कि बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें, उन्हें गंदगी से बचाएं और खान पान जो है ताजा और स्वच्छ हो।
0: बिल्कुल, तो अच्छा स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, और स्वस्थ रहना है तो अपने दिनचर्या में कम से कम 15 मिनट योग को जरूर शामिल करें, और हम कह सकते हैं कि योग करें निरोग रहे, है ना, क्योंकि योग हमें शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है।
1: आरती, आज की जो भागदौड़ की जिंदगी है ना, उसमें लोग जो है बिल्कुल ये भूल गए हैं कि हमें ध्यान
0: अपने ऊपर नहीं दे पाते
1: हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ना खान पान पर ना रहन सहन पर दे पाते हैं, जिससे कि शारीरिक कमजोरी होती है और कई बीमारियां यहाँ शारीरिक और मानसिक दोनों होती है, और विशेषकर मानसिक तनाव बढ़ता है और इससे कई बीमारियां तो होती है, कई समस्याएं भी उत्पन्न होती है, जैसे घर में क्लेश का होना, यहाँ तक कि बच्चों को भी बहुत कम उम्र में बहुत सारी बीमारी हो जा रही है, आंखों में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनका भी तो खेल, उनकी सारी गतिविधियां मोबाइल फोन में आकर अटक गई है, तो ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी त्रासदी हो गई है कि आज के लोग ज्यादातर बीमार रहने लगे हैं। तो साथियों, आज के दौर में योग अपनाना हमारी जरूरत हो गई है, और एक बार फिर हमें अपने दिनचर्या को अनुशासित करने के लिए योग को हर दिन करना होगा, जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग करते थे।
1: बिल्कुल, और जून का महीना तो योग
0: दिवस के लिए होता है,
1: दिवस के रूप में ही मनाया जा रहा है, योग माह कह सकते हैं, पूरे माह योग मनाया जाता है, ये जागरूक करने के लिए कि आप दिनचर्या में योग को शामिल करें और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। आरती, हम धीरे धीरे जो है अपनी संस्कृति को कह सकते हैं कि पीछे छोड़ते जा रहे हैं। घर के जो बड़े बुजुर्ग का तो सम्मान करना
0: हमने
1: छोड़ ही दिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज बच्चे जो है वो बिगड़ भी रहे हैं, कम उम्र में ही सोशल मीडिया उनके ऊपर बुरी तरह से हावी हो रही है, इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे तो घर के बड़ों की बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं और गलत रास्ते पर भी कई निकल जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने योगेश्वर जी, क्योंकि जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं ना, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, उनके एक्सपीरियंस होते हैं, वो इतने अच्छे से कहानी के रूप में बच्चों को सारी बातें जो नैतिक शिक्षा है वो दे दिया करते थे। तो आप कह सकते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान ही सभ्य समाज की सच्ची पहचान है। तो हमारे परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं ये बुजुर्ग, जिनका लंबा अनुभव और मार्गदर्शन पीढ़ियों के विकास की नींव होता है। उनके जीवन के अनुभव समस्याओं को सुलझाने और सही निर्णय लेने में एक मजबूत ढाल का काम करते हैं।
1: बिल्कुल आरती, जब बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनका आशीर्वाद परिवार में एकता, सुख और शांति बनाए रखता है। इसके अलावा बुजुर्गों के सानिध्य में युवा पीढ़ी को अपने पारंपरिक मूल्यों और संस्कारों का ज्ञान मिलता है।
0: बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं साथियों कि आज जो हमारे भारत देश में ओल्ड एज होम जगह जगह खोली जा रही, जो बिल्कुल ही हमारी ये परंपरा नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसको फिर से वापस लाने की ज़रूरत है। आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो आपकी धरोहर है, वो उनके उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज जो हमारे बच्चे पूरी तरह से बिगड़ रहे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और उन्हें उतनी ही इज्जत दें। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं वार्ता। विषय है हस्तशिल्प में नवाचार, समय की सबसे बड़ी मांग, और वार्ताकार हैं सपना सिन्हा।
2: हमारा भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विधि परंपराओं और अद्भुत हस्तशिल्प कला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध रहा है। मिट्टी, लकड़ी, धातु, कपड़ा, बांस, पत्थर और प्राकृतिक संसाधनों जैसे निर्मित भारतीय हस्तशिल्प केवल वस्तुएं नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और लोक की जीवन पहचान है। परंतु बदलते समय, आधुनिक तकनीक और वैश्विक बाजार के प्रतिस्पर्धा ने इस कला के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसी परिस्थितियों में हस्तशिल्प कलाओं को नवाचार की आवश्यकता हो गई है। यह कला हमारे देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार का एक महत्वपूर्ण आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे उद्यमी को आत्मनिर्भर बनाने में भी अहम भूमिका निभाता है। साथ ही यह कला हमारी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखता है। आज मशीनों से बने उत्पाद कम कीमत पे और अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, जिस वजह से हस्तशिल्प कला बाजार में पीछे छूटता जा रहा है। युवा पीढ़ी भी इस क्षेत्र से दूर हो रही है क्योंकि युवाओं को स्थिर आय और आधुनिक अवसर कम दिखाई देते हैं। डिजाइन की पुरातत्व, सीमित विपणन, डिजिटल जानकारी का अभाव और वैश्विक ट्रेंड से दूरी भी बड़ी समस्या है। इस कहब के कारण ही नवाचार की जरूरत है, जिसके कारण आधुनिक उपभोक्ताओं की आवश्यकता है। आवश्यकताओं के अनुसार हस्तशिल्प में बदलाव और समय की मांग को ध्यान में रखकर आधुनिक डिजाइन, उपयोगिता और तकनीक का समावेश किया जा सकता है। नवाचार के कारण ही हमारी पारंपरिक संस्कृति की मांग विदेशों तक पहुंच सकती है। पारंपरिक वस्तुओं में आधुनिक फैशन का समावेश, मिट्टी और बांस के उत्पादों को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से जोड़ना, हाथों से बने वस्तुओं को ऑनलाइन बेचना, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंचना, पैकेजिंग और ब्रांडिंग में सुधार, ये सभी नवाचार हस्तशिल्प को नई पूरा पहचान दे सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंचना, पैकेजिंग और ब्रांडिंग में सुधार, ये सभी नवाचार हस्तशिल्प को नए पहचान दे सकते हैं। वर्तमान समय में तकनीक और डिजिटल मंच की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है। आज ई कॉमर्स और सोशल मीडिया ने हस्तशिल्प के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। कारीगर अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन प्रशिक्षण और वर्चुअल प्रदर्शनी जैसी सुविधाएं इस क्षेत्र को आधुनिक स्वरूप प्रदान कर रही है। AI, 3D डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग जैसे संसाधन भी हस्तशिल्प उद्योग को नई दिशा दे रहे हैं। इस कला को हमें युवाओं के साथ मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। युवाओं को किसी भी चीज के एक नए अंदाज में नई तकनीक के साथ उभार कर कैसे लाने की कला होती है। वे किसी भी बेजान वस्तुओं में जान डालने का क्या काम करते हैं, उनके पास नई सोच, नए आइडिया और किसी भी चीज को जुनून से करने का हौसला होता है। युवाओं का हौसला कला को वैश्विक ब्रांड में बदल सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास की मदद से इसे जीवंत बना सकते हैं। सरकार को इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, आधुनिक उपकरण और विपणन की सुविधा देनी चाहिए। वोकल फॉर लोकल की भावना को अपनाकर स्थानीय शिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करना चाहिए। वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा, तकनीकी विकास और बदलती उपभोक्ता आवश्यकताओं का युग है। इस परिस्थिति में हस्तशिल्प के लिए नवाचार की आवश्यकता काफी बलवती होती चली आ रही है। नए विचारों, तकनीकों, उत्पादों का या कार्य प्रणालियों को अपनाकर व्यवसाय को अधिक प्रभावी, लाभदायक और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। बदलते समय के अनुकूल अपने आप को बदलना ही नवाचार की पहचान है। आज के समय में बाजारों में बड़े बड़े उद्योग और बाहरी कंपनियां भी अपना उत्पाद या सामान बेच रही है, जिसकी वजह से हस्तशिल्प को बाजार में टिके रहने के लिए नए और बेहतर सामान बनाने चाहिए। ग्राहकों की बदलती डिमांड को ध्यान में रखकर उत्पादन को समय समय पर बदलाव की जरूरत है। आज की महंगाई के समय भी लोग कम लागत में अच्छे उत्पाद की मांग करते हैं। इसी के कारण हमें कुछ ऐसा उपाय खोजने की जरूरत है जिसमें कम लागत में अधिक वस्तुओं का निर्माण हो सके, मगर हमें इसकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान देना होगा जिससे बाजार में इसकी मांग बनी रहे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल मार्केटिंग की मदद से भी हमें हस्तशिल्प के क्षेत्र में नवाचार के लिए मदद मिल सकती है। नवाचार के कारण लघु उद्योग में बड़े बदलाव आने की संभावना है। लोग नेटवर्क के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े, जिसमें बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम भी मौजूद हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसी जगह है जिससे देश विदेश के लोग जुड़े हैं और इन्हें खुला बाजार मिलता है, जहां स्वतंत्रता के साथ आप अपने उत्पाद को रख सकते हैं। इस माध्यम से यह भी पता चलता है कि आपको अपने उत्पाद में क्या बदलाव करना है, आपने जो वस्तुएं बनाई है वे कितनी पसंद की जा रही है। नवाचार के लाभ और भी हैं। उत्पादन क्षमता में वृद्धि, उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर होती है, बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता या शक्ति बढ़ती है, लागत कम होती है तो लाभ बढ़ता है, नए रोजगार के अवसर निकलते हैं, ग्राहकों का विश्वास और संतुष्ट बढ़ते रहता है, निर्यात की संभावना बढ़ती है, उद्योग लंबे समय तक सफल बना रहता है। हस्तशिल्प के क्षेत्र में नवाचार को और बड़े पैमाने में फैलाने के लिए सरकार की ओर से योजनाओं के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करती रहती है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के सहयोग से उद्यमियों को परीक्षण, ऋण, तकनीकी सहायता और विपणन सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हस्तशिल्प भारत की सांस्कृतिक आत्मा और गौरव का प्रतीक है। बदलते समय में इसे जीवंत और प्रशंसनीय बनाए रखने के लिए नवाचार अत्यंत आवश्यक है। परंपरा और आधुनिकता का संतुलित समावेश ही हस्तशिल्प उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा सकता है। रचनात्मक सोच, आधुनिक तकनीक, परीक्षण और प्रभावी विपणन के माध्यम से भारतीय हस्तशिल्प को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई जा सकती है। यदि सरकार, समाज और कारीगर मिलकर प्रयास करें तो भारत का हस्तशिल्प उद्योग भविष्य में आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण का मजबूत आधार बन सकता है। इसलिए हमें हस्तशिल्प को केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर मानते हुए उसके संरक्षण और विकास के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।
3: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026, रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
4: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखें, सवाल पूछें। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: भारती, आज यानी 15 जून को हम भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की महान अभिनेत्री और पार्श्व गायिका सूर्या की जयंती भी मना रहे हैं। सूर्या का जन्म 15 जून 1929 को लाहौर में हुआ था।
5: सचमुच में आज तो वही खास दिन है सूर्या के लिए। उनको जो बेहतरीन अभिनय और उनकी जादुई आवाज़ के लिए मलिकाए तरन्नुम और मलिकाए हुस्न के खिताब से उन्हें नवाजा गया था। वे अपने समय की सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक मेहनताना लेने वाली सुपरस्टार थे, जिन्होंने लगभग 70 फिल्मों में काम किया।
4: और ये बहुत कम उम्र में ही ऑल इंडिया रेडियो में बच्चों के कार्यक्रम में गाना गाना शुरू कर दिया था। बिना किसी फिल्मी पृष्ठभूमि के अपनी जादुई आवाज़ और बेहतरीन अभिनय के दम पर असीम सफलता उन्होंने हासिल की है।
5: बिल्कुल। और सूर्या उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से थीं जो पर्दे पर अपने गाने खुद ही गाती थीं। देवानंद के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी काफी मशहूर हुई। उन्होंने जीत, शायर और अफसर जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया था। सूर्या जी का सफर हमें सिखाता है कि अगर आपके पास हुनर और लगन है, तो आप विपरीत परिस्थितियों को पीछे छोड़कर बुलंदियों को हासिल कर सकते हैं।
4: तो चलिए, हम पूरे श्रमिक लोक परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सुनते हैं उनका एक खूबसूरत गीत।

0: श्रमिक साथियों, आज के समय में कई ऐसे युवा हैं जो रोजगार को अपना करके खुद भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं और कई लोगों को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं, और ये संभव हो पा रहा है कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से। आप भी कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण लेकर के आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
1: बिल्कुल साथियों, समर्थ 2.0 का भी यही उद्देश्य है। यह भारत सरकार द्वारा वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास के लिए चलाई जा रही एक प्रमुख और उन्नत योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से कपड़ा क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाता है।
0: यह योजना उद्योग की जरूरतों के अनुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा और औद्योगिक संस्थानों के बीच गहरा समन्वय स्थापित करती है। पारंपरिक हस्तकरघा शिल्प के साथ साथ उन्नत तकनीकी वस्त्रों और वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
1: बिल्कुल, और इस योजना का उद्देश्य यह भी है कि यह महिलाओं को कुशल बनाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराता है। पर्यावरण के अनुकूल कपड़ा निर्माण को बढ़ावा देने और घरेलू उत्पादन को अंतरराष्ट्रीय स्थिरता मानकों के साथ जोड़ने के लिए यह पहल शुरू की गई है।
0: बिल्कुल आरती, इसके साथ ही पर्यावरण को जो नुकसान पहुँचाए बिना उच्च गुणवत्ता वाले टिकाऊ वस्त्र उत्पादों का निर्माण करना है, जिसे वैश्विक
1: ग्रीन
0: मार्केट में भारत की स्थिति मजबूत हो सके। तकनीकी वस्त्रों और मानव निर्मित जो फाइबर क्षेत्रों में उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए MSME इकाइयों के लिए नियमों को सरल और आकर्षक बनाया गया है। साथियों, आप भी इसकी जानकारी लें और जुड़ करके कार्य करें और जीवन में आगे बढ़ें।
1: बिल्कुल, कितनी सारी चीजें हैं करने के लिए, तो ये जागरूक आपको बनना पड़ेगा और इसकी जानकारी लेके आपको आगे आना होगा, तभी आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो योगेश्वर, हम क्यों ना अपने श्रमिक साथियों को फिर से एक प्यारा सा गीत सुनवा दें, क्या ख्याल है?

0: शर्मिक्षाथियों, इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। अपने मित्र योगेश्वर
1: और आरती को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। और आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में नामकुम, डोरंडा पथ और पुखड़िया मोड़ से गोविंदपुर मार्ग को 4 लेन बनाने का निर्णय लिया गया। सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान को एक रूप करने, झारनेट सेवा का विस्तार, पीएम आवास योजना से संबंधित एजी रिपोर्ट को स्वीकृति दी गई। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए जेएमएम विधायक दल की बैठक कल शाम मुख्यमंत्री आवास में आयोजित होगी। बैठक में चुनाव संबंधी रणनीति और पार्टी की आगे की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। वहीं चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में झारखंड प्रदेश प्रभारी के राजू, सांसद डॉ सैयद नासिर हुसैन, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक प्रदीप यादव और अजय शर्मा ने मुलाकात की। सेल की लौह अयस्क खदानों में बायोमेट्रिक हाजिरी लागू करने को लेकर प्रबंधन और संयुक्त मजदूर यूनियनों के बीच विवाद गहरा गया है। गुआ में हुई वार्ता वे नतीजा रहा, जिसके बाद यूनियन प्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। यूनियनों का कहना है कि मामला मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए पुरानी उपस्थिति व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। जामताड़ा के उदलबनी स्थित वृद्धाश्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने बुजुर्गों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का आश्वासन दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने बताया कि शिविर में स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच, आधार कार्ड निर्माण किया गया। लोहरदगा समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने 25 जून तक अनुदानित बीजों का 100% वितरण सुनिश्चित करने, लंबित आवेदनों के शीघ्र सत्यापन तथा केसीसी लक्ष्य प्राप्ति में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी एवं उनके तत्पश्चात कार्यक्रम हमारी दुनिया।

0: पर्यावरण के बचाओ।
1: खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनवाया सौ भाई बहन मन के सुषमा बहन बटले जोहार और युवराज दा राउर के हूँ जोहार।
0: जोहार जोहार सुषमा बहन जोहार और हमरे का सुनवाया सब भाई बहन मन के भी युवराज बटले जोहार। तब का हाल चाल है सुषमा बताओ, का हाल है कि हमरे बहुत दिन बाद आज भेटा थी। गांव डने का हाल चाल है, खेती बाड़ी कैसन होत है?
1: सब नक दे दे दा, लेकिन देखो एखन हमरे मन खेती बाड़ी करवाया सब भाई बहन मन है कि और ऐसन में हमरे के किस्म किस्म कर बीज मन कर दरकार पड़ेला अपन खेती उपजाए के लगिन। तो देखो ऐसन में हमरे अपन बीज कर उपजाऊ करे से पहले उकर उपचार करब तो बड़ा बढ़िया।
0: सही बात है, मतलब कहल जाए तो अगर कोई भी चीज कर अगर पहले से हमरे तैयारी करके करब तो उकर जे हमरे कोई भी कार्य करत है तो उकर उकर में बढ़िया परिणाम निकलेला। जैसे अगर हमरे के कोई भी चीज के खेती करत है तो खेत के तैयार करब, संगे संगे मिट्टी के भी हमरे मन उकर मिट्टी कर भी जांच करवाब, बीज कर भी जांच करवाब और संगे संगे का है कि पानी कर भी अगर हमरे मन सब चीज साधन कर के अगर हमरे मन खेती करत है तो उकर पैदावार चाहे जे भी उकर लाभ है दुगुना बढ़ जाए। तो इसलिए अगर हमरे खेती करत है तो हमरे के बीज उपचार करो एक बहुत जरूरी है। देखो का है कि अगर बीज उपचार कर ले जे पौधा है पुष्ट बनबे करेला, संगे संगे जो उकर अंकुरण दर है से 20-30% अंकुरण दर भी बढ़ जाएगा
1: एकदम। और देखो भाई हमरे में सबसे बड़ बात यह है कि हमरे अगर अपन बीज लगाए से पहले अगर बीज कर उपचार करब तो हमरे के अपन जे फसल होवी हुआ अब हमरे सब किसान भाई बहन के घाटा होवे कर न खेत दरकार। कह ले कि हमरे बीज उपचार कर के हमरे लगा थे बीज तो हमरे के जे जन बीज कर जन्मिशन होवेला हुआ खराब होवे करना खेडर और साथे बीज हमरे कर बढ़िया से उपज होवी तो हमरे के मुनाफा भी बेस होवी। और सबसे मेन बात है कि हमरे कोनो में खेती करे से पहले हमरे जे बीज लगाएला हुआ अगर हमरे उकर उपचार नहीं करेला और आइंदे लगाए देवेला तो सन में हमरे के अपन खेती बर्बाद होवे कर भी डर है।
0: सही बात है सुषमा। देखो क्या है कि हमरे के जो किसान भाई बहन मन है अक्सर उमन के है ना कि अब की हमरे के खेती करके बहुत हमरे नुकसान सह ली। तो नुकसान कहूँ ना कहूँ अगर उकर पीछे अगर हमरे मन जाब उकर जड़ में अगर हम जाब तो देखी ला कि हमरे सही बीज कर नहीं लगाल से उकर दिक्कत हुए ला। का है कि हमरे कर्जा लेके खेत मन के जुतवाई ला उगर में खाद उद मन छिड़की ला और बीज सही नहीं लगा ले फसल होबे नहीं करी, अंकुरण होबे नहीं करी, पौधा बनबे नहीं करी तो कहूँ ना कहूँ जाके पूरा ना पूरा एगो नुकसान कर देवेला। तो से ले किसान भाई बहन का भी कहना जायज है कि हमरे का कोनो नुकसान हो जाएला, लेकिन नुकसान का कारण के भी हमरे के देखते हुए अगर हमरे बीज अगर लगाती तो बीज के चेंज हमरे करीला से उकर एकदम उपचार बीज के हमरे उपचारित बीज के हमरे का चयन करे के चाहिए। और जहाँ तहाँ से हमरे मन लगाईला चाहे देखीला कि कोई भी बीज घरे में है उके लगा दिली तो एकाएक उकर मान के चलो हमरे अगर 100 लगाते तो 2-3 निकल गेलक, बाद बाकी निकलबे नहीं करलक उकर पौधा अंकुरण होबे नहीं करलक। तो से ले हमरे का अच्छा जगह से बीज कर किनेक चाहिए और जो उपचारित बीज है उके हमरे के लगाएक चाहिए। तो उकर से का होला कि जे भी पौधा निकली एकदम बेस निकली, अंकुरण बड़ी जल्दी हो जाए और पौधा भी सही समय से उकर बाढ़ी तो सब देख तो सब बट से कहूँ ना कहूँ फायदा पहुँचाएला,
1: एकदम फायदा पहुँचाएला। और हमरे के खास बात तो यही है कि हमरे अगर उपचारित बीज के लगाएला तो हुआ जे जन्मे से पहले दिमाग मन लग जाएला उकर से भी बचाव हो जाएला।
0: तो देखो हमरे का गोइट तो एखन नहीं सुराई सुषमा बहन, तो हमरे का जे भाई बहन मन है उमन भी एक आश्रम में हो कि उमन के कहा हमरे मन सुनाब। तो चलो हमरे सबसे पहले और करीला नागपुरी कृषि गीत से जेके कहा है बसीर अंसारी और संगी मन,
1: चलो सुना।

0: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
1: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: तो सुषमा, देखो क्या है कि हमने कोई भी चीज़ में करी ला तो उसके वास्ते प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो विज्ञान कर क्षेत्र में हो, चाहे बैंकिंग कर क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र में हो, चाहे कृषि कर क्षेत्र में हो, प्रबंधन बहुत आवश्यकता है। बिना प्रबंधन करे ले हमारे कोई भी चीज़ के आगे काम नहीं कर सकीला। तो इसी लिए हमारे कृषि में गर्मा जो सब्जी है उकर में वैज्ञानिक प्रबंधन का तरी कर सकीला और उकर का फायदा है। तो आओ हमारे मन सुनीला डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी के और इकन से बातचीत कर रहे संजीव कुमार लाल।
5: किसान साथियों जोहार, नमस्कार। किसान साथियों, अभी आपने अपने खेतों में सब्जी लगा रखी है, खासकर कद्दू वर्गीय फसलों की हम बात करेंगे, जैसे लौकी, नेनुआ, खीरा या फिर बैंगन, टमाटर, बोधी, भिंडी, इन सब सब्जियों को आपने अपने खेतों में लगा रखा है। और इस समय तेज़ धूप भी पड़ सकती है और तेज़ बारिश भी हो सकती है, ओला भी पड़ सकता है, मतलब प्रकृति का कोई भरोसा नहीं कब किस तरह से अपना वो मंजर दिखला दे। तो जब काफ़ी तेज़ बारिश हो तब हम इन सब्जियों में क्या प्रबंधन करें, किस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंधन करें, कब हम सिंचाई करें और तेज़ बारिश के समय हम किन किन बातों का ख्याल रखें ताकि फसल अच्छी हो, फसल की बढ़वार अच्छी हो और जब बढ़िया फसल होगा तभी आपकी आमदनी अच्छी हो पाएगी। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी साहब। आप वैज्ञानिक हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची में। अंसारी सर, स्वागत है आपका किसान वाणी कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद।
5: इस समय सब्जियों में कौन कौन से वैज्ञानिक प्रबंधन हम करें, जल सही समय मात्रा पर दें, तेज बारिश हो तो क्या करें, बहुत तपन हो, तेज धूप हो तो हम कैसे अपने इन फसलों का, इस कद्दू वर्गीय फसलों का बचाव करें?
6: देखिए किसान भाई, जैसा कि वो खेती करते हैं तो इस चीज़ों से बहुत परिचित हैं कि तेज़ धूप तो पड़ता है और तेज़ धूप गर्मी से तो सब्जियों को नुकसान होता है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से मौसम बिगड़ेगा और तेज़, बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी, उससे भी हमारे सब्जियों को नुकसान होता है। किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि बिजली की कड़क भी आती है और साथ ही साथ ओलावृष्टि होती है, बर्फ़ के ओले गिरने लगते हैं, जिसको हम लोग ओलावृष्टि कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि पत्थर गिर गया है, तो इससे तो बहुत भारी नुकसान होता है सब्जियों को। तो इन परिस्थिति में वैज्ञानिक विधि से हमारे किसान भाइयों को अपने सब्जियों को कैसे बचाना है, क्योंकि जो गर्मा सब्जी है ऑलरेडी आपके खेतों में, हमारे किसान भाई खेतों में है और अभी फल फूल की अवस्था में है, चाहे कद्दूवर्गीय सब्जी हो, जैसे लौकी, नेनुआ, झिंगी, करेला, खीरा, ककड़ी इत्यादि। कहीं कहीं पे तरबूज की भी खेती हमारे किसान भाई करते हैं। हाल के दिनों में खरबूजा का भी खेती करना शुरू किए हैं। और भिंडी और बोधी तो बहुत अच्छा सब्जी है ही गर्मी के मौसम का, इसकी भी हमारे किसान भाई खेती करते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पर टमाटर, बैंगन, ये भी हमारे प्रदेश में गर्मी के मौसम में होता है। तो इन सब चीज़ों को जिसमें हम बात करेंगे कि कद्दूवर्गीय ये गर्मी में बहुत अच्छा होता है, भिंडी को भी कोई बहुत समस्या नहीं है, बोधी को भी कोई समस्या नहीं है, टमाटर गर्मी से थोड़ी प्रभावित होती है, तेज धूप नहीं सहन कर पाता है और पत्ते तो उसके झुलसते ही हैं, फल भी प्रभावित होता है और तेज धूप से इसमें सन स्कॉर्चिंग हो जाता है और सही इसका रंग नहीं पकड़ता, सफ़ेदी टाइप का पीला होता है और डैमेज होता है, फ्रूट क्रैकिंग भी होती है, यानी नुकसान टमाटर को ज़्यादा होता है। तो अगर बहुत तेज़ धूप हो तो किसान भाई थोड़ा सा अगर खर्च करे अपने टमाटर के फसल में तो 8 फीट की ऊंचाई पे खूंटा गाड़ दें और एक शेड नेट हरा रंग का आता है उसको अगर ऊपर से छप्पर की तरह दे दे, साइड में खुला रहे कोई दिक्कत नहीं, गर्म हवा चलती है लेकिन उतना सह लेगा फसल। ये जो शेड नेट है, शेड मतलब ही होता है छाया वाला जाली, शेड नेट छायादार जाली, तो ये धूप की गर्मी को आधा कर देता है। तो जिससे जो गर्मी से जो फसल को नुकसान होने वाला था खासकर टमाटर को, वो नहीं होगा। अन्य सब्जी जैसे कद्दूवर्गीय है जिसमें मैंने बोला लौकी, नेनुआ, झिंगी, करेला, खीरा, इसको बहुत नहीं पड़ता है, जितनी गर्मी उतना अच्छा होगा, एक सीमा तक। अगर 45 डिग्री से ऊपर जाता है, 48-49 अब उतना तो जाता नहीं मेरे प्रदेश में, लेकिन कहीं कहीं पे 47-48 जैसे प्लामू में चला जाता है या सिंहभूम के कुछ इलाकों में, खासकर जमशेदपुर के इलाके में, धनबाद में कभी कभी चला जाता है, तो वहाँ पे झुलसने की समस्या इन सब्जियों में भी होती है। तो उसको बचाने के एक ही उपाय है कि आप जल का उचित प्रबंधन करें हमारे किसान भाई, समय समय पर सिंचाई करें। देखिए होता क्या है कि गर्मी का मौसम है, आप बहुत भारी मिट्टी में करेंगे तो सब्जियां नहीं होती है, थोड़ी हल्की मिट्टी चाहते हैं हम लोग ताकि अच्छा फसल हो। तो हल्की मिट्टी है तो पानी जल्दी जल्दी सूखेगा, तो सिंचाई जल्दी देनी होगी, एक तो मौसम की तपिश, ऊपर से मिट्टी भी आप थोड़ी मुलायम, हल्की मिट्टी लेके खेती किए हैं, वैसी जगह पे आपकी बाड़ी होती है, ये आप जो सब्जी की खेती करते हैं हमारे किसान भाई, तो सिंचाई आवश्यकता अनुसार 5 से 6 दिनों में, कहीं कहीं 4 दिनों में आपको देने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप सिंचाई नहीं करेंगे हमारे किसान भाई, खासकर कद्दूवर्गीय सब्जियों में जिसमें लौकी है, नेनुआ है, झिंगी है, खीरा है, ककड़ी है, तो ये सब्जियाँ क्या होती है, अगर फल के बढ़वार के समय फूल से फल बला, अब ये फल का विकसित होते रहता है, ये तो कंटिन्यूअस है, हर दिन तोड़ते हैं, 1-2 दिन के गैप से हमारे किसान भाई इन सब्जियों को, पानी की जहाँ कमी होगी फल तीता हो जाएगा। हालांकि तीता होने का कुछ और भी कारण है, कभी कभी आप पानी की कमी नहीं कर रहे हैं फिर भी तीता हो रहा है, वो एक वैज्ञानिक कारण है जो किसी किसी प्रभेद में होता है, मेटाजेनिया इफेक्ट हम लोग कहते हैं, वो कुछ जेनेटिक कारण है, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन नॉर्मल वेराइटी जो बहुत अच्छा हो सकता था, बहुत अच्छा दूसरे के खेतों में हो रहा है, लेकिन आपके खेत में अगर तीता हो रहा है वही वेराइटी, इसके मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं फल के बढ़वार के समय उसको पानी की कमी कर दिए। अगर 2 दिन के पानी की टान आप कर दिए, रोक दिए और उस समय कुकुरबिटेसिन का फॉर्मेशन हो गया, तो ये खासकर लौकी, नेनुआ, झिंकी, खीरा में तीता होना आम बात है। आप बाजार में अक्सर आप खरीदते हैं तो पहले कहते हैं खीरा तीता तो नहीं है, खीरा में तो सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए हमें जल का उचित प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है अगर हमारे किसान भाई गर्मा खेती कर रहे हैं। तो ये बात हुई। अब अगर दूसरी बात, जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे कि नहीं कि अगर तेज बारिश हो जाए तो हमारा प्रदेश, खासकर झारखंड प्रदेश है, रांची तो उसमें सबसे अधिक, रांची और आसपास का जो जिले है इसमें क्या है कि अचानक से मौसम बिगड़ता है, दोपहर 12-1 बजे तक बढ़िया धूप है, लगेगा आज बारिश नहीं होगी, अचानक से बादल उमड़ेगा और तेज आंधी तूफान बारिश शुरू हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति में सारी सब्जियाँ प्रभावित होंगी। तेज बारिश अचानक से होगी तो प्रभावित होंगी, क्योंकि आपने जो खेत बना रखा है, क्यारी बना रखा है, गर्मी के मौसम में उचित जल प्रबंधन के लिए, सिंचाई करने के लिए, तेज बारिश

0: तो जल जमाव की समस्या होने के डर है, तो जल निकासी तुरंत करना पड़ेगा। और तेज आंधी तूफान बारिश हुई है या फिर उसके साथ ओले पड़ गए हैं, बर्फ के जो पत्थर जैसा होता है वो ओला पड़ जाता है, बहुत लोग गलती से बर्फबारी कह देते हैं, ये बर्फबारी नहीं है, ओला वृष्टि है, अंग्रेजी में हेल स्टॉर्म कहते हैं और आम भाषा में किसान पत्थर गिरा है कह देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले अगर जल जमाव जैसी स्थिति बनी है, तेज़ बारिश हुई है, तो रात भर भी अगर जल जमाव रह जाएगा तो सब्जियाँ प्रभावित होंगी। तो पहले तो जल की निकासी की व्यवस्था करना है, नाली काट के जैसे आपको हमारे किसान भाई कर लें। दूसरी बात है, दूसरे दिन जाएं और जितने पत्ते टहनियां नीचे टूट के गिर गए हैं, फल गिर गए हैं, उसकी सफाई कर दें। और एक सावधानी के तौर पे, अब जख्मी पौधा हो गया है ओला से या तेज बारिश से आंधी तूफान से, तो अब उसमें जख्म हो गया है, पत्ते टूटे हैं, टहनियां टूटी हैं, तो उससे इन्फेक्शन का चांस होता है। तो सावधानी के तौर पे हमारे किसान भाई एक फफूंद नाशक कार्बन डाइजीम नाम की दवा आती है 1 ग्राम प्रति लीटर, उसे दे दें। हालांकि ये दवा प्रतिबद्ध हो चुकी है, लेकिन दूसरा इसका ऑप्शन नहीं है, किसानों को मिल नहीं पाता है, इसलिए हम लोग इसको कह देते हैं। लेकिन इसके लिए दूसरी दवा ट्यूबाकोनाजोल नाम की एक दवा आती है, उसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करें। और नहीं मिले तब मजबूरी में कार्बन डाइजीम भी आप कर सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से प्रतिबंधित किया गया, हम क्षमा चाहेंगे इसमें। लेकिन चूंकि किसानों पास ऑप्शन नहीं है, उसका नुकसान भारी हो जाएगा, तो हम लोग कहते हैं कि एक छिड़काव आप कर सकते हैं इसका, नहीं अगर ट्यूबाकोनाजोल मिल जाए तो आप उसे करें। और इसके साथ आप एक कीटनाशक मिला दें, जैसे मिडाक्लोप्रिड नाम की दवा आती है, या फिर दूसरी दवा और जो सरकार ने अनुशंसित की है उसमें से मिडाक्लोप्रिड अभी है, उसका 1 ml प्रति लीटर, दोनों मिला के एक छिड़काव सावधानी के तौर पर कर दें, तो जो बारिश के वजह से संभावित नुकसान होने की संभावना है कीड़े बीमारी की, उससे आपके फसल बचे रहेंगे। किसान भाइयों को हम इस मामले में ये सलाह देंगे।
1: जी, इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो फसल आपकी सही रहेगी।
0: हाँ, बची रहेगी, चूंकि देखिए एक तो गर्मी से है, मैंने कहा पहले छाया देकर टमाटर को बचाएंगे, नेट से सिंचाई प्रबंधन अच्छे से करेंगे, तेज आंधी तूफान बारिश ओलावृष्टि हो तो कैसे बचाएंगे, अगर इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो और गर्मी में कोई की बीमारी और कीड़े की बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। हाँ, अगर मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, बारिश रेगुलर हो रही है, वातावरण में नमी आ गई, तब फिर जैसे जैसे कीड़े पनपने लगेंगे, तो ये जो इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा मैंने कहा, अगर जैसे अभी डेली डेली बारिश हो या एक दिन छोड़ छोड़ के बारिश होगी, तो वातावरण में नमी होगी और तापमान भी गिर के 30-32 डिग्री तक आ जाएगा, तब वैसी स्थिति में कीड़े बीमारी भी ज्यादा पनपने लगेंगे। तब हमारे किसान भाइयों को हर 10-15 दिनों में इमिडाक्लोप्रिड नाम की एक दवा है, उसका 1 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सब्जियां प्रभावित होंगी और उत्पादन भी प्रभावित होगा।
1: जी, फसल में चमक हो, पैदावार उसकी अच्छी हो, अच्छे तरीके का लौकी हो, नेनुआ बढ़िया हो, और बैंगन में चमक हो, टमाटर अच्छा हो, बोधी भिंडी सब अच्छे तरीके से बढ़िया उत्पादन ले पाए, किन किन और बातों का ध्यान रखा जाए डॉक्टर
0: जी? हम लोग कहते हैं ना कि जो संतुलित आहार लेता है जो मानव, वो तंदुरुस्त दिखता है, उसके चेहरे में चमक होती है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं हो, तो संतुलित आहार, तो ये संतुलित आहार हमें अपने पेड़ पौधों को भी देना होगा, अपने सब्जियों को भी देना होगा। आप संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार ये है कि जब आप सब्जियां की खेती करते हैं तो उसमें 3 तरह के मुख्य पोषक तत्व होते हैं, एक नेत्रजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, स्फूर और पोटाश। तो इसका जो अनुपात है, ज़्यादातर सब्जियों में हम लोग 100 kg नाइट्रोजन, 50 kg फास्फोरस और 50 kg पोटाश देते हैं, खासकर ये जो गर्मी फल में हम जैसे कहा लौकी, नेनुआ, झिंगी, कद्दू, करेला, टमाटर, बैगन, ये मैंने जो
1: इसका
0: कहा
1: छिड़काव करते हैं।
0: हाँ, नहीं, इसमें देते हैं खाद के रूप में, रासायनिक उर्वरक के रूप में, 100 kg नाइट्रोजन, 50 kg फास्फोरस और 50 kg पोटाश प्रति हेक्टेयर। ये जो मैं बताता हूँ, हम लोग वैज्ञानिक लोग बताते हैं हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है और 1 एकड़ में 100 decibel होता है, ये हमारे किसान भाई जानते हैं। तो 2.5 एकड़ मतलब 100 meter लंबा, 100 meter चौड़ा की जो जमीन होगी वो 1 हेक्टेयर होगा, 2.5 एकड़ होगा, उसका ये दर है। अब क्या है, 100 kg जो नाइट्रोजन जो हम कह रहे हैं और 50 kg फास्फोरस, 50 kg पोटाश कह रहे हैं, इस रूप में तो आता नहीं है, किसान डालते हैं DAP और पोटाश के रूप में और यूरिया के रूप में। तो हम ये भी बताते चले अपने किसान भाइयों को, आप देखते होंगे कि बोरी में लिखा रहता है यूरिया की बोरी में 45% नाइट्रोजन, यानी 100 kg अगर आप यूरिया डालेंगे तो 45 kg नाइट्रोजन मिलेगा। DAP के बोरा में देखेंगे तो 18 और 46 लिखा रहेगा, टोटल 64 भाग इसमें पोषक तत्व है, ये प्रचार भी करता है डीएपी वाला, तो 18% उसमें नाइट्रोजन है और 46% फास्फोरस है, यानी 100 केजी 50-50 केजी का अगर दो बोरा डीएपी हमारे किसान भाई देंगे तो उसको कितना मिलेगा फास्फोरस 46 केजी और नाइट्रोजन मिलेगा 18 केजी। क्लियर हो गया
1: जी।
0: तो आप 100 केजी फास्फोरस देने के लिए आपको 108 केजी देना पड़ेगा, 108 से 10 केजी देना पड़ेगा तब फास्फोरस मिलेगा। और जब 108 केजी आप डीएपी दे देंगे तो 18 केजी नहीं 21-22 केजी आपको यूरिया मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया, तो उतना यूरिया आपको कम करना पड़ेगा। और जब 1 क्विंटल जब आप दे रहे हैं 100 केजी यूरिया तो आपको 45 केजी मिल रहा है उसमें नाइट्रोजन, तो इसके मतलब 200 केजी जब हम देंगे तब जाके आपको 90 केजी मिलेगा। तो आपको 100 केजी की ज़रूरत है तो 200 केजी पूरा न भी दें तो 185 केजी के आसपास यूरिया देना पड़ेगा, 110 केजी डीएपी देना पड़ेगा और करीब 85 से 90 केजी पोटास देना होगा, क्योंकि पोटास में जो म्यूरेट ऑफ पोटास जो खाद आता है जिसको पोटास किसान कहते हैं उसमें 60% पोटास रहता है। तो आपको 85-87 केजी जब देंगे पोटास तो 50 केजी मिल जाएगा। डीएपी हमें जितना ज़रूरत है तो 110 केजी के आसपास देना होगा और यूरिया 100 केजी देने के लिए चूँकि 20 केजी हमको मिल जा रहा है इससे तो हमें उधर अब चाहिए अब उसे 80 केजी तो 80 केजी देने के लिए 180 केजी के आसपास देना पड़ेगा हमें। तो ये थोड़ा गणना करना पड़ता है, हम लोग रफली बता दिए, एक्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1-2 केजी आगे पीछे होगा तो उतना से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये करना होगा। अब सब्जी की खेती हमारे किसान भाई करते हैं तो सब्जी की खेती को हम लोग अनुशंसित करते हैं कि जब तक आप कंपोस्ट या FYM नहीं देंगे आपकी बढ़िया चमक और अच्छी सब्जी नहीं होगी। तो ये हम लोग ज़्यादातर सब्जियों में कहते हैं कि 20 टन यानी 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से FYM या कंपोस्ट देना पड़ेगा। अब जो जैसे बोदी है एक एक्सेप्शन गर्मा सब्जी में, इसमें ना ही नाइट्रोजन उतना देना है ना ही कंपोस्ट उतना देना है, 10 से 12 टन यानी 1000 से 1200 मतलब 100 से 120 के क्विंटल अगर आप दे देते हैं, 10 से 12 टन अगर आप दे देते हैं कंपोस्ट FYM तो काफ़ी होगा। हाँ मैक्सिमम दे तो 15, उससे ज़्यादा नहीं, 15 टन से ज़्यादा नहीं देना होगा। अब दूसरी बात क्या हो रही है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की मात्रा थोड़ी अलग हो जाती है, खासकर जो दलहनी वर्गीय सब्जियाँ हैं जैसे मटर है, फरसबीन है, इस तरह की चीज़ें जब करते हैं इसमें 40 केजी नाइट्रोजन 80 केजी फास्फोरस, फास्फोरस दुगुना हो गया, वहाँ पे नाइट्रोजन दुगुना हो रहा था दूसरे सब्जियों में, फिर 40 केजी पोटास, 40-80-40 और इधर ये भी कम देना होगा। तो ये एक बोदी का मामला या मटर का मामला या फ्रेंच बीन का मामला थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये वातावरण के नाइट्रोजन को फिक्स करता है, इसलिए नाइट्रोजन कम देते हैं और ये वातावरण के नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो फास्फोरस ज़्यादा इस्तेमाल करता है, इसलिए फास्फोरस इसमें दुगुना कर देते हैं जिसके वजह से ताकि अच्छी फसल हो सके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं अगर हम अच्छी चमकदार और बढ़िया ले तो रेगुलर आप बैलेंस संतुलित मात्रा में पोषक तत्व तो हमारे किसान भाई डालें ही, सिंचाई रेगुलर करते रहें और खरपतवार का नियंत्रण करते रहें, खरपतवार नहीं होनी चाहिए, सड़े गले फल हों, पीले पत्ते हों, सूखी टहनियाँ हों, उसको खेतों से दूर रखें, जितना सर सफाई रखेंगे समय पे सिंचाई करेंगे और संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और कंपोस्ट देंगे निश्चित रूप से चमकदार बहुत अच्छा सेफ साइज कलर की सब्जियाँ आएंगी और अच्छा मूल्य हमारे किसान भाइयों को मिल पाएगा।
1: तो किसान साथियों यदि आप वैज्ञानिक रूप से अपने खेतों में प्रबंधन करते हैं, सही समय पर सिंचाई, सही समय में खाद प्रबंधन और जब तेज़ धूप हो, तेज़ बारिश हो या फिर ओले गिर रहे हो तो आप थोड़ी सावधानी बरतते हैं और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया उस तरह की सिफारिश को आप अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी, आमदनी आपको काफ़ी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी साहब, वैज्ञानिक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, आज आप इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद आपको भी, हमारे किसान भाई आपको भी।
2: एखन हमारे मन सुनत रही गर्मा सब्जी मन में वैज्ञानिक प्रबंधन जिके बतात रहे विशेषक डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी और इनकर से बातचीत कर रहे संजीव कुमार लाल। तो इकरे साथे हमरे कर खेती बाड़ी कर बेरासी रायला और शुरू होवेला हमारी दुनिया कार्यक्रम।
3: तो हमारी दुनिया कार्यक्रम में सुनो या भाई बहन मन के फिर से स्वागत है, जोहार है।
2: हाँ स्वागत है सौगुया के सुषमा बहन मंडल।
3: सुषमा देखो कहा है कि आज कर समय में परिवार वाला आदमी साथ देवे चाहे नहीं देवे, लेकिन जब पड़ोसी है वो जरूर रोर के साथ देवी।
2: नगद बात
3: तो और हमरे कर अच्छा पड़ोसी हो एक सच्चा मित्र वही है के सिमी हमरे के जे दोस्त है चाहे घर परिवार का आदमी मन है अपन रिश्तेदार है हित नाता गोतिया मन है उ मन तो दूर में रहना कहियो कुछ संकट पड़ ले सबसे पहले रोर के जे अगर साथ देवेला तो हके पड़ोसी
2: हाँ।
3: तो से ले सच्चा पड़ोसी हुए के बहुत जरूरी है आज कर दिन में।
2: आ देखो हमरे मन सब गांव घर में रहे वाला भाई बहन मन है कि और जाहिर से बात है कि हमरे आसपास में अपन आस पड़ोस कर आदमी मन से उठेक बैठेक खाए पिएक सब साथे होवेला और ऐसन में हमरे सबकर से मेल जोल के और मेर प्रेम से रहीला और हमरे हर सुख दुख में चाहे कोनो दुख हो चाहे हंसी खुशी हो सब में एक दूसर से मिल बैट के रहीला और हर मुसीबत चाहे खुशी में सांगे रहीला और ऐसन में सब घरी हमरे के एगो अपन पड़ोसी हर समय हमरे साथे खड़ा रहेला।
3: और देखो सुषमा बहन कहा है कि हमरे का जे गांव दहेज में शादी हुएला शहर का शादी से बिल्कुल भिन्न हुएला और बिल्कुल हट के हुएला हमरे का जे गांव दहेज के शादी हुएला रोरे याद करब कि अगर रोर घर में अगर कुछ शादी ब्याह का कार्यक्रम है तो पूरा गांव वाला मन मिलके और पड़ोसी मन मिलके पूरा सभा के उठाए ना
2: एकदम उठाए ना भाई और देखे के लिए ये भी मिलेला कि मदद कर रूप में अगर और उनके नेवता ही तो वो खाली हाथ नहीं आवे
3: नहीं आवेला
2: हां अपन साथे जे भी चौर दैल होवेला
3: कपड़ा लता होवेला सब लेके आवेला संगे संगे कावेला कि हाथों मन बटाए ना हाथ कोई भी काम में हाथ बटाए ना और ऐसा देखो हो जाला कि जेकर घर में शादी होके पतो नहीं चलेला कि का नियर शादी बीत गेला कैसे उतना उतना सभा के उठा देले उतना आदमी के कैसे स्वागत कर ले एकदम तिनको गुण पता नहीं चलेला। तो देखो हमरे कर जे झारखंड संस्कृति है बहुत ही बढ़िया संस्कृति हमरे कर है जेके मदद कर भाव कहल जाएला और देखो अच्छा पड़ोसी कर यह सब तो निशानी है के सुख दुख कर टाइम सुख दुख कर बेरा में जे रोर के साथ देवत है वह सबसे सच्चा पड़ोसी है के और सबसे सच्चा मित्र भी वह है के। और देखो याद करब आई से 5 साल पहले जे बेरा कोरोना महामारी चलते रहे से बेरा ना रिश्तेदार आवत रहे ना रोर दोस्त यार आवत रहे तो से बेरा रोर के अगर कोई अगर संग देवत रहे तो पड़ोसी ही संग देवत रहे तो से ले हमरे के अच्छा पड़ोसी बनाए के बहुत जरूरी है अगर कुछ भी थोड़ा सा ऊंच नीचा का बात हो जाएला तो उस बात के हमरे के नजरअंदाज करके मन से बढ़िया व्यवहार मधुर व्यवहार बना के रखे के चाहिए।
2: और देखो हमरे कर एगो अच्छा पड़ोसी रौरे कर घर और परिवार भी कर भी सुरक्षा
3: करेगा
2: एकदम घर दुरा के छोड़ के जाती तो वो एकदम रौर घर के वो अपन घर लखे देख रेख करी और उकर सुरक्षा करेला
3: एकदम बहुत नगद बात कह ली। देखो का है कि कुछ दिन पहले हमरो कोई एगो बिहार में जाए रही और सेबर हमरे के बहुत चिंता बनल रहते रहे कि कानीर हमरे मन करब कैसे करब पूरा घर के तो छोड़ के जा नहीं सकत रहे लेकिन हमरे के जो पड़ोसी है वो कहला कि चिंता करे के नखे तोहरे मन सब कोई जावा और उमन का कर लें कि दू जन आए के हमर घर में उमन रह लें और अपन घर तरी उमन पूरा घर के सुरक्षित कर लें और पूरा देखभाल करके बहुत बढ़िया से थी राख दिलें। तो देखो कितना मददगार होला पड़ोसी मन
2: तो और जो सच्चा मित्र होवेला सच्चा पड़ोसी होवेला एकदम कखनो मतलब ही नहीं होवेला हर घरी वो एगो ढाल बन के खड़ा रहेला अपन साथे
3: तो से ले हम तो यह कहब कि जितना बगरा से बगरा हो सके पड़ोसी का साथ दे और साथ ले और अपन आस पड़ोस में एक मधुर व्यवहार बना के सबके रखे कर कोशिश करे के चाहिए। तो देखो हमरे कर बातचीत तो चलते रही लेकिन कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए एक तो हमरे नागपुरी में लोकगीत सुन लेवेला जो कि कृषि गीत है के और माफ करो कृषि गीत ना लगे लोकगीत है के जेके गाए हैं मुंद्रजीत महली और संगीमन।
2: चलो सुनो

0: ना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
1: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: तो सुषमा, ऐसा है कि देखो, हमरे कर जो झारखंड है, झारखंड में सबसे जो बड़ समस्या है वो कह के, तो सबसे बड़ समस्या है के पलायन कर। हमरे कर जे भी यहाँ कर युवा भाई बहन मन है, रोजगार खातिर अपन देश के छोड़ के दूसर देश चल जाना, दूसर राज्य चल जाना कमाए खातिर, तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि हमरे का जे भी यहाँ होनहार जो भाई बहन मन है वो मन यहाँ छोड़ के दूसर जगह चल जाना काम करे के लिए। तो लेकिन एखन का समय बदलत है, हमरे का झारखंड राज्य में भी रोजगार कर संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं।
6: एकदम अवसर मिलेगा।
5: हाँ, एकदम अवसर मिलत है। और जब पहले जो पलायन जितना हुआ रहे उकर से एखन आधा हो जाए है। हाँ। और हमरे कर जो सरकार है वो भी एकर में प्रयासरत है कि का नियर पूरा जो पलायन है उके रोके है, तो रोके के वास्ते का है कि गाँव में रोजगार का कुछ अवसर मन बनाल जाए। तो चलो इकरे में हमरे मन बातचीत करब, गांव में रोजगार कर बढ़ते अवसर, और ये पंच परगनिया में वार्ता, और इकर वार्ताकार है के लक्ष्मीकांत प्रमाणिक।
7: रोज दिना भारत के जनसंख्या और बेरोजगारी आज हमरे के देश के सबले बड़े जाला बन जोई है। भारत गांव का देश कहल जाएला, माने बेसी आबादी गांव माने आए। गांव के युवा माने बिजाई ने हुनर होला, मिंतु सही सलाह और मार्गदर्शन नहीं पवाए के कारण बेरोजगार हो जाएला, माने डामांडल हो जाएला। वर्तमान समय ऐसा चल रही है जे पढ़ा लिखा तो ठीक है, मिंतु हाथ केर कोनोई हुनर नखे ताहले कोनोई दाम नखे। सब युवा के सरकारी नौकरी देना तो सरकार के चुनौती है के, और मुश्किलो गाँव के छुआ हाथे हुनर बेजाइन रहेला, एतिके जे इमन के ट्रेनिंग के दरकार आए। ट्रेनिंग ना करे पाइर के हुनर रहत को बेकामा घूर बुलेला। रोजगार के टवा महान देश के भिन्न भिन्न जगह महान बेड़ाई बुनेला, देश तो देश एखन छणा सब विदेश जाए लाइक आन स्वर्ग एक लाडू खाए चक्कर जीवन बर्बाद हो जाएला। लॉकडाउन जखन हलक तखन न पता चलक जे हमरे के भारत देश के कतिक जुआ सब काम करे विदेश जाएला। विदेश माने उमन के बेजान रकम के शास्ति होला, केव केव तो घूर कहन घर नहीं आवे पारे। यह सब देख कहन भारत सरकार चिंता माने पड़ गल, आर डामाडोल युवा के खातिर कौशल विकास कार्यक्रम गाँवे गाँवे शुरू कर लो, जेटा उद्देश्य गाँव के बेरोजगार छोड़ा छोड़ी जेमन पढ़ल लिखल आहन आर जेकर हाथे हुनर है उमन के ट्रेनिंग कराए कौन रोजगार देना, जेटा दारू ने अपन आर परिवार के भरण पोषण के करे पारुन आर देश के आर्थिक विकास से सहयोग करुन। कौशल विकास योजना पढ़ा लिखा जतिक युवा हैं उमन के 3 मास 6 मास आर 1 बछर के ट्रेनिंग कराए कहन गाँवे घरे रोजगार देवेला। गाँवे घरे नौकरी पाले परिवार एक संग रहा होला, जहाँ तहाँ डामांडल आर हवा हजाले को बचाएला। आज हमरे देख कि हुनर कौनटा के कहला इटा के पहले बुझ लेवे, तो हुनर मानुष जीवन एक बेजान बड़े गुण होला। ये गुणटा ले आदमी समाज व संसार महान अपन चिन्ह बनाला, कोनो ऐसा काम जेटा सब के हाथे बा मगजे संभव नहीं होला, मिंतु केव एक जन कर देला सेटा के हमरे का कहिला हुनर कहिला और ओके हुनर कहल जाला जैसन चित्रकार कोनो छुआ केकरो मोहरा के हूबहू आकेला मिंतुक जेकर पासे ओ गुणटा बा ओ हुनरटा नेखे ताहले कतिको प्रयास करू नाही आके पारेला से कलाटा के हुनर कहल जाला आरो एसने बेजाइन काम है जेटा के कोर कौन अपन हुनर के युवा सब बढ़ाए पारेला निमुदे सुनू जैसन सिलाई कढ़ाई सिलाई कढ़ाई एखन सरकार हमरे गाँवे गाँवे पंचायत स्तर प्रखंड स्तर माने लड़की लाके खातिर सुविधा दे हुए मतलब उमन फ्री ले सिलाई के ट्रेनिंग करबेन आ सिलाई ट्रेनिंग कर बदे सरकार उमन के एक प्रशस्त पत्र यानी सर्टिफिकेट दे और उठा ले उमन सिलाई सीखल बदे आरो छुआ को रोजगार दे पारे उठा ले कि पैसा कमाए पारे जैसन आरो कंप्यूटर कंप्यूटर एखन सरकार ट्रेनिंग के खातिर प्रखंड स्तर मान दे लगे जतिक पढ़ल लिखल छुआ है 8 क्लास 10 क्लास 12 क्लास के उमन कंप्यूटर ट्रेनिंग कर कौन उठा ले रोजगार मिले पारे उसने इलेक्ट्रिशियन है इलेक्ट्रिशियन जैसे ITI है इनोडेनिक्स टूल रूम है इगला पॉलिटेक्निक है इगला के माध्यम ले इलेक्ट्रिशियंस करके उमन रोजगार पा पारे इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल बनाबनी TV रेडियो बनाबनी तो इगला लेक उमन जो ट्रेनिंग कर लेवन ताहले इगला लेक उमन के सुंदर रोजगार मिली उसने बाइंडिंग करा करी इलेक्ट्रिशियंस के अंदर में नाइल जैसन पंखा हलो मोटर हलो उगला कर खातिर कहूँ जैसन अपन गांव घर माने दुकान खोल को उम्रे रोजगार करे पारन मोटर मैकेनिकल है मोटर मैकेनिकल ट्रेनिंग करल बादे उम्रे मोटरसाइकिल बना बनी दुपहिया वाहन बना बनी सीखे उठा मैंने रोजगार है ड्राइवर ट्रेनिंग सरकार ड्राइवर ट्रेनिंग करवाएला ड्राइवर ट्रेनिंग कर उम्रे गाड़ी चलाए के उठा रोजगार करे पारन उसने वेल्डिंग का काम है उसने पशुपालन है पशुपालन के अंतर्गत गाय छागोर सुअर खुकड़ी कोड़ो एमएन एमएन के रोजगार करे पारे उमन के कान पोसे हुई उमन के रोजगार काने करे ट्रेनिंग दिल जाएगा ट्रेनिंग बादे इमरे निजे अपन रोजगार स्वरोजगार खोले पारे आर दूसर को रोजगार दे पारे उसने खेती बाड़ी है खेती बाड़ी कर अत्याधुनिक ट्रेनिंग दिल जाएगा फिर लाहा पालन है माछ पालन है गाँव में जैसन सरकार के द्वारा डोभा बनवल जाए है जहाँ तहाँ स्कीम आएगा बांध के स्कीम वहाँ मछली पालन करके उम्रे उठा पैसा कमाए पारे रोजगार पाए पारे उसने कढ़ानी यानी छाती उत्पादन करे पारे फिर काट मिस्त्री करे पारे यानी काट से संबंधित सामग्री ट्रेनिंग करके उठा सीखे पारे फिर राजमिस्त्री उसने मधुमक्खी पालन है मधुमक्खी पालन के ट्रेनिंग होगा फ्री मैंने ट्रेनिंग करके खुद मधुमक्खी उम्रे पालन करे पारे इटा बहुत बड़े रोजगार के उसने दोना पा टिपा टिपी हमरे के जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा माने कोने प्रोग्राम होला सांस्कृतिक प्रोग्राम तो जैसन बिहा शादी तो उटा माने हमरे के भोज कर खाए खातिर हमरे के दोना पात के जरूरत होला तो हुआ हमरे उटा लेके हमरे रोजगार मिले पारे उटा हमरे के बाजार माने उपलब्ध कराबी तो सही हिसाब से उटा लेके एक रोजगार है उसने अगरबत्ती बना बनी बागवानी अगरबत्ती बना बनी बेटी छुआ के काम के गाँवें घरे पढ़ल लिखल तो आहन बेटी छुआ मिंतुक रोजगार नेखे उमन पासिन तो गाँवें घरे रही कौन का करबें तखन तो अगरबत्ती बना बनी इला के ट्रेनिंग होला तो इला ट्रेनिंग कर आराम से उम्रे अपन घरे घरे रोजगार बनाए पारे उठा ले बहुत बड़े रोजगार होला उसने बागवानी कर काम के भिन्न भिन्न रकम के जैसन पौधा हलो फूल के हलो जैसन फल के हलो तो इला बागवानी कर उम्रे पैसा कमाए पारे ऐसन बेजाइन रकम के काम है जेटा ले गाँव के छोड़ा छोड़ी अपन पसंद ले काम के बाइच कहन कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा फ्री महान ट्रेनिंग कर कहन अपन हुनर के बोले जीवन जापन करे पारेला देश के युवा बेरोजगार ना रहन से खातिर राज्य के प्रत्येक जिला ITI इनोडेनिक टूल रूम पॉलिटेक्निक आर तो आर विश्वविद्यालय बैठे UG कोर्स माने नवा शिक्षा नीति NEP 2020 माने कौशल विकास के खातिर 4 बच्चों के भीतर 3 स्किल डेवलपमेंट आर 4 वोकेशनल पेपर सिलेबस माने बनवाई कौन पढ़वाते ताकि छुआ सब साधारण पढ़ाई संगे संगे अपन हुनर को विकसित करूँ। आर
5: तो एखन हमरे सुनत रही लक्ष्मीकांत प्रमाणिक के जे कि हमरे के पच परगनिया में वार्ता सुनात रहे गांव में रोजगार कर बढ़ते अवसर। और देखो बहुत बढ़िया बात के बता लें कि गांव में भी हमरे कानियर रोजगार कर अवसर के बनाए सकीला।
6: हाँ भाई जरूर। और देखो एकरे साथ हमरे
5: हमारे को तो देखो और चर्चा मन करे के रहे लेकिन बेरा हमारे की इजाजत नहीं देवत है। हाँ,
6: तो जाते जाते बताए चाहब कि ये कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर
5: और लगे सगे सबके जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया। शाम के 7 बजने को हैं, बस थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: झारखंड टेक्स द स्टार। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
1: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
0: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्यघर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड कैबिनेट में 23 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान किया गया एक रूप। झारनेट सेवा के विस्तार का निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स पहल का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण जनजातीय और वंचित समुदायों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर विशेष जोर। राज्यसभा चुनाव को लेकर कल होगी जेएमएम विधायक दल की बैठक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज की मुख्यमंत्री के साथ मंथन। लोजपा ने नाथवानी की जीत का जताया भरोसा। विकसित भारत युवा संसद 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। झारखंड की 3 प्रतिभागी राष्ट्रीय मंच पर करेंगी राज्य का प्रतिनिधित्व। और रांची में 17 जून से दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप का होगा आगाज। भारत समेत 5 देशों की टीमें लेंगी भाग, 150 खिलाड़ी होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में नामकुम डोरंडा पथ और पोखरिया मोड़ से गोविंदपुर मार्ग को 4 लेन बनाने का निर्णय लिया गया। सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान को एक रूप करने, झारनेट सेवा के विस्तार, पीएम आवास योजना से संबंधित एजी रिपोर्ट को स्वीकृति देने और गोड्डा समाहरणालय में अवैध रूप से कार्यरत 5 लोगों को बर्खास्त करने के प्रस्ताव भी मंजूर किए गए।
5: इनमें चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 162,82,22,100 रूपए मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 2 पथ निर्माण विभाग से श्री मुरारी भगत सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख, इनके द्वारा सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों के विरुद्ध वेतन एवं अन्य लाभ दे करने के संबंध में।
4: रांची में आयोजित मिड टेक इनोवेशन डे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स पहल का शुभारंभ किया। भारतीय विकास ट्रस्ट और PHIA फाउंडेशन की यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीकों के परीक्षण और उपयोग को बढ़ावा देगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है।
6: बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं स्वास्थ्य को लेकर, जहां कुछ लोग बताना भी नहीं चाहते हो। हम ऐसे भी चीजों को इनोवेट करें कि हमें पहले ही पता चल जाए कि उसको क्या समस्या है। आज के दिन में तो मस्तिष्क को समझने वाले भी मशीनें बन चुकी हैं। आज नए इनोवेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोग एक बेहतर रिजल्ट पाने में सक्षम होंगे। हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हेल्थ मैपिंग हो यहाँ पर।
4: 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए जेएमएम विधायक दल की बैठक कल शाम मुख्यमंत्री आवास में आयोजित होगी। बैठक में चुनाव संबंधी रणनीति और पार्टी की आगे की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। वहीं चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, सांसद डॉ सैयद नासिर हुसैन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक प्रदीप यादव और अजय शर्मा ने मुलाकात की। लोक जनशक्ति पार्टी आर के नेता बीरेंद्र प्रधान ने कहा है कि पार्टी विधायक जनार्दन पासवान राज्यसभा चुनाव में परिमल नाथवानी के पक्ष में मतदान करेंगे। उन्होंने दावा किया कि नाथवानी की जीत विकास की राजनीति को मजबूती देगी। सेल की लौह अयस्क खदानों में बायोमेट्रिक हाजिरी लागू करने को लेकर प्रबंधन और संयुक्त मजदूर

0: यूनियनों के बीच विवाद गहरा गया है। गोवा में हुई वार्ता बेनतीजा रही, जिसके बाद यूनियन प्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। यूनियनों का कहना है कि मामला मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए पुरानी उपस्थिति व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य में कथित त्रुटियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता मैपिंग का स्तर कम है। पार्टी ने त्रुटियों के सुधार के लिए विशेष विंडो खोलने की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
1: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
2: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा हित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नई दिल्ली में आज से 3 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन किया जा रहा है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा माई भारत ने कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, नीति निर्माण और संसदीय कार्यप्रणाली से जोड़ना है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में झारखंड से चतरा की राजश्री वीरा, रांची की मायरा कुमारी और रामगढ़ की निधि कुमारी राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। खूंटी जिले के एरेंडा गांव के किसान राम सिंह महतो ने बिना सरकारी सहायता के पोल्ट्री फार्म स्थापित कर सफलता की मिसाल पेश की है। पत्नी कीर्ति देवी के सहयोग से स्वयं सहायता समूह से ऋण लेकर शुरू किए गए इस उद्यम में आज 5,000 से अधिक मुर्गियां हैं। आधुनिक तकनीक और कड़ी मेहनत के बल पर वे लखपति किसान बन चुके हैं। किसान राम सिंह ने बताया कि पोल्ट्री फार्म से बढ़ी आमदनी के कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।
3: इसमें लगभग हम लोग को 2 पोल्ट्री फार्म बनाने में हम लोग को लगभग 15-17 लाख रुपए लग गया है। आमदनी इसमें 80-85 एक तक पहुंच सकता है, अगर ज्यादा मेहनत नहीं मरने से एक तक पहुंच सकता है। अभी तो हम लोग उम्मीद रखे हैं 80 तक गर्मी की वजह से।
0: पलामू जिले के पांडू थाना क्षेत्र में पूर्व माओवादी जगनारायण यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी उमेश सिंह को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार है। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और अब मौसम का हाल। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम सुहाना हो गया है। पिछले 24 घंटों में रांची के कांके क्षेत्र में सर्वाधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 19 जून तक राज्य के कई जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज गर्जन की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 17 और 18 जून को दूसरी दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका की राष्ट्रीय टीमें हिस्सा लेंगी। झारखंड राज्य थ्रोबॉल संघ के चेयरमैन डॉ राजेश गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता में करीब 150 खिलाड़ी और टीम सदस्य भाग लेंगे।
4: ये टूर्नामेंट खेलगांव में आयोजित की जाएगी। हरिवंश टाना भगत और जो अलग अलग कंट्री से खिलाड़ी चार देशों से आ रहे हैं, एक तो भारत का ही टीम है, ये 17 और 18

0: जून को खेल का शुभारंभ होगा, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका की टीमें भाग लेगी।
1: चक्रधरपुर की उभरती शतरंज खिलाड़ी अदिति ने रांची में आयोजित 25वीं झारखंड स्टेट चेस चैंपियनशिप में अंडर 13 बालिका वर्ग का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ उनका चयन आगामी राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के लिए भी हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड कैबिनेट में 23 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान किया गया एक रूप। झारनेट सेवा के विस्तार का निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स पहल का किया शुभारंभ। कहा ग्रामीण, जनजातीय और वंचित समुदायों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर विशेष जोर। राज्यसभा चुनाव को लेकर कल होगी जेएमएम विधायक दल की बैठक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज किया मुख्यमंत्री के साथ मंथन। लोजपा ने नाथवानी की जीत का जताया भरोसा। विकसित भारत युवा संसद 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। झारखंड की 3 प्रतिभागी राष्ट्रीय मंच पर करेंगी राज्य का प्रतिनिधित्व। और रांची में 17 जून से दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप का होगा आगाज। भारत समेत 5 देशों की टीमें लेंगी भाग। 150 खिलाड़ी होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
3: ब्रो, ये फटा है।
4: सुन, कते फते हैं पुराने नोट को
5: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ, नया नोट मिलेगा?
4: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
5: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
6: कूल रहो।
7: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता।
1: गोड्डा के सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी श्री दादी श्याम सेवा ट्रस्ट एवं लायंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में लगे इस शिविर में कुल 51 रक्तवीरों ने रक्तदान कर समाज के जरूरतमंदों की मदद का संकल्प लिया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन मुकेश कुमार गाड़िया मुख्य रूप से उपस्थित थे।
2: बड़ा दान है, महादान बोला जाता है। और मैं आप सभी मीडियाकर्मियों से यही बोलना चाहूँगा, आप लोग भी आगे आएँ, अपने भी दें, अपने परिवारों से भी दिलवाएं, अपने अपने मित्रों से भी दिलवाएं, अपने अगल बगल के लोगों को भी प्रोत्साहित करें। इंसानियत के प्रति हमारा दायित्व है कि हम इसको करें और आगे भी करते रहें।
1: जिले में गर्मी छुट्टी को लेकर विभिन्न संस्थानों की ओर से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। क्रम में जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से 10 दिवसीय समर कैंप के आयोजन के बाद समापन किया गया। क्रिकेट एकेडमी में आयोजित समापन कार्यक्रम के दौरान जिला सचिव रंजन कुमार, अध्यक्ष एचएम बोदरा ने पारितोषिक का वितरण किया। जिले के युवाओं के बीच मॉडलिंग एवं डांस का क्रेज बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों इसे और भी बढ़ावा दिए जाने को लेकर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोड्डा के नगर भवन में आयोजित डी डांस एकेडमी की ओर से सीजन 3 गोड्डा में करीब 25 पार्टिसिपेंट शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीपीओ बैद्यनाथ उरांव ने अपने संबोधन में कहा कि
3: सभी लोग, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे परफॉर्मर हो, बॉयज हो, चाहे गर्ल हो, सभी लोगों को यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दिखाने का भरपूर मौका मिला है और दर्शकों ने भी बहुत अपार प्यार लुटा है। इसी प्रकार से प्यार दुबार लुटाते रहे, अपार सहयोग करते रहे, निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम सफलता की ओर और ये सीजन 3 जो इतना शानदार जानदार अपने आप में नया रहा, आगे चलकर सीजन 4 जो होगा और भी इससे भव्य और आकर्षक होगा, ऐसा हमें विश्वास।
1: गोड्डा जिले में मादक द्रव्यों की रोकथाम एवं इसके इस्तेमाल के खिलाफ जोरदार अभियान चलाते हुए गद्दी नगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने 5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। जानकारी देते हुए नगर थाना प्रभारी दिनेश महली ने बताया कि
4: हमारे घर में राहुल कुमार शाह, पिता स्वर्गीय राजकुमार शाह, साकिन चपरासी टोला, विपिन सोनी, पिता मदन सोनकार, साकिन रोहतारा, नियर दुर्गा मंदिर, दोनों थाना गोड्डा नगर जिला गोड्डा के को पकड़ा गया और उसके पास से करीब 6 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया दोनों के पास से। इस संदर्भ में नगर थाना कांड दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। अपराधी का इतिहास रहा है, नगर थाना में भी रहे हुए थे और राहुल कुमार शाह के विरुद्ध चोरी का केस लगभग 5 केस है।
1: गोड्डा जिले में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा, इसको लेकर डीसी लोकेश मिश्रा ने बैठक किया है। बैठक कर उन्होंने जिला अंतर्गत संचालित सरकारी प्राइवेट क्लिनिक, नर्सिंग होम, अस्पतालों के संचालन पर बल दिया है। सिविल सर्जन के साथ हुई बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सरकारी प्राइवेट क्लिनिक, नर्सिंग होम, अस्पतालों का जिला एवं प्रखंड स्तरीय टीम बनाकर जांच कराएं तथा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर ध्यान रखें। उनके अनुसार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जो आवश्यक एक्ट शामिल है, इसके अनुसार पंजीकरण आदि की जांच कराने और प्रमाण पत्र के बिना संचालित ऐसे क्लिनिक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरव किशोर।
0: अभी आप सुन रहे थे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: नमे आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम मिनूर अयंग बंग अरा सनी कुहा भयाबिन बगारो निमन होरमारिन चंदा कुमारी अरा
1: संगीता बेगतरती
0: सौ से जिया मुंजरा ओ लगी अरा जोहार एकासेरा नए नमे कार्यक्रम मिनूर अर आसरा नंदम का आर होड़मर कोडेम दिमर अने होतंग और संगीता नीन एकासेरा दी
1: हाँ चंदा इन्हो कोडेम रे इन और इन अलग वैसे टटखा गुठी पाना लगी और एरे होले टटखा मन किया खद टटखा मोखा गे झुमटा मंच कराना है
0: सही बात की है
1: और अगर ताका चे बरचा होले गुट्टा मन किया आर तारी काली चे पुया गे सुरवा चा ओंगे बग्गे गरम हूँ मन लग गली है कमला
0: सही बात की
1: तो लगे अंती इन्ना नाम तनिक जानकारी गे ही कथा हूँ मिनुत परिश्रम से ही सफलता संभव और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
0: आयल जायत गई जिंदगी नु सफलता उन्टा अकय कोहा अड्डा ई हुरमा आले तंगे जिंदगी नु सफल मना बेदनर अरा तंगा सपना नन साकार नना बेदनर पढ़ू लिखू खद्दे दो नंबर उन्दरा बेदने अन्यम खिलाड़ी हूँ मैदान नु तंगा दो प्रदर्शन नन्ना गे मैदान नु इतने हाँ व्यवसाय ननु आले तंगा व्यापार नन मैया गुटी आबेदनर इबड़ा हुरमी लक्षणन खखा गे उन्टा साधन के अकय कोहा महत्वपूर्ण तली अधिके परिश्रम दुनिया नु इन्ने एकाम काम मल्ला जे की बेगार परिश्रम ही मनाऊंगी हाँ सफलता गई डहरे कठिनाई संघर्ष अरा चुनौती ती निंद कर ई और इबड़ा हुरमिन पार नना गे लगातार मेहनत नन्ना मनी औंगे बातारकिर ई का परिश्रम से ही सफलता संभव है
1: ईद के दाव कथा तिंकी परिश्रम गे ही मने दिम हिके का एक अम लक्ष्यानन हखा गे गुट्टा लगन निष्ठा अरा ईमानदारी गे ही संगे लगातार प्रयास नन्ना इच्छा एकला उये होले सफलता मल हकरी इदी गे आलेन कठिन परिश्रम नन्ना मनी और परिश्रम आलेन आतन आत्म निर्भर कमी अरा आर इन जिंदगी गे ही चुनौती नन सामना नना गे शक्ति प्रदान
0: हाँ एकदम सही बात की संगीता विद्यार्थी जिंदगी भविष्य गही न्यू बनर ई समय नु नंज का परिश्रम आलो गही गुट्टा जिंदगी नु नन प्रभावित ननी इदा का एक पढ़ू खद्दे लगातार पढ़ने लिखने समय गही सदुपयोग नन्ने अरा तंगा लक्ष्य नन केंद्रित नन्ने अरा निश्चित रूपे ती आर्गे सफलता खखर ईदिम
1: परीक्षा के ही समय अर्चका बीरी एकला पढ़े ए होले दाव परिणाम मल खकरी
0: मल खकरी
1: हाँ सफलता नन खखा के लगातार अभ्यास अरा अनुशासन नु रहना अके जरूरी रही अगर एरे होले नेका डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक सीओ बीडीओ अरा प्रशासनिक अधिकारी

0: बन्नर आर गही सफलता ही खोखा, इंदा बरिस गही कुहा
1: परिश्रम बहुत
0: परिश्रम
1: बहुत परिश्रम
0: मनी।
1: नन है यार। हाँ परिश्रम आलो गही आत्मविश्वास नन कोहा कम ई बढ़ा बी। एकाबिरी गा एकाम आले मेहनत नन ने आबिरी आरिन तंगा क्षमता मैया विश्वास
0: विश्वास
1: मनी
0: मनी
1: काली। हाँ एका आले मेहनत नन्ने आर सफलता ती माल घबराने। इंदर गे का आर गे तंगा मैया पूरा विश्वास मनी
0: मनी
1: काली। और आर्गी प्रयास ती उंदुल मला उंदुल सफल मनोरदिन।
0: मनोदिन
1: वास्तविकता ईद हुई हिके के भाग्य हूँ अरा आर ही दिम संगे ची जे मेहनत नन्ने और इन्ने बातार की रही का परिश्रम सफलता की कुंजी है। जिंदगी नु एकाम हूँ कोहा उपलब्धि
0: बेगर
1: बेगर
0: मेहनत
1: मेहनत ही
0: माल
1: नन्नर की माल
0: खकरी।
1: खकरो। ओंगे संगेर होरमरिन नमे होरमर संगेरिन एम सलाह ची दम का होरमरिन तमे जिंदगी ती आलस नन गच्छा है
0: अच्छा
1: बुनन
0: है
1: की
0: बुना
1: परिश्रम नन
0: नन्ना
1: अपनाना
0: मनो।
1: अपनाना मनो। अगर नाम हुरमत ईमानदारी लगन अरा कोहा संकल्प हो और की मेहनत नो थोले एक काम हो लक्षणन खखा उंगो तो ओंगे नाम बहुत का परिश्रम ही से ही सफलता
0: संभव
1: संभव है।
0: है। तो संगियर रो बरा अंति ना नाम प्रधानमंत्री योजना गई पैतनु हूँ कसना खरोत नमे राजी भारत राजी उन्टा विकासशील राजी तली। एक्सन का जनसंख्या गही कुहां भाग स्वरोजगार छोटे छोटे व्यापार अरा लघु उद्योग मैया निर्भर मनी। नमे राजी गही आर्थिक प्रगति नु छोटे अरा मध्यम व्यापारी घी महत्वपूर्ण भूमिका मनी। लेकिन दीघा समय गुटी छोटे छोटे व्यापारी दुकानदारर कारीगर महिलार अरा पद्दा खेपता व्यापारीर गे पर्याप्त वित्तीय सहायता माल खखराऊंगी। बैंक ती ऋण होना गी प्रक्रिया कठिन मन्नती कैनो आलय तंगा व्यवसाय न शुरू आगे अरा आगे बढ़ अब आगे कठिन मना आगे कठिन मना लगिया आऊंगी। ई समस्या नन एरर की दिन गेच्छा नन आगे नमे भारत सरकार 8 अप्रैल 2015 बरिस उल्ला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत मंजा।
1: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की उद्देश्य छोटे छोटे उद्यमीर बेगार एक काम कोहा गारंटी थी ऋण उपलब्ध नन्ना अरा आरिन आत्मनिर्भर कमना। ई योजना नमे भारत राज्य नु स्वरोजगार नन बढ़ावा न चीना बेरोजगारी न चुक्की नन्ना अरा आर्थिक विकास नन गति चीन ची आगे महत्वपूर्ण योजना ची
0: दन ची
1: आगे।
0: अलगी। हाँ तो संगियरु ई योजना की अंतर्गत बग्गे ती बग्गे 10 लाख 50 लाख डिबा 10 लाख ती 50 लाख गुटी डिबा हकरी।
1: अच्छा
0: ई डिबा नन हो आगे सेब्बा तरीका कम ताज के रही दीती बग्गे ती बग्गे आलर लाभ हो आउंगनर। ई योजना की फायदा मुक्के जवान कुके कुकोर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अरा उर्मा पात्र आलर गे हखरी। ई योजना पुनः पुनः व्यवसाय ननु आलरिन प्रोत्साहित ननी इदिती रोजगार गे अवसर बढ़ रही। ई योजना आ आलय गेहूँ बैंक बैंक व्यवस्था ती जोड़ रही ने का आगे वित्तीय सेवा ती गेच्छम रहचर। और हाँ प्रधानमंत्री योजना घी लाभ हो आगे इबड़ा घी मन्ना आके चाड़ रही। पहला ही के आवेदक ननु आलय भारत राजिता मनना चाहिए और दूसरा ही के का 18 वर्ष ती मैया मनना चाहिए और
1: अच्छा
0: तीसरा ही के व्यवसाय गैर कृषि क्षेत्र ती संबंधित मनना चाहिए और चौथा ही के व्यवसाय छोटे स्तर ता मनना चाहिए और पांचवा ही के आवेदक ननु आलय हृदय व्यवसाय ती संबंधित उचित योजना मनना चाहिए।
1: और संगे संगे मुद्रा योजना नन हो आगे ई दस्तावेज की जरूरत मनी जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड आवासीय प्रमाण पत्र फोटो बैंक खाता ही विवरण व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज। पद्दा खेपा नु रोजगार ही अवसर सीमित मनी। मुद्रा योजना पद्दा त उद्यमिता नन बढ़ावा बढ़ावा ची और पद्दा त नु आर्थिक गतिविधि नन प्रोत्साहित ननी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार गही उनटा महत्वपूर्ण अरा जन हितकारी योजना तली। ई योजना उनटा ऋण योजना मल्ली पहे करोड़ों आलय गे आत्मनिर्भर आत्मसम्मान अरा आर्थिक प्रगति गही डहरे।
0: डरे के
1: हाँ
0: हाँ लेहनती परिश्रम ती सफलता संभव अरा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गही कथा का मुंजरा अंतरिक्ष रंग नन्ना गही बेड़ा हूँ मंजा केरा औंगे नाम अकुन डंडिन मेनोत जत्रु उराव अरा संगियर तरती।

0: डंडी का अकय बढ़िया लग गया और इदि खोखा नाम मिंदत पानी की बचत आज की आवश्यकता और इदिन इदि पैतनु बाचका रहदस यदुवीर भगत।
1: इदिम नाम है जिंदगी तली इदिन नाम उर्मा आलत अखदत उर्मी मेनते आरा बाते बरा लगदत आम बछावा जिंदगी बछावा पहे नेगा ईखीरिन पत्ता नर आम गही उन्टा उन्टा टिप्पन सेवना आरा बछावा ना इन्ना ता कोहा चार तली खेखेल नु उज्जागे उर्मी जिया कया मन मांस ओड़ा खाखा खिती पुती उर्मी छोटे कोहा जिया गे आम गही चाड़ रही नमहाय खेखेल दिम आम बेगर आम पुल्ली खेखेल नू आम मंडी ती बग्गे चाड़ रही इंद्रगे का शरीर नमहाय आम गही दिम रूप तली आम उन्ना गही संगे उर्मी नलक आम तिम मनी आम नमहाय खेखेल नू खाखरना जिनिस उर्मिन ती कोहा अरा पवित्र जिनिस तली आम दिम तंगा आलत गही जिंदगी हिके आलर अरा छोटे कोहा जिया बेगर मंडी गही तनिक उल्ला उज्जा उंगनर पहे आम बेगर जिया गही कल्पना नन्ना अकय मस्किल हिके नमहै शरीर नू बेस उइया गे अकय चाड़ मनी इदि ती सोचा उंगदत आम नामागे इंदा लेखा बग्गू चाड़ रही नाम पोखरा झरिया नाल आरा समुद्र ता अम्मेन उन्ना पोलदत इंद्रगे ईद उन्ना लेखा आम मल्ला मला रही नाम सफा आरा मीठा आम गही चाड़ रही इंदिरा काड़ खेखेल कियन ता आम मीठा अरा सफा आम मनी बढ़िया लेखा आम मला खखरना गही चलते आलर बीमार तक मन्नर कानर महामारी लेखा रोग मनी काली नमह खेखेल नू तीन पक्खे आम रई पहे नामा अदिन उन्ना पुलदत दू भाग नू अम्मे दिम उन्ना लेखा रई नमाय खेखेल नू आलत गही गिनती बग्गू रही अरा उल्ला उल्ला बढ़की काला लगी उर्मत गेम आम गही अकय चाड़ रही पहे आम घटकी बरा लगी इदिन अखा पुलदत नमा गे उन्टा उन्टा टिप्पन बछा बना गही चाड़ मन जाकेरा इंद्रगे का नमा आम गिनचका गोत्सका लेखा साधन ती आम खखरी इसकन गा 20 बरिस मुधारे 20 ती 40 फुट किया अम्मे खखरा लगिया पहे आदिम अकुन 90 ती 100 फीट किया खखरा लगी एक्सन गा 1000 फुट ती किया मंजा केरा अरा सफा मीठा आम मला खखरी आउंगे नाम अम्मन अकय चाड़ समझर अर की खर्चा नन्ना तली नमहै बरखा अम खाड़ ढोढ़ा अरा नाल ती कालर की समुद्र नु मिल रही काली आसन कालर की खारा मना काला लगी इदी गेम बाचका अरा टूड़ का रानर का टिप्पा टिप्पा ती खाड़ नींदी अन्यम टिप्पा टिप्पा ती अम मुजरी काली मुदा चाड़ रही का अमन खोड़ार की नेला गे बछा बना आकाय चाड़ रई नाम अम्मन एकासे गा बछा बहुत खाड़ अदिन राजिन त जिया मननार पहे अकुन खाड़ हूँ खाया काला लगी बतिया दत बतिया केरा अरा धूली चोआ लगी इंदिर गे आलर प्रकृति ता खखरका सुविधान मुंजा चे आनर उर्मी तरा मन मांस खंडरा लगी एड़पा पली बना लगी तनिक सोचा कि चेप मल्ला बर ओ हो तो खेती पुती एकासे मना मनो आरा आम एक्सता रहो खेखेल नो आलत गही गिनती गा बग्गे रही आलत होशियार रदत पहें अम्मन बछावाना गही डहरे नू मला एरदत सरकार इदी गे साल ता 22 तारीख बैसाख नु आम बछाव आ दुल्ला मनावी अरा याद नंती आम बछाव आना चाही इदी गही महावन आलर ही ध्यान नु उंदरी मुदा नाम आम गही उन्टे उन्टे टिप्पन माला बछाव अदत होले नमाय बरना पीढ़ी गे आकाय कोहा परता लेखा समस्या बर आऊंगी इदी गे आम गही बर्बादिन रोकना छेकना मनो नाम अकदत दिम का आम रई तभेम नेलांता जिंदगी रई आम दिम नमाय इन्ना ता चाड़ हिके उर्मिन ती मुंधेनु इदी गे आम गही बर्बादिन रोकना रई राजीनु कई अड्डा नल बेगर जरूरत गही चल रहा लगी आदिन बंद नन्ना बेगर जरूरत गही सफाई गे आम बग्गे खर्चा नन्ना चलना नलन आदिन बंद मल नन्ना एक आम आलर गे बंद नन्ना गे जीमा मला होना एमना किचरी नोड़ना नू कई गुना आम बर्बाद नंदत चिदत उचुक सोचातो जेठे महीना नु मेरखा नु उड़ियार ना ओड़ा ओंद टिप्पा आम खत्री तंग है जियन गावा भी इची बाना रई का आम जिंदगी गही डहरे हिके नाम इदिन बछा बाना सेवना रई होले इदिन खोड़ना मनो इदिन बछा बागे राजी नु पद्दा खेप नु उर्मी आलत गे जिम्मा होना मनो ई लेखा आम गही समस्या ती बछरा उमतार ई नामा गे तंगा स्वार्थी लेखा जीनिस अदिन अम्बना अरा आम गे कंजूस लेखा मन्ना तली एन्ने नु उचुक अम्मे बछरा उंगो शहर नु आलर सावरती एमना असन बाल्टी ती एमना पड़ो खेखेल ती आम खखरी इदी डीप बोरिंग मला ननोर अरा अन्ने नु आम गही दोहान मनी सरकार इदी गे उपाय तिंकी रही उपाय ननी का वाटर हार्वेस्ट कामना अरा बरसात अम्मन बछाव अर की आदि गही उपयोग नन्ना चेप अम्मेन खोड़ार की बटगी किचरी नोड़ना एम आगे आम खर्चा नन्ना सकनर अड्डा अड्डानु चेक डैम लिफ्ट इरीगेशन लेखा उपाय ती आम बछाव अर बछरा उंगी मन मास अधिन मला खंडना चाही इबड़ा उर्मी नलक नन्ना मनो नमहाय राजी खेती बारी गही राजी तली इस्ता इदिम उन्टे उज्जा ओकना गही साधन तली खेती पुती गे आम गही चाड़ मनी पहे इदिन आम सेवते बछा बनानु ख्याल मानी मला मनी अरा आम बर्बाद मनी आम सहजती खखर का जिनिस तली आउंगे नाम आलत ध्यान मला काली अरा कई गुना बग्गू आम बर्बाद नंदत नाम उर्मत गे ध्यान चीना मनो का उचुक अम्मे ती तंग नमहाय खेती मना उंगो मैया टूटकर ई का नमहाय राजीनु तीन अरब आलर गे मानिम दुप्रतिशत अम्म खेखेल नु रई 20-25 ईस्वी अड़स्ते तीन अरब आलत गे चार गही अम्म गही खत्री ललारना मनो इन्ने बरने वाला रई आउंगे इदिन नमागे खेती पुती ननागे जल संरक्षण ता तकनीक लेखा लूरन आखना मनो ड्रीप इरीगेशन स्प्रे सिंचाई लेखा पटवन चेयर की खेती नन्ना मनो उर्मी खेती गही हिसाब ती इदिन पटाब अदत उचुक अम्मे लगवाना वाला खेती नन्ना चाही पैदा बग्गू मनना चाही बरसात बिड़ानु मन मास इधर की पर्दना उंगदत एन्ने खेती नानर की राजिनता उर्मी नु अम्मेन बछाव उंगदत शहर नु नलती चाड़ गे अम्मे उतरना चाही कि नल अधिन बेच लेखा बंद नाना के जिम्मा होना चाही। नाम उर्मत गे ठानना मनो जिम्मा होना मनो का अम्मन सेवना रही। अम्मे नामा धर्मे सी गही चिचका उपहार तली आउंगे गा इन्ना उल्ला चाड़ अम्मे गही सेवना दिम तली।
2: संगियारो नमा एका से अमगे ही बचत नन्ना रही। नाम मिंचकत बरा नाम और उनका डंडी मिनोत पढ़कर नरझिरगा भगत रासंग।

0: इन्ना ता आदिवासी कार्यक्रम अखड़ा कार्यक्रम ही बेड़ा गा मुंजरा लगी इन्ना ता कार्यक्रम ही प्रस्तुति रहचा श्री प्रदीप कुमार सर तरती सूत्रधार एकदम चंदा कुमारी
1: रासंगीता बेग
0: मिनूर्ति फिर भेट नागे बबर ओम होरमारी चंदा कुमारी आरा
1: संगीता बेग तरती
0: ओ लगी आरा दौमाखा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा उरांव भाषा में, और आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से बुनियाद कार्यक्रम लेकर हंसते खेलते आपके घर आंगन में आ गया। हंसना खेलना इसलिए जरूरी है कि उससे आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे और इसी सोच के साथ बुनियाद कार्यक्रम को सुनेंगे, जिसमें हम नए नए कोर्सेज की आज चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से, पिछले एपिसोड में हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, जी हाँ, इसके बारे में बताया था। बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बताया था। इसके अलावा एक कोर्स और है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। एक बार फिर से आप लोगों के अनुरोध पर आपने क्वेरीज की, बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए और कहा कि एक बार फिर से सारी जानकारियां दिलवाई जाए, तो आज फिर से हम एक बार उसी पर चर्चा करेंगे। और वो कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। और हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले दो बातें हम कर लें। बहुत सारे फोन कॉल्स आए जब हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बातचीत की थी। हाँ, डॉक्टर नीरज से हमने बातचीत की थी और जानकारियां दिलवाई थी। पूरे बिहार से फोन आया वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था। अच्छा लगा, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सोमवार के दिन बने रहना होगा इसी समय इसी मीटर पर। एकदम आपके लिए खोज कर ऐसे कोर्सेज को हम लाएंगे और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में ये कोर्सेज इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं आप युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए। जी हाँ, और तीन कोर्सेज हम बार बार कह रहे हैं, हमने बातचीत कर ली है बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर। ढेर सारे फोन आए हैं, सारे सवाल हमने रखे हैं। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एक नया कोर्स है, और आज जिस पर चर्चा करेंगे वो है फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, इस पर आज चर्चा करेंगे, विशेषज्ञ को बुलाएंगे। लेकिन फिर भी हम बार बार कहते हैं, राजेश बार बार कहता है कि भैया, छोटे छोटे भाई, बड़े बड़े भाई, बड़े बड़े चाचा, बड़े बड़े दादा, अब आप समझ लीजिए कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। हाँ, टेक्निकल पढ़ाई कर लीजिए, हाँ, बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा हम समझते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई की गई ना, तो विशेषज्ञता हासिल होगी, और वो विशेषज्ञता आपको जीवन में खड़े होने का आधार, मजबूत बुनियाद देगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर पहले बता रहा हूँ, 1800-121-0051, 1800-121-0051। और एक जो मोबाइल नंबर है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, वो है 9431899002। और एक वेबसाइट भी है www.gnsu.ac.in। ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं कि बहुत सुलभ कर दिया, अब सुनते सुनते जानकारियां मिल जाती हैं। किसी दूसरे माध्यम में तो पढ़ना पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता है, और ये तो काम करते करते बाजा बज रहा होता है और जानकारियां मिल जाती हैं। धन्यवाद आपका कि आप इतना कंसर्न हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि हम आपके फायदे की बात करते हैं। बहरहाल, चलिए आज बातचीत करते हैं फिजिशियन, हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, इस विषय में क्या पढ़ाई है, कितने दिन की पढ़ाई है, रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में अगर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है तो क्या सिस्टम है, सारी चीजों पर बात करेंगे। चलिए आज के अतिथि से सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय।
1: नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआर।
0: उम्मीद है आप ठीक से होंगे। एक व्यक्तिगत सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। उस जमाने में, हाँ, ये कोर्स जो है ना कोविड था, ना कुछ और चीजें थी, तो इस तरीके के कोर्सेज को चुनने के लिए आपको किसने प्रेरित किया, क्या सोच थी उस समय?
1: नहीं, वो तो जब मैं बचपन में जब क्रिकेट देख रहा होता था या कोई भी स्पोर्ट्स देख रहा होता था, जैसे किसी खिलाड़ी को चोट लगी तो मैं देखा कि कोई जना आया, उसने कुछ लगाया करा, एक्सरसाइज कुछ कराई, नौ खिलाड़ी वो फिर से खेल रहा है। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये क्या है, तो पता चला कि ये फिजियो है। तो फिर मेरा उस वक्त से थोड़ा सा इंक्लिनेशन आया कि इस कोर्स के प्रति कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए, और फिर जाके फिर मैंने ये कोर्स।
0: नीरज जी, जमाना बदल गया, बहुत पानी बह गया। हाँ, आज टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, और टेक्निकल पढ़ाई के विषय में क्या कहना चाहिएगा आप?
1: क्योंकि अब हर कोई चाह रहा है कि हमें इमीडिएटली पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, और इसके लिए टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन। उसी के बाद ही हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे।
0: टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन फॉर जॉब, फॉर ए बेटर फ्यूचर, है ना? इसीलिए कहते हैं भैया, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इधर उधर मत तको। इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ अगर आपने किया है तो हेल्थ सेक्टर में टेक्निकल पढ़ाई की भरमार है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, और आज चर्चा करने जा रहे हैं बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। हाँ, इस विषय में क्या, कहाँ, कैसे हो सकता है कुछ भी बताएंगे। बहरहाल नंबर एक बार बताएं, फिर डॉक्टर नीरज से हम पूछेंगे बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के बारे में। नंबर नोट करें 9431899002, 9431899002, और 1800121001। डॉक्टर नीरज बताइए। हाँ, हमारे सुनने वालों को, युवा साथियों को, उनके माता पिता को बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के विषय में।
1: ये बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज ये 4 साल का कोर्स है, और इसमें जिस 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव है MBBS का। जैसे इस कोर्स को करने के बाद जो फिजिशियन एसोसिएट होते हैं वो पेशेंट की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये दोनों काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन। यानी इनका काम है फिजिशियन को एसोसिएट करना, यानी फिजिशियन को असिस्ट करना। कई दफा ऐसा होता है, बहुत सारे दूर दराज के सेंटर होते हैं जहां पर प्रोफेशनल या हाईली प्रोफेशनल जो फिजिशियन की पहुंच नहीं हो पाती है, तो वैसे दूर दराज के सेंटर में, कम्युनिटी सेंटर्स में, ये फिजिशियन एसोसिएट अपना रोल अदा कर सकते हैं, जहां वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए पेशेंट को देख के उनकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, और कंसल्ट करके जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, जिस फिजिशियन के अंडर वो काम कर रहे हैं, उनसे कंसल्ट करके उनको वो इलाज भी दे सकते हैं।
0: कितने सीटों के साथ आपने इसकी शुरुआत की है इस यूनिवर्सिटी के अंदर?
1: ये हमने अभी 30 सीटों के साथ स्टार्ट किया है।
0: क्या एलिजिबिलिटी है?
1: हाँ, इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 45% मार्क्स एग्रीगेट।
0: कैसे बच्चे आ सकते हैं?
1: नहीं, जो बिल्कुल जो अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए और पेशेंट वेलफेयर के लिए, जिनका मोटो है कि वो चाहते हैं कि हम समाज का कल्याण करें, हम पेशेंट का कल्याण करें, वो बच्चे इसमें एडमिशन लें, क्योंकि इसका मेन उनका रोल है पेशेंट वेलफेयर, पेशेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट केयर।
0: अपॉर्चुनिटीज पढ़ने के बाद,
1: इनकी अपॉर्चुनिटीज इतनी हाई डिमांड बढ़ी हुई है कि भारत में, जैसे हम सबको पता है, आप लोग न्यूज़पेपर में भी, हम लोग न्यूज में भी देखते हैं कि डॉक्टरों की कमी है, और अस्पतालों में इसलिए ट्रेंड फिजिशियन एसोसिएट की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रिसेंट डेटा कहता है कि अभी तक 28% इनकी डिमांड बढ़ी है फिजिशियन एसोसिएट की हमारे अस्पतालों में। साथ ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों, इमरजेंसी सेवाओं और डायग्नोस्टिक सेंटरों में भी 90% तक संभावना है प्लेसमेंट की, और साथ ही साथ इनकी विदेशों में भी ऑप्शन है, जैसे इनकी यूके, यूएसए जैसे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने की बहुत ही अच्छी संभावना है।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूं राजेश, और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर नीरज। जानकारियां दी जा रही है, एक नया कोर्स आया है, सिर्फ 30 सीट है, ओनली 30 सीट्स है, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज का, इसके बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। टेक्निकल पढ़ाई बार बार कहते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियो कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, ढेर सारे सवाल आए हैं, आने वाले सोमवार के दिन हम उसका उत्तर देंगे। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के विषय में आने वाले सोमवार को एकदम बताएंगे ही बताएंगे। फिलहाल आइए जानते हैं डॉक्टर नीरज से, जहां 30 सीट ही आया है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। सबसे पहले नंबर बता दें एक बार, 9431899002 और 1800121051। हाँ डॉक्टर नीरज, नया कोर्स आया है, हाँ सारा कुछ नया नया है, बच्चे नए होंगे, सब कुछ नया होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या तैयारी है आपके यहाँ ओवरऑल?
1: फिजिशियन एसोसिएट के लिए हमारे पास ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सारे अवेलेबल, जो हमारे पास क्लासरूम चाहिए वो हमारे पास है, जो लैब चाहिए वो हमारे पास है, इसके अलावा क्लिनिकल पेशेंट प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास अपना हॉस्पिटल NMCH हॉस्पिटल है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो 1200 बेडेड हॉस्पिटल है लगभग, वहाँ हमारे बच्चों का हैंड्स ऑन एक्सपोजर होने हम कराएंगे हमारे बच्चों का। क्लासेस कराने के लिए टीचर्स के लिए हमारे पास अपने फिजिशियन एसोसिएट टीचर प्रोफेशनल्स हैं, साथ ही साथ जो मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास मेडिकल फैकल्टी है, मेडिकल टीचर्स हमारे पास। चूंकि आपको पता है कि हमारा गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही बड़ा कैंपस है, इस कैंपस के अंदर हमारे पास सारी बेसिक सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, साथ ही साथ स्टाफ टीचर और उनके लिए भी एकोमोडेशन है, फ्लैट्स हैं, क्वार्टर्स हैं, और जो भी बेसिक नीड की जरूरत होती है सब हमारे कैंपस के अंदर मौजूद।
0: डॉक्टर नीरज, बहुत बहुत पहले तो बधाई कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और हमें पता है कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में जब तक पूरी तैयारी नहीं होती कोई कोर्स शुरू नहीं किया जाता। लेकिन एक सवाल हम बच्चों की तरफ से पूछना चाहते हैं कि बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल पढ़ाई, अंग्रेजी में बातचीत, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी जो लेकर आते हैं और यहाँ आकर, क्या उन बच्चों के झिझक को आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में तोड़ने के लिए कोई व्यवस्था, उनकी अंग्रेजी या कोर्सेज के बारे में जानकारी, या उनके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कोई सिस्टम?
1: नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने। नहीं, हमारे यहाँ हम लोग जैसे बच्चे हमारे एडमिशन होता है तो शुरू के एक महीने हम उनका सिर्फ इंडक्शन प्रोग्राम चलाते हैं, ताकि उनको हम इस कोर्स के बारे में अवगत कराएं। हम सिलेबस स्टार्ट नहीं करते हैं शुरुआत में, पहले हम कोर्स को अवगत कराते हैं, ब्रिज कोर्स काइंड यू आप कह सकते हैं, कि अभी चूंकि जस्ट वो इंटर पास करके इस प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन के कोर्स में आए हैं, तो उसका जो गैप है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। रहा बात इंग्लिश का, तो हमारे यहाँ के जितने भी टीचर हैं वो ड्यूअल मोड में पढ़ाते हैं, दोनों मोड में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश, कम्युनिकेशन इंग्लिश की क्लासेस भी लगाते हैं बच्चों के लिए। और हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं सर, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं, जब वो फर्स्ट ईयर में आते हैं तब उनसे आप पूछेंगे, जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनका क्या स्टैंडर्ड या क्या लेवल रहता है, और अभी उनका आप देखेंगे लेवल और स्टैंडर्ड, तो पीरियोडिकली दे आर इम्प्रूविंग देमसेल्व्स। और इस पे हमारे टीचर, हम लोग बिल्कुल मिलजुल कर काम करते हैं, और हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है।
0: थैंक यू प्रोफेसर नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप सबों के गाइडलाइन में जो बच्चे आएंगे, 30 बच्चे आएंगे, उनका सही मार्गदर्शन होगा, सही पढ़ाई होगी और करियर की नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी। अभी हमारी बातचीत चल रही थी बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, ये एक नया कोर्स आया है, इस पर सिर्फ 30 सीट है इंटरमीडिएट बायोलॉजी के लिए। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026, रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
5: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा हित में जारी।
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। ये गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म धड़कन से।

धड़कन फिल्म से आप सुन रहे थे ये प्यारा संगीत अभिजीत भट्टाचार्य एवं अलका याग्निक के स्वरों में, शब्द रचना समीर की एवं संगीत नदीम श्रवण का। और आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म लव से।

0: लव फिल्म से आप सुन रहे थे कार्यक्रम का आखिरी गीत। और आइए अब सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
3: धन्यवाद।
2: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किसमें गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
3: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूं और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपने इंपॉर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूं कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
2: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
3: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूं तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। पीएमएवाई प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले पीएमएवाई 1 था, पीएमएवाई 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। तभी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिव के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो टीओडी बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए और उसमें कम से कम जो ट्रेवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रेवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें टीओडी पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही हैं और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे मोबाइल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है इसलिए सीधी योजनाएं हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। पीएमएवाई में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
2: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना है लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके

0: ये फोकस है, बहुत चीजें हैं। केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है, तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहां घरों में जगह नहीं है वहां कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं, और सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए, ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है, और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपके रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें खास करके जमीन बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार हैं, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है, तो 15 साल में दुगने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है, और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी, उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन, टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है, तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है, आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है, और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता है। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहां अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं, वहां लोगों को रहेंगे तो रोजाना 1/2 घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की, और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे कैसे समझे इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना,

0: उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है,
1: जैसे अभी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि तीन गुना ढाई गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा सात कस्बा था, तो मुझे लगता हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी, एक डेढ़ लाख की आबादी थी, ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहां 40 लाख हो गई है, और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था कि गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रांग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 की योजनाएं चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टियर 2 टियर 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को हमने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं। 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती है मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, तो उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया, और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरी बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपए ले ले, उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का यूपीआई कार्ड भी देंगे जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट, 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख

0: लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं। 75,00,000 लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40,00,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है, और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में, और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं, जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कंप्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझे?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए, टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सॉल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था, और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए, तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहां ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी मोवा की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में, तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में, शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे, और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का, ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, तो एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है, और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है, जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है, रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते एनवायरमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए, जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहां मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंका जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारी ने बनाया, और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई, और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं, लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते, लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका यह है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जो बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है। घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं।

0: कहते हैं कि बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती हैं तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: कि चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में देकर के उसमें से पैसे भी कमाए तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिलाकर 78,000। 78,000 भारत सरकार देती है, टॉपअप जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उससे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है, कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसको इनकम भी हो जाए,
1: इनकम होने लगे।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूं, किसानों की बिजली भी प्राय प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो, वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं
1: जी। पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूं, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो, शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूं कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है, वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। This is Akashvani. In this special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, now we bring you an interview with Manish Sabharwal, co-founder of Team Lease Services. Interviewer is Anil Padmanabhan, senior journalist.
3: Over the last 12 years, India has strived to make a gradual transition towards a more rules-based, trust-enabled economy through labor reforms, digitization, decriminalization of laws, under the Jan Vishwas framework, India strived to reduce friction, formalize the economy, and rebuild trust between the state.

0: उन पर विशेष कार्यक्रम
1: समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी M. पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों

0: के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
1: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: और न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रूपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रूपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी

0: लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। 1000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
4: एलएनजी कैरियर दिशा
5: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
3: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य, रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

घर बनाते हुए इसे जाम शराकत दारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग। श्रोताओं, आज के दौर में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और तनाव हम सबको घेर रही हैं। ऐसे में जरूरत है हम दवा से पहले परहेज और बचाव की ओर ध्यान दें, और यही काम करता है हमारा प्राचीन विज्ञान योग। ये कहा भी गया है कि योग भगाए रोग। योग केवल आसन नहीं है, यह संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर को निरोग, मन को शांत और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पहला सुख निरोगी काया, इस कहावत को सच करने का सबसे सरल और सुलभ उपाय है योग। आज इस विषय की गहराई को समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। दोनों विशेषज्ञों का अनुभव लाखों लोगों के जीवन को स्वस्थ दिशा दे रहा है। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे योग को अपनाकर हम अपनी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और स्वस्थ तथा सुखी जीवन जी सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में योग और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के शुरू में सबसे पहले कमल जी, आपसे जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए कौन सी योगासन और प्राणायाम रोज करने चाहिए?
1: जी मुकेश जी, धन्यवाद। बदलते मौसम के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है कि हम लोग आग नाक कान को ठीक रखें। तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम होता है
0: जी,
1: जो गले को बहुत अच्छे तरह से ठीक रखता है। साथ ही साथ हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं, जैसे नाक में, नासिका में तेल डालना
0: जी,
1: और डेली बेसिस पे डालें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग और सिंह गर्जना कर सकते हैं। इससे गले की खराश ठीक होगी और गला ठीक रहेगा, तो बदलते मौसम में फिटनेस बनी रहेगी
0: जी। अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल नींद ना आना एक बड़ी समस्या है, अनिद्रा के लिए कौन सा योग सबसे कारगर रहता है?
2: अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाने की आदत होनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। ध्यान लगाएंगे, जैसे ही आप लेटेंगे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, अपने आपको थॉटलेस हो जाइए
0: जी,
2: सबसे बेस्ट ये है। बाकी आप जो है ना मोबाइल को दूर रखें सोने से एक घंटा पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी
0: जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इस बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं हिसार से, राजेंद्र। राजेंद्र, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञ से क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
3: नमस्कार जी मुकेश जी और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता जी, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द अक्सर रहता है और जो बैठने का काम करता है उनको ज्यादा ही, और कुछ काम करने से भी घुटनों का दर्द ज्यादा और कमर का दर्द बढ़ जाता है, और ये योग करना चाहिए, कौन सा स्टेप है जो करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और इसके बारे में जानना था। जब डॉक्टर साहब गले के बारे में बता रहे थे, अक्सर लोगों को गले का कैंसर बहुत ज्यादा आ जाता है
0: जी,
3: तो उसके बारे में भी कोई योगा का स्टेप है तो उनके बारे में भी बताएं। नमस्कार जी।
0: मुझे लगता है इन्होंने कई सारे प्रश्न एक साथ कर दिए हैं जी, बताएं।
2: हाँ देखिए, कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है आप ना भुजंग आसन करें, बहुत आराम आराम से करें, मरकट आसन करें। यदि कमर में दर्द है तो भी आप मरकट आसन कर सकते हैं
0: जी।
2: और आपने जैसे बोला कि घुटनों में दर्द है तो आप हल्दी, मेथी, सौंठ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर शाम को दूध के साथ 5 ग्राम ले लें
0: जी।
2: तो ये कंटिन्यू आप लेंगे तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। गले की जहां तक आपने बोला है कि गले में है तो उज्जयी प्राणायाम करेंगे और आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा। गले में भी लाभ होगा, जैसे मौसम के बदलते हुए उसमें गुनगुना पानी करके उसको उसका सेवन किया करें, गरारे किया करें तो गले में आपको लाभ होगा
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल जी, हरिद्वार से रवि जवालिया। रवि जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है आपका।
4: हाँ जी नमस्कार जी, और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार
4: जी, और सबसे पहले आप सभी का आज पवन दिवस है जी, विश्व पवन दिवस, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, सभी जानते हैं। तो सर मेरा जो वर्क लोड है वो मतलब कंपनी में मेरा ज्यादातर बैठने का कार्य है जी, तो उसके लिए मुझे क्या कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि मुझे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो, हड्डी में या कोई भी फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि ज्यादातर मेरा बैठने का ही कार्य है जी काम कंपनी में। और एक और क्वेश्चन और है कि क्या मतलब जो मुझे काउंटिंग करनी होती तो क्या म्यूजिकली काउंटिंग से भी एक मतलब रिदम बन सकता है मेरा।
1: धन्यवाद रवि जी, और आपका जो आप प्रश्न है उसमें ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न है, क्योंकि सारे लोग मैक्सिमम ऑफिस में ही काम करते हैं बैठने का काम, तो ये आपके माध्यम से उनके भी काम आएगा। इसके लिए आप चेयर पे बैठे बैठे भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे पैरों को हिलाना, पैरों की मूवमेंट करना, लेफ्ट राइट पैरों को लेके जाना, हड्डियों के लिए जैसे आपने बताया उसमें भी कारगर करता है, ठीक है। और पैरों की रोटेशन जो होती है कई तरह से हो सकती है, ठीक है, लेफ्ट राइट लेके जाना, उंगलियों को दबाना छोड़ना, सांसों के साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में आप उठने का प्रयास करें हर 2 घंटे बाद, और अपने डेस्क के आसपास पानी जरूर रखें, क्योंकि पानी अगर बीच बीच में ज्यादा पीते रहते हैं, कि बॉडी हमारी 70% पानी से बनी हुई है
0: जी,
1: तो पानी की कमी भी बहुत सारे रोगों का कारण बनती है, तो आप इसको करें आपको निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
0: बिल्कुल लाभ होगा। और अनिता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी के मरीजों को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, उनके लिए क्या सावधानियां।
2: हाँ, हाई बीपी के मरीजों को एक तो आसन बहुत धीमी गति से करने होते हैं
0: जी,
2: फास्ट कोई भी आसन नहीं करना है, और सबसे बेस्ट उसके लिए जो है सब आसन है, कहने में तो बड़े हंसी की बात आ जाती है
0: सभी के लिए।
2: हाँ, लेकिन जैसे हाई बीपी होता है तो आप सब आसन में लेट जाएंगे तो आपका बीपी 5 मिनट में काफी कम हो जाएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान करें। सब आसन का मतलब होता है वही थॉटलेस होकर सीधे लेट जाना, लंबे गहरे श्वास धीमी गति से भरना और धीमी गति से छोड़ना।
0: और इस समय हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश नेमा। राजेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका।
5: जी मैं सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ
0: जी,
5: और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे तो बहुत बधाई। और मेरा सवाल ये है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए योग का कौन सा आसन श्रेष्ठ है
0: जी, बताएं।
2: हाँ, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम है
0: जी,
2: और उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम है, लंबे गहरे श्वास भरना और लंबे गहरे श्वास छोड़ना एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, तो वो जो है आपकी श्वसन क्रिया को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद पहले तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम जितना समय, यानी कि आपने सपोज 2.5 सेकंड समय श्वास को भरने में लगाए हैं, तो कोशिश करें 3 सेकंड को श्वास छोड़ने में लगाएं
0: जी।
2: तो इस तरीके से करना है, फिर धीरे धीरे क्या करना है, 2.5 सेकंड में रोकना है, 2.5 सेकंड भरना है, फिर 3 सेकंड छोड़ने में लगाना है। छोड़ने में अधिक समय लगाने का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके श्वासों का रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा उसमें
0: जी। कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए सवेरे उठकर कौन से 3 योग करने चाहिए।
1: सवेरे सबसे पहले कार्य करना चाहिए 1 गिलास या 2 गिलास या 3 गिलास, जितना आपसे हो सके उतना पानी पीना है, बट इसमें कंडीशन है कि आपको कुल्ला नहीं करना है, पर रात में ब्रश करके सोना है
0: जी,
1: ठीक है। मुंह साफ रहना चाहिए, रात में जो भी लार बनती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जनरली हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं और हमारी जो बहुमूल्य लार है
0: उसको
1: हम वेस्ट कर देते हैं, तो जब बॉडी के अंदर वो लार पानी के साथ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया को स्वतः ही तंदुरुस्त करती है। साथ ही साथ उसके बाद ताड़ासन कर सकते हैं, हाथों की प्रक्रिया होती है जिसमें कमर में रोटेशन होती है, इस तरह के जो 2-3 आसन होते हैं वो कर सकते हैं रोटेशन के साथ, हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाना है जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, बैठ करके किया जा सकता है, इसके अंदर घुटनों को लेफ्ट राइट दबाना जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, इससे पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और पाचन क्रिया में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
0: बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे
6: जी। धन्यवाद। मैं राकेश कोटखाई शिमला, और
4: मेरा एक प्रश्न है, जिनको मोतियाबिंद है या आंखें को कम दिखाई देता है, तो मैं विशेषज्ञ से ये पूछना चाहता हूँ कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए।
2: आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, बड़ा है, बहुत ही अच्छा है, आप रात को ब्रश करके अच्छे से सोएं, ठीक है, और जो लार होती है ना मॉर्निंग में, उस लार को आंखों में काजल की तरह लगाएं, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, धीरे धीरे

0: चश्मा भी उतर जाता है इससे, ठीक है। और मुंह में पानी भर के, फ्रेश होने के बाद मुंह में पानी भर के आंखों में छपके मारना। और वो बेस्ट ये होगा कि यदि आप रात को त्रिफला भिगो देते हैं, उसको छान के सुबह उसमें आंखों को धोना, यानी कि आई कप मिलते हैं उसमें आंखों को घुमाना, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
1: अनीता जी, जैसे आपने बताया कि रात में ब्रश करके सोएं और सवेरे जो लार है उसको आंख में लगाएं, क्या एजेंट ऐसा होता है उसमें जो आंखों के लिए लाभदायक होता है?
0: लार तो सर बहुत इफेक्टिव है, जैसे भैया ने अभी बोला था, कमल भैया ने, कि आपको कुल्ला नहीं करना पानी पीने से पहले, तो वो लार आपके लिए उससे बढ़िया दवाई तो कुछ है ही नहीं।
1: बिल्कुल। और महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ गए हमारे श्रोता श्रीकांत झकड़े। श्रीकांत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
2: हेलो, नमस्कार
1: जी। नमस्कार,
2: मेरा नाम नमस्कार है
1: जी। सवाल पूछिए। शायद कहीं फोन लाइन में डिस्टरबेंस है, इस वजह से आपका प्रश्न हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं। आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। उससे पहले जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें अनीता जी, तो छात्र परीक्षा के तनाव को योग से कैसे कम कर सकते हैं? कोई एकाग्रता बढ़ाने वाला कोई आसन है?
0: जी हाँ, बिल्कुल, प्राणायाम है
1: जी।
0: भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़ती है। और थोड़ा थोड़ा वो अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करें, लेकिन उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है
1: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: मुकेश कुमार जी,
1: जी क्या सवाल है आपका?
3: कुमार जी नमस्ते।
1: नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
3: डीजे और सर को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्कार, नमस्कार।
3: मेरा पहला सवाल यह है कि हीट बहुत ज्यादा है
1: जी,
3: इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए? और मेरा पेट का ऑपरेशन हो गया है 2004 में
1: जी।
4: जी,
3: और योगा करने से वो ये होगा
5: वेट के लिए? विजय कुमार जी, सबसे पहले तो अपने खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको नियमित करें, एक निश्चित समय पर खाएं और सूर्योदय के बाद खाना बंद करें। पहला, सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा कार्य आपको ये करना है, जैसे आपका ऑपरेशन हो रखा है तो सिस्टम यानी गड़बड़ हो रखा है, तो आपके जीवन शैली के आपने फर्मेंटेड चीजों का ज्यादा प्रयोग करना है। फर्मेंटेड चीजों के अंदर आप बासी चावल ले सकते हैं दही के साथ में, अगर सूट करता है, उसके बाद कांजी है और उसके बाद अचार है, इस तरह की चीजों का आप यूज कर सकते हैं। पत्ता अमृत भी ले सकते हैं। और आसनों की अगर बात करें तो आप लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठाना, गोल गोल घुमाना, दोनों पैरों से तभी करें जब आपको हाई बीपी ना हो, अदरवाइज एक एक पैर का प्रयोग करें। साइकिलिंग का प्रयोग करें लेट करके, वो वेट में काफी लाभदायक है। और बैठ करके कटी सौंदर्य आसन होता है, लेफ्ट राइट पैर को खोल करके हाथों को घुमाना, ये करना है आपने। और सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
1: अनीता जी, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि योग और प्राणायाम मेडिटेशन, इसमें क्या फर्क होता है? क्या दोनों को करना आवश्यक है?
0: ये दोनों योग के ही अंग हैं
1: जी,
0: प्राणायाम और आसन
1: जी।
0: प्राणायाम श्वासों की क्रिया है, जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार क्या होता है कि एजड पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं तो योग कर नहीं सकता हूँ, योग में वो केवल आसन मानते हैं। तो आसन ही नहीं, यदि आप प्राणायाम को भी अपना लेते हैं, और प्राणायाम संपूर्ण है, प्राणायाम से आप शरीर के हर रोग को निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं
1: जी।
0: तो श्वासों की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है, और योग का ये एक अंग है, और व्यायाम और आसन इसके और विभिन्न अंग हैं।
1: और हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं बिहार के दरभंगा से, मोहन पासवान। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से?
6: जी धन्यवाद, प्रणाम करते सर
1: जी, बताइए
6: सर। जानना चाहता हूँ कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है, तो इसके लिए योग व्यायाम और खान पान कैसा होना चाहिए? दूसरा बात है सर, दूसरा प्रश्न है कि आरोग्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पूरे देश में पंचायत से लेकर शहर मोहल्ला तक खोलने की योजना है क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की? मैडम
0: नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी योजना जो है योगियों की तो है ही, श्रद्धेय स्वामी जी की भी है इसमें, मैं रामदेव बाबा की भी है इसमें, ये बिल्कुल वो चाहते हैं कि गांव गांव और गली गली

0: तक ये सुविधा उनको पहुंचे। और आपने बोला श्वास के लिए बोला है ना कि श्वास, सॉरी कुछ
1: जी
0: है ना, वो तो उसके लिए क्या है, आपको आपको प्राणायाम अपनाना है। श्वासों की क्रिया में क्या, लंबे देखिए श्वास आप प्रतिपल लेते हैं, उसी श्वास को ध्यान के साथ कंसंट्रेट होकर शांत मन से बैठ जाएं और लंबे गहरे श्वास भरें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें, उससे आपको बीमारियां भी दूर होंगी। देखिए आपको लगता है कि श्वास तो हम प्रतिपल ले रहे हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम से आपके रोग जो खत्म होते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, कोरोना के टाइम में तीव्र भस्त्रिका हम लोगों ने किया और हमें कोरोना के पेशेंट के पास बैठकर भी हमको कोरोना का कोई मतलब नहीं।
1: बहुत बड़ी बात। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। तो अनीता जी, घर से काम करने वालों के लिए आंखों और मानसिक थकान दूर करने का कोई योग है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और अधिकतर लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं तो बड़ी थकान सी होती है।
0: देखिए आंखों के लिए तो पहली बात तो ये कि हर दो घंटे के बाद आंखों को धो लें पानी से
1: जी।
0: और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ जैसे कि दवाई आती है ना आंखों की, हमारे तो दृष्टि है, इसको डालें थोड़ा सा आंख में। जो कंप्यूटर पे बैठते हैं उनको जरूर डालनी चाहिए। दो तीन तरह की अब तो आंखों की दवाइयां आ गई हैं। और जहां तक बात है कि हमें थकावट हो जाती है तो थोड़ा जब हम थोड़ा समय निकालेंगे शरीर के लिए, एक घंटा हमको जरूर निकालना चाहिए। और आप सुबह प्रातः काल में यदि थोड़ा कपालभाति अनुलोम विलोम ये करेंगे तो आपके शरीर की थकावट बहुत जल्दी दूर होगी, आपको लगता है, और आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लगेगा कि हम पड़ोसियों के भी काम कर दें।
1: जी बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से।
2: सर थैंक यू, नमस्ते सर, सब लोगों को नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी,
2: पिछले हफ्ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए थे, फोन नहीं लग पाए थे, इसलिए अभी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे देशवासियों को, पूरे
1: प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं। जी सवाल पूछिए।
2: सवाल हमारा ये है कि जैसे क्या योगा करने से चश्मा उतर जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या गुलाब जल वगैरह डालना आंखों में कितना लाभदायक रहता है, प्लीज बता दीजिए।
3: धन्यवाद ऋषि जी, बिल्कुल निश्चिंत ही चश्मा उतर जाता है, परंतु उसके लिए आपको योग निरंतर करना होगा। और आंखों में गुलाब जल तभी डालें जब गुलाब जल आपका शुद्ध हो, शुद्धता की जांच आप अपने लेवल पर कर लें। अगर गुलाब जल नहीं मिलता है तो फिर आप शुद्ध लेवल पर ना मिलने की वैसे आंखों में कुछ भी डालें, ठीक है। और योग के अंदर आप प्राणायाम सबसे ज्यादा करें, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा। और आंखों के अंदर जैसे अनीता जी ने पहले ही बताया कि सुबह सुबह की बासी लार जो होती है आंखों में रेगुलर बेसिस पे लगाएं काजल की तरह, आपको चश्मा जरूर उतर जाएगा। धन्यवाद।
1: और अनीता जी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है जो हम दो मिनट या पांच मिनट जितनी जरूरत है कर सकते हैं?
0: उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम
1: जी,
0: आपके मन को शांत करने के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और अपना जो ध्यान का मैंने आपको बोला ना, थोड़ा कंसंट्रेट होके करें प्राणायाम को। यदि आप ध्यान में बदल कर, यानी कि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अनुलोम विलोम करते हैं तो आपका माइंड काफी शांत हो जाता है। लेकिन करें, करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट।
1: बिल्कुल करेंगे तो होगा। कमल जी, आजकल डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, योग इनकी रोकथाम में किस तरह सहायता कर सकता है?
3: देखिए डायबिटिक और बीपी ये बीमारियां आज की डेट में ही पैदा हुई हैं, ये पहले नहीं हुआ करती थी। उसके पीछे कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया हम लोगों ने, तो ये मतलब नेचुरल बीमारी नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा पैदा की गई बीमारी है
1: जी।
3: बीपी का मुख्य कारण हमारे यहाँ रेडिएशन फैला हुआ चारों तरफ, हम लोग जहां जाते हैं वाईफाई है, मोबाइल के अंदर वाईफाई है, ये भी एक मुख्य कारण है
1: जी।
3: हर जगह तनाव में, टॉक्सिक माहौल में, ऑफिस में भी टॉक्सिक माहौल है, कई जगह पर बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर रहता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। पहले कारण जानना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें, योग प्राणायाम जो भी करें, इतना स्लो करें कि आपको स्वयं की आवाज भी सुनाई न दे। आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इतना धीरे धीरे करें। मैंने कई बार देखा लोग गलती में है ना बहुत तेज करने लग जाते हैं, उनका फायदा नहीं होता, नुकसान होता है
1: जी जी जी।
3: बट मेरा मानना है आप कम करें, बट जितना धीरे करेंगे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, मेरा अपना अनुभव यह है। और डायबिटिक के लिए अगर आप बात करें तो मंडूकासन वन ऑफ द बेस्ट है, रामबाण है, घुटने के बल बैठना होता है, वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन की खास बात यह है कि खाने के बाद इकलौता एक ऐसा आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं, इससे खाने के बाद पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है
1: जी।
3: और खाना जो खाया है वो जल्दी पचता भी है। जैसे किसी का समय नहीं है टहलने का तो वज्रासन में बैठ सकते हैं 5-10 मिनट, उनका जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसे मंडूकासन में दोनों मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, आगे की तरफ झुकें, हिप और एड़ियां मिले रहेंगे, जितना संभव हो सके आगे झुकने की कोशिश करें, गर्दन सीधी रखनी है और सांसों को नॉर्मल लेना है। ये है मंडूकासन, ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसके अलावा वक्रासन है, गौमुखासन है, जिस पे भी नाभि पे प्रेशर पड़ता है वो सब डायबिटिक के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
1: निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से अनिल। अनिल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। क्या सवाल है आपका?
4: सर, हमारा सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, क्या उनको योग करना चाहिए क्या, और डॉक्टर कौन सा योग की सलाह देते हैं जो उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए सही है?
1: बहुत अच्छा सवाल,
0: बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न रहा है। कुछ आसन होते हैं जो उनको करने होते हैं, पैर ऊपर उठाने वाले आसन नहीं करने हैं, जैसे अभी मंडूक आसन बताया वो नहीं करना है, सीधे लेटकर पैर, जैसे मरकट आसन होता है वो कर सकते हैं, जो कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से मरकट आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में उनको कपाल भांति नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, उनको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है
1: जी।
0: तो ये कुछ प्राणायाम है जो उनको करने हैं, और हमेशा योग शिक्षक के समक्ष बैठकर ही वो करें, सीखें, उसके बाद करें।
3: इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, उनको बटरफ्लाई रेगुलर करना है। बटरफ्लाई करेंगे रेगुलर, बहुत आसान होता है, बैठ के किया जाता है, ये बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से धर्मवीर। धर्मवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका?
5: नमस्कार।
1: नमस्कार।
5: धर्मवीर गांधी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
1: धन्यवाद।
5: एक मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि मन में सवाल आया था कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, कम होती है, तो बेचारी ऊंची हील की सैंडल पहनती है हाइट बढ़ाने के लिए, पर वो ठीक नहीं है, पर उनका जो शारीरिक हाइट कैसे बढ़े उसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए? क्योंकि सुनने वाले सभी ये इसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन समस्या आज की तारीख में शादियां नहीं हो पाती, कई जगह टूट जाती है, इस बारे में आप बताएं। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि घर घर की ये कहानी है।
0: घर घर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खाने पर ध्यान दीजिए। जितना ये बच्चे फास्ट फूड खाते हैं वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो प्रॉपर हाइट कैसे बढ़ेगी? सबसे पहले आप उसका अब खाने पे ध्यान दीजिए। मैं देखती हूँ, मेरा भी चिकित्सालय है, तो मैं वहां बच्चों को यही समझाती रहती हूँ कि बेटे इन चीजों को मत खाइए जो आपको नुकसान देती है। प्राणायाम करें और आसन, ताड़ासन है, ठीक है, वृक्षासन है, और आपको 5-6 आसन का ये उपयोग वो करेंगे तो उससे उनकी जो है ना हाइट बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ये कहूंगी कि खाने का ध्यान रखें, समय से उठना, समय से सोना, इस चीज का बहुत जरूरी है उन पर नियंत्रण करना।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इससे जरूर लाभ होगा। और कमल जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये श्रोता पूछते हैं कि खाली पेट योग करना जरूरी है क्या, और खाना खाने की कितनी देर बाद योग कर सकते हैं?
3: जी बिल्कुल, खाली पेट करना योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना खाली पेट अगर योगा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा
1: जी,
3: क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम पाचन क्रिया में लगा होता है। अगर हम खाना खाने के बाद योग करते हैं उस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में लगा होता है, तो योग नहीं करना चाहिए। खाने के कम से कम अगर दिन की बात करें तो 4-5 घंटे बाद करना चाहिए, दोपहर के बाद में, और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने से आप एक काम कर सकते हैं, जिनको इस तरह की परेशानी होती है तो खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें, वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। और अर्ली मॉर्निंग सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय नेचुरल हवा होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता बॉडी के अंदर, बिल्कुल एकदम नेचुरल नॉर्मल रहती है बॉडी, एकदम रिफ्रेश रहती है, तो उस समय करेंगे ज्यादा लाभदायक रहेगा। इस तरह से करें ज्यादा लाभदायक रहेगा।
1: और रायबरेली से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी। रमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी।
6: मेरा सवाल यही है कि योग और दंड बैठक, जिसे हम लोग देहाती भाषा या आम प्रचलन में योग, एक तो बहुत गणित कठिन है
1: जी,
6: और जो है ये दंड बैठक, ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ लाभदायक है या क्या?
1: जी
3: रमाशंकर जी नमस्कार, धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया, ये बेसिकली दंड बैठक योग के अंदर जो प्राणायाम के बल जो आसन होते हैं उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। दंड बैठक जो पहले प्राचीन टाइम पे हुआ करता था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप जब दंड बैठक लगाएंगे तो उससे शारीरिक विकास ज्यादा अच्छा होगा और जिनके शरीर में बल नहीं है उनके अंदर बल आएगा। युवाओं को खासतौर से बहुत बात है क्योंकि उनका एनर्जी लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जो उनकी स्फूर्ति को बढ़ाए और उनके शरीर से पसीना जल्दी निकाले।

0: तो दंड बैठक का समावेश ऑलरेडी योग के अंदर होता है, आप उसका प्रयोग करें और निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बट इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि दंड बैठक के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जब शरीर के अंदर जानी नहीं होगी तो फिर दंड बैठक लगाई नहीं जाएगी। तो प्राणायाम जितना ज्यादा अच्छे से करेंगे वो आपको ज्यादा लाभ देगा।
1: और बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित। अमित, क्या सवाल है आपका?
2: जी नमस्कार सभी विशेषज्ञ टीम को, मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम लोग योगा करते हैं अलग अलग, जैसे कोई ट्रेनर हो गया, बाबा रामदेव का एक अलग रहता है और बाकी जो ट्रेनर का रहता है जो मॉड्यूल अलग रहता है, तो ये हम लोग के शरीर में कितना ये इफेक्ट डालता है कि कभी उस ट्रेन कर लिया मैंने देखकर, हम लोगों ने इसको देखा तो इससे कर लिया, इससे कुछ शरीर में इफेक्ट पड़ता है क्या? या फिर या 10 दिन या 1 महीना करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इससे शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जी यही सवाल था।
3: देखिए रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जो भी योगाचार्य होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, सालों साल करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक करते हैं। तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, हमने इतने दिन से अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, डल बनाया हुआ है, तो रेगुलरिटी जरूरी है। और जो यदि आपको कोई सिखा रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई आपको शिक्षक सिखा रहा है तो उसके संपर्क में आके आप कर सकते हैं।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, इंदर भान सिंह। इंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद उनसे संपर्क कट गया है। अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कोई योग आसन है?
3: हाँ नहीं, सबसे पहली बात वही है मैंने बोला ना कि लोग कहते हैं अरे हम योग कैसे करें। योग का एक अंग है प्राणायाम, जो कि संपूर्ण है। यदि हम आसन भी नहीं कर पाते हैं तो प्राणायाम करें, जिन्होंने घुटने बदलवाए या कुर्सी पे बैठ के करते हैं नहीं वो ज्यादा कुछ कर सकते हैं। और बैठने के आसन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही है योग शिक्षक के संपर्क में जाकर वो अपना आसन कर सकते हैं। घुटनों को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, इतना तो कर ही सकते हैं। रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं, तो ये कर सकते हैं। और प्राणायाम सबसे कंपलसरी है।
1: कमल जी, बुजुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो उसके में उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक हो सकता है?
0: जी बहुत अत्यंत लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम। और इसके अलावा अनुलोम विलोम भी करें साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत लाभदायक होता है। वो आपकी जो तीसरी नासिका होती है, जो इस विशेष नस बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसको एक्टिवेट करता है। ब्राह्मणी प्राणायाम के अलावा बुजुर्गों को यह भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपस में मिलें और हाथों की अलग अलग एक्सरसाइज भी किया करें, जैसे बदल बदल के क्या करें। और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे मोबाइल लेफ्ट की जगह राइट में रख लिया, तो इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा बुजुर्गों से कि आपस में वार्तालाप ज्यादा बना के रखें, क्योंकि वार्तालाप बनाते नहीं है तो उसकी याददाश्त पे असर होता है। तो जितना आप में बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फायदेमंद रहेंगे।
1: और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही हमारे योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है eirnsgtalks@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का कराची केंद्र है। मीडियम में 540.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज एवं FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरी यादें। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म अनपढ़ से।

लता मंगेशकर के स्वर में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म अनपढ़ से। शब्द रचना राजा मेहंदी अली खां की एवं संगीत मदन मोहन का। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म बिरादरी से।

तलत महमूद के स्वर में आप सुन रहे थे खुमार बारंग बगवी का लिखा हुआ गीत संगीत नाशाद का एवं फिल्म का नाम था बरादरी। लीजिए सुनिए कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म मासूम से।

गुलजार का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे फिल्म मासूम से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म राम और श्याम से।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म राम और श्याम से, शब्द रचना शकील बदायूनी की एवं संगीत नौशाद का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म अभिलाषा से।

अभिलाषा फिल्म से आपने सुना ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की एवं संगीत आरडी बर्मन का। और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म आंधी से।

आंधी फिल्म से आपने सुना कार्यक्रम का आखिरी गीत, लता मंगेशकर के स्वर में शब्द रचना गुलजार की एवं संगीत आरडी बर्मन का। इसी गीत के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम सुनहरी यादें अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत गिटार पर राग बागेश्वरी में आलाप और गत मध्यालय की रचना जब ताल में व द्रुत लय की रचना तीन ताल में निबद्ध है। कलाकार है पंडित विश्वमोहन भट्ट।

अभी आप सुन रहे थे गिटार पर राग मिश्र गारा में धुन, कलाकार थे पंडित विश्व मोहन भट्ट। और आइए सुनते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन

0: इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सातवीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरू सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से, जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
0: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labour migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow.